मनी है सब ते सूतक गोए गोगे ते लकड़ी अंदर कीड़ा गोए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए।

जास। वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्स से तंखा सवाए तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डी फ्रेडिश से बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, डिटेल्स कुछ न करें। थोड़ी देर में हमेशा अवां भगत कवराम साहब जन के मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंखा पोए तकरीर पेश कंदी तकरीरकार जनाब हीरो ठाकुर। उनवान है सामीय जी शायरी, तंखा पोए कुछ हुब वतनी गीत पेश कंदा। यहाँ तक असाजे प्रोग्राम की तफसील, ये आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है। हिंसर छो तो भगत कवराम जन जो मिठड़ो आवाज़ बुधूँ।

0: अवां भगत कौराम जंजो सदाबार आवाज़ ॿुधी रहा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर पेश आहे तकरीर, उनवान आहे सामीअ जी शायरी, तकरीरकार जनाब हीरो ठाकुर।
1: सामी सिंधी शायरीअ जे मशहूर टिमूर्ति शाह सचल ऐं सामीअ जो हिकु अटूट अंगु लेखजंदे बि इन टिमूर्तीअ जे पहिरियनि ॿिनि शायरनि खां बिना मुख़्तलिफ़ ऐं निरालो आहे। हूअं ई हर शायर जो हुसन ऐं रंगो बू पंहिंजो पंहिंजो थिए थो, पर सामीअ जी ॿियनि सिंधी शायरनि खां निरालप ऐं अलहदगी जा तां चिटी ऐं वधीक नुमायां आहे। इहा निरालप फ़िलसफ़े, भाव, ॿोली, शाइराणा ख़ूबियुनि ऐं इबारत जे अलहदगीअ सबबु आहे। शाह ऐं सचल सूफ़ी शाइर आहिनि ऐं सामी वेदांती शाइर आहे। जेतोणीकि शाह ऐं सचल जे कलाम ते बि वेदांती असरु आहे ऐं अहिड़ा बि इशारा मिलनि था त उहे भारतीय फ़िक्रो फ़िलसफ़े खां वाक़ुफ़ु हुआ, पर त बि उहे मुख्य तरह सूफ़ी शाइर आहिनि, जॾहिं त सामी सिधो सओ वेदांती कवि आहे। शाह वेदांत ऐं भारतीय संत कवियुनि कबीर, दादू, समन वग़ैरह खां वाक़फ़ियत रखंदे बि इस्लामी फ़िक्रो फ़िलसफ़े सां जुड़ियल आहे ऐं हुन ते क़ुरान शरीफ़, हदीसुनि ऐं फ़ारसी शाइरनि, रूमी ऐं जामीअ जो असरु नुमाया आहे। सचल खे बि असीं तसवुफ़ जे रंग में सरशार ॾिसूं था। इन जे बरअक्स सामीअ असांखे वेदांत जे मान सरोवर मां मोती चुगंदो नज़र अचे थो। सामीअ जे कविता में असांखे भारती संत कवियुनि जे वांगुरु वेदनि, उपनिषदनि, शास्त्रनि, भगवत गीता ऐं श्रीमद भागवत जो सार समायल मिले थो, छो जो इहे ई पुस्तक विचें ज़माने जे संत शाइरनि जे चेतना ऐं काव्य रचना जो आधार रहिया आहिनि। इन नुक़्ते नज़र खां सामी शाह खां ई छा विचें ज़माने ऐं पंहिंजे दौर जे ज़रे घटि सभिनी सिंधी शाइरनि खां बिना निरालो आहे ऐं सिंधीअ में खेसि हिकु अलॻि ऐं मुनफ़रिद हैसियत हासिलु आहे। बहरहाल जेके ॻाल्हियूं सामीअ खे ॿियनि सिंधी शाइरनि खां निरालो ऐं अलॻि कनि थियूं, से ई सामी साहिब जे काव्य ऐं भारती संत काव्य विच में साॻियाई ऐं हिकु जहिड़े ॾांहुं बि निशानदेही कनि थियूं। जिते जिते सामी असांखे ॿियनि सिंधी शाइरनि खां अलॻि ऐं दूर नज़र अचे थो, उते उते हू भारती संत कवियुनि जे क़रीब ऐं उन्हनि सां गॾु बीठल मिले थो। तारीख़ी नुक़्ते नज़र खां भक्ति धारा या भक्ति हलचल जो पहिरियाती रूप ॾखण भारत में उभरियो, जिते तमिल प्रांत में आड़ावार भक्तनि जो हिकु संप्रदाय पैदा थियो। ॾखण भारत में पैदा थियल इहा भक्ति परंपरा अटकल 13 सदीअ धारे संत नामदेव ज़रिए उत्तर भारत ॾांहुं फैली ऐं उते ई पंहिंजे पूरे आबो ताब सां जोभन में आई ऐं एतिरो त फली ऐं फूली, जंहिंजो की क़दुरु असरु अॼु ताईं महसूसु कजे थो। उत्तरीय भारत में इन हलचल जे फैलजण जा मथे ज़िक्र कयल रूहानी फ़िलसुफ़ाना पसे मंज़र खां सवाइ ॿिया बि केतिरा मज़हबी, सियासी, समाजी ऐं इक़्तिसादी कारण हुआ। मुल्क में मुस्लिम राज क़ाइमु थियण सां मज़हबी खेत्र में तवाज़न बिगड़ी वियो हो। राजाउनि ऐं अमीरनि में ऐशो इशरत जे भावना चोट चढ़ी वई हुई। रैयत ॾांहुं संदनि लापरवाही ऐं ॾुभ ऐं दॿाउ वारे रुख अवाम जे दिलियुनि में निराशा वारो लाड़ो पैदा कयो हो। राजाउनि जे पाण में वेड़नि झेड़नि बि वायुमंडल खे घणो ख़राबु कयो हो। माण्हुनि में बेइल्मी ऐं अंधविश्वास वधियल हुआ। समाज में बुरायूं घर करे वयूं हुयूं। हिंदू पंडितनि ऐं मुस्लिम मौलवियुनि जो ज़ोर रुगो कर्म कांड ऐं ॿाहिरियुनि मज़हबी पाबंदियुनि ते हो। तीर्थनि, जप ताप, पूॼा पाठ ऐं शरीयत जे पाबंदियुनि जे ॿोझ हेठि मज़हब जो भावनात्मक ॿोध दॿिजी वियो हो। अहिड़ियुनि हालतुनि में निधर, निरास ऐं बेसहारे माण्हुनि लाइ परमात्मा जे शक्तिअ ऐं ॿाझ ॾांहुं निहारणु ऐं उन लाइ ॿाॾण खां सवाइ

0: ॿियो को चारो बि कोन हो। इन्हनि ई हालतुनि हेठि भारत उत्तरी भारत में जंहिंमें सिंध बि अची पई वई तंहिंमें भक्ति हलचल जनम वरितो। इन्हनि ई हालतुनि में सिंध में सदनो भगत काज़ी कादन शाह लतीफ़ सामी उत्तर प्रदेश में रहीदास कबीरदास सूरदास तुलसीदास बंगाल में जयदेव चैतन्य राजस्थान में दादू दयाल मीराबाई वग़ैरह पैदा थिया। वक़्त जे नब्ज़ जे पारखू कवियुनि आवाम जे ॿुॾंदड़ दिलियुनि खे सहारो मुयसरु करण लाइ भक्ति भावना जो फैलाउ कयो ऐं आवाम खे भक्तीअ जे राह ते आंदो। रफ़्ता रफ़्ता हिन लाड़े हिकु विशाल हलचल जो रूप वरितो, अहिड़ी हलचल जो जहिड़ी भारत में अॻु में कॾहिं न आई हुई। इन भक्ति हलचल जूं टे शाखूं लिखियूं वयूं आहिनि, सगुण धारा, निर्गुण धारा ऐं सूफ़ी मत ते ॿधल प्रेम मार्गी धारा। सगुण धारा वारनि कवियुनि ब्रह्म या अलहक खे को मखसूस रूप ॾेई उन जी इबादत कई, किन राम रूप में, किन कृष्ण रूप में या ॿिए कंहिं रूप में। निर्गुण कवियुनि जो वरी अक़ीदो हो त ब्रह्म खे को बि रूप आकार शकल शबीह न आहे। प्रेम मार्गी कवि वरी इस्लामी रहस्यवाद तसवुफ़ खां मुतासिर थिया, जेको अरबिस्तान खां बरास्ता ईरान थींदो हिते पहुतो हो ऐं मकानी हालतुनि सां आमीदश क़ाइमु कई हुआईं। संत मत इन्हनि टिन्ही धारानि जो संगम आहे। जिन हालतुनि जो मथे ज़िक्र कयो वियो आहे तिन में ज़रूरत राब्ते ऐं मुफ़ाहमत जी हुई। उन दौर जा हिंदू मुस्लिम ऐं ॿियनि फ़िरकनि जा माण्हू ऐं पुण समाज जा ऊच तोरे नीच तबक़नि जा माण्हू जिन हालतुनि जी कठोरता खे गॾिजी भोगियो हो तिन में रवादारी पैदा करणु, हिक ॿिए जे मज़हब ऐं तहज़ीब ऐं इबादत जे तौर तरीक़नि ऐं आचार वहिंवार खे हमदर्दाणे नमूने सम्झणु ऐं हिक ॿिए खे सुरी पुरी जाइ ॾियण जो लारो पैदा करण लाइ संत कवियुनि विची वाट वरिती। संत मत जेको संत शायरीअ जी पीढ़ आहे, पंहिंजा सिद्धांत हर हंधि ऐं हर ज़माने में अक्सर साॻिया रहिया आहिनि, जेतोणीक ज़मान ऐं मकान जे तब्दील मूजिबि उन्हनि ते ज़ोर जी घटि वधाई थींदी रही आहे। यानी कॾहिं कंहिं सिद्धांत ते त कॾहिं ॿिए ते ऐं किथे हिक खे त किथे ॿिए खे फोकियत पई मिली आहे। संत कवियुनि जिन ॻाल्हियुनि ते ज़ोर ॾिनो से हिन रीति आहिनि, हक़ीक़ी वजूद फ़क़ति हिकु ब्रह्म अलहक या ज़ात मुतलिक जो आहे ऐं उनखे सम्झणु ऐं पाइणु जीव जो परम उद्देश थियणु घुरिजे। ज़ाहिरी अनुभव में ईंदड़ सभु दिनेवी ॻाल्हियूं मिथ्या या भरम आहिनि, जिन जो हक़ीक़त में को वजूद न आहे। ब्रह्म या अलहक लामहदूद आहे, जंहिंखे सम्झणु ऐं प्राप्त करणु जीव खे हासिल शक्तियुनि कर्म इंद्रियुनि ज्ञान इंद्रियुनि मन ॿुधी वाणी वग़ैरह जे समर्थीअ खां ॿाहिरि आहे। उनखे फ़क़ति रूहानी अहसास सां हासिल करे सघिजे थो। हर को पंहिंजे पंहिंजे पसंदी सलूक शक्तिअ मूजिबि ब्रह्म खे सम्झणु परखणु लहण जी कोशिशि करे ऐं पंहिंजे वजदाना अहसास सां उनखे हासिल करे सघे थो। संत कवियुनि ब्रह्म जे प्राप्तीअ ऐं जगत जे मिथ्या हुजण वारी हक़ीक़त खे सम्झण लाइ कंहिं पूरन सतगुरूअ जे शरण ऐं सहारो वठणु तमामु ज़रूरी ॼातो। इन खां सवाइ हुननि आचार वहिंवार वग़ैरह ते बि घणो ज़ोर ॾिनो। सामी सिंधी शाइरनि में हिकु शाइर आहे जंहिंखे असीं हिकु पूरन संत कवीअ जो मुकमिल दर्शन करियूं था। हू ॿियनि सिंधी शाइरनि खां बिना निरालो आहे। जीअं श्री लेखराज अज़ीज़ खेसि बयानु कयो आहे त हू भारती सभ्यता जो गुल आहे ऐं हुन भारती सभ्यता जा ई सुहिणा वीचार दिलि में धारे कविता रची आहे। सामीअ पंहिंजे कविता लाइ ख़ुदि बि साफ़ साफ़ चयो आहे त वेदनि जी वाणी सां सिंधीअ में सुणाया। सामी पंहिंजे फ़िलसफ़े भाव भाषा असलूब ऐं इबारत ऐं अलंकारनि यानी उपमाउनि रूपकनि वग़ैरह जे मद्देनज़र बावजूद ॿोलीअ जे फ़र्क़ जे भारती संत कवियुनि वारी परंपरा जो हिकु शाइर आहे ऐं इन परंपरा जी हिकु अहमियत भरी कड़ी आहे। सामी संत मत खां मुतासिरो इहा ॻाल्हि ख़ुदि संदसि श्लोकनि मां आया आहे। चवे थो, पंहिंजी पाण पटे थो मूरग पार मरमरीअ, साखां संतनि जूं ॿुधी हठ तां कान हटे। सामी भारती संत कवियुनि खे पंहिंजो आदर्श सम्झंदो हो ऐं खेनि वॾी इज़त जी नज़र सां ॾिसंदो हो। अहिड़ो इशारो हिन मां मिले थो, प्रेम बिना प्रकाश कंहिंखे थियो की न की, ईअं चवे थो नामदेव कबीर ऐं रहीदास। करे ॾिस कल्पतरीअ सामी अनन अभ्यास, त चेतन चित आकाश प्रगट थिए पाण ई। हिते सामीअ प्रेम जे महत्व बाबति नामदेव कबीर रहीदास खे सनद तौरु पेश कंदे इन्हनि संत कवियुनि जो खुलियो ज़िक्र कयो आहे।
1: तव जनाब।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर पेश आहिनि हुब वतनी गीत।

0: तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to an SIT chief, Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against 4 accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening of the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after consultation with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei earlier today said to the state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. A major security scare has unfolded near the White House after multiple gunshots were heard close to the presidential complex in Washington, prompting an immediate lockdown response from law enforcement agencies. The U.S. Secret Service shot down a person, reportedly the suspect, near the scene, while a bystander was also struck down during the chaos. During the time of shooting, U.S. President Donald Trump was inside the White House. The IMD has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली है और अब आज आप सुनेंगे सविता शर्मा के गाए भजन। संगीतिका का समय हो चुका है और साथियों, आप अब कुछ ही पलों में सुनेंगे सविता शर्मा के गाए भजन।

आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं जीजी भारती और बांसुरी पर साथ दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं दामोदर लाल घोष।

0: घोष। 7:30 हो चुके हैं और अब समय हुआ है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज है हमारे साथ एक बहुत ही हमारा खोया हुआ साथी कहूंगी मैं। हेलो विकास।
1: बिल्कुल सुषमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके साथ शो करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सच कहा आपने, बिछड़ा हुआ साथी, बहुत दिनों बाद हम साथ में शो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज की ये सुबह देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि आपके साथ मुझे शो करने का मौका मिला।
0: विकास देखो, बहुत दिन हो गए इसलिए मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे ना, मुझे तो मिल नहीं पा रहे थे आप बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल सुषमा जी, लेकिन हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले मैं अभी आ रहा था तो एक बहुत अच्छा सा कोट लिखा था कहीं मैंने पढ़ा, मैं एकदम तैयार हो गया कि जब हम 7:30 का अपना शो करेंगे तो जरूर इसको मैं अपने श्रोताओं को सुनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पसंद आएगा।
0: जी जी, क्योंकि सुबह सुबह अगर अच्छी पॉजिटिव चीजें सुनने को मिल जाए तो सारा दिन ना पॉजिटिव रहता है, कहते हैं ना मूड पॉजिटिव हो जाता है अच्छे से।
1: बिल्कुल, फूलों की खुशबू, हवा की शीतलता, पंछियों की का करलाव, हर पल में जिंदगी का आनंद लो। पंछियों का कलरव, हर पल में जिंदगी का आनंद लो। क्या सही बात कही है सुषमा जी।
0: बिल्कुल, और दिल्ली जैसे शहर में तो आजकल पक्षी भी नहीं सुनाई देते, दिखाई नहीं देते, तो बताओ कलरव कहाँ से देखें। लेकिन हाँ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आज सुबह का मौसम दिल्ली का बहुत ही अच्छा था, सुहाना सा।
1: मुझे लगता है थोड़ी सी लू से राहत मिलेगी लोगों को।
0: हाँ, और आज वैसे मुझे पक्षियों की चहचहाट भी सुनने को मिली है।
1: तब तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी बढ़ेगी, थोड़ा ठंड बढ़ेगी और गर्मी से लोगों को राहत।
0: लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि भाई इतने सुहाने सपने मत देखो, क्योंकि अगले 7 दिन तक अभी राहत नहीं मिलने वाली।
1: जब आप सपनों की बात करें तो आइए सुनते हैं सपने फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।
0: जी हाँ, हेमा सरदेसाई की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, आवारा भमरे। तो ये इस गीत के साथ हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी ऐसा ही अच्छा अच्छा सा फील करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने सबिता शर्मा के गाए भजन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे जीजी भारती, बांसुरी पर साथ दे रहे थे राजेंद्र प्रसाद और हारमोनियम पर थे दामोदर लाल।

0: तो विकास देखिए इतना खूबसूरत गीत है और हम चिड़ियों की चहचहाट, जंगल की झाएं झाएं, झिंगूर, इन सबकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जब पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं या पर्यावरण की तरफ जाते हैं तो वहां पर बहुत ही गंदगी फैलाते हैं।
1: बिल्कुल सुषमा जी, आपने एकदम सही कहा। और बहुत तकलीफ होती है देखकर, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं, तब भी हमें ये एहसास होता है कि हमारे जो भी साथी यहाँ पर, जो भी ट्रैवलर, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो किस तरह से उनके साथ, मैं तो ये कहूँगा, अभद्रता करते हैं। और जो वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल, अभी मैं गया था लास्ट वीक, देहरादून गया था सुषमा जी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसके नीचे उन्होंने करीब लंबा स्ट्रेच बनाया है, जिसके नीचे से जो जीव हैं, जंगली जीव जंतु हैं, हाथी है, हिरन है, तेंदुआ है, वो नीचे से निकल जाएं, उनको डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए लंबा स्ट्रेच बना दिया है एक्सप्रेसवे का, पूरा एलिवेटेड बनाया है और काफी लंबा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर का है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये किया है, लेकिन जब हम आगे गए पहाड़ों पर, झरनों के पास, छोटी छोटी नदियों के पास, वहां पर लोगों ने इस तरह की गंदगी कर रखी है कि दिल भर आया। मुझे लगता है कि हमें, हम सबको, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लोकलाइज कुछ नहीं कर सकते, हमें ही इस पे ध्यान देना होगा, हमें ही अपने नेचर को बचाना होगा। और बिल्कुल सुषमा जी, आप सही कह रहे थे कि ये जो झींगर की झाएं झाएं है, पक्षियों की चहचहाहट है, या जो दूसरे जीव जंतु हैं जिनको हम अपने आसपास देखते थे, वो हमसे बहुत दूर जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए हम ही उस जिम्मेदार हैं। जैसे आपने बताया कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की बात की आपने, उसमें भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे जानवर थे, क्योंकि एक्सप्रेस वे है तो कई सारे जानवर चपेट में भी आ रहे थे और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि उनको बचाया जाए। और इसी तरह से हम सबको भी प्रयास करना होगा कि आप कहीं भी जाए, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि हम नदियों, पहाड़ों को बचाएं या कहीं भी जाएं तो वहां पर हम पूरी सफाई का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुषमा जी, और मुझे लगता है आप अपना अगला गीत श्रोताओं को सुनाएं, उससे पहले मैं आपकी बात को बिल्कुल स्टैम्प करता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है अपनी नदी, पहाड़, पर्वत और नेचर को बचाने की।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर होता ही है विकास कि हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, अरे ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो वो कर लेगा, और इसके चलते हम इतनी गंदगी फैला देते हैं और काम को इतना बिगाड़ देते हैं कि उसके फिर संभालने की भी कोई मतलब कहीं से दिखता नहीं है कि इस काम को हम संभाल सकें।
1: छोटे छोटे देश, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, आप वहाँ जाइए, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो अपने देश को साफ करें, वो कहते हैं कि टूरिस्ट, टूरिज्म और सफाई, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो उसके लिए वो जी जान से लगे रहते हैं और इसी बहाने वो अपने नेचर को भी बचाते हैं और उनके पास भी रहते हैं और उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते।
0: और यही जो सोच है, यही जो जज्बा है, यही हमें अपने श्रोताओं के मन में भी डालना है और हमें भी इसको फॉलो करना है। और श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आपको बता दें कि ipradiodelhi@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ। आपके साथ है सुषमा
1: और मैं हूं विकास।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत दिल एक मंदिर फिल्म से, और सच में इसके जो शब्द थे ना, इसका जो मतलब है इतना गहरा है कि अगर इसे बहुत ही शांत मन से सुना जाए तो इंसान का दिल खुश हो जाए।
1: बिल्कुल सुषमा जी, और मुझे लगता है जब ये गाना बज रहा था तो आप बहुत मगन होकर सुन रही थी और मैं देख रहा था, और एक एक शब्दों पर आप इस तरह से ध्यान दे रही थी कि मेरा भी मन किया कि मैं भी इस गीत को उसी तरह सुनूंगा जैसे आप एंजॉय कर रही थी अभी स्टूडियो में बैठ के।
0: क्योंकि गीत इतना अच्छा है, लता मंगेशकर जी की आवाज़, और सच में बहुत ही खूबसूरत गीत है। और विकास, हमारा ना जिंदगी के लिए मुझे कुछ चंद लाइनें याद आई हैं, और मैंने कहीं पढ़ा था ये कि जिंदगी की खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि उसे हम कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया कैसा है। तो आप अपना नज़रिया जाहिर करेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं अपनी ज़िंदगी को।
1: देखिए, ज़िंदगी को देखने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगा आपके साथ कि आप ज़िंदगी को जिस तरह से देखेंगे, आप अपने बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, वो आपके साथ होने लगता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हम मांगते हैं, कोई एक शक्ति है जिससे हम कभी ना कभी, हम सब चाहे जब बहुत दुख होता है या चाहे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, कुछ चाहने की कोशिश करते हैं, तो हम उस शक्ति से मांगते हैं, उससे कहते हैं कि हमारी विश पूरी कर दो। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर आप को लाल कपड़ा पसंद है और बार बार आप लाल कपड़ा पहन रहे हैं, तो मान लीजिए आपको लाल बहुत पसंद है सुषमा जी, और अभी आपने लाल पहना भी है, तो
0: मुझे लगा
1: नहीं नहीं लेकिन मुझे लगा कि लाल अगर आपने पहना है तो क्यों ना आपसे कनेक्ट किया जाए। तो अगर मुझे कोई गिफ्ट देना है आपको, तो मैं सोचूंगा कि सुषमा जी के लिए क्या दूं क्या दूं, तो अगर मुझे बहुत सारे कलर में चूज करना होगा तो मैं सोचूंगा अरे बार बार ये लाल पहनती हैं तो इनको मैं लाल दे दूं। तो उसी तरह अगर आप बार बार बोलते हो कि मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, तो भगवान भी सोचते हैं कि अरे इसको लगता है बीमारी बहुत पसंद है, इसलिए इसको बीमारी दे दो। तो इसीलिए आप बोलो कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत अमीर हो, तो इसलिए भगवान कहेंगे अच्छा ये इसको अमीरी बहुत पसंद है, इसको अमीरी दे दो। तो जिंदगी का मेरा नजरिया ये है।
0: बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह का पॉजिटिव होना ये और ये नजरिया रखना तो अपने आप में सच में बहुत ही अच्छी बात है। कहते भी ना, कायनात, पूरी कायनात जुड़ जाती है जो आप चाहते हो उसको देने में आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अगला जो गीत है ये मैं आपका दिल खुश करने के लिए आपके लिए प्ले कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, साधना सरगम की आवाज़।

जी हाँ, सुबह की जो पहली किरण पड़ती है तो मन तो खुश होता ही है। जिंदगी को, हर जीवन को, कहते हैं ना, हर एक जीव को एक नया जीवन मिलता है हर सुबह कुछ ना

0: कुछ नया लेकर आती है। विकास, आप क्या सोचते हो इस बारे में?
1: बिल्कुल, हर सुबह उसी तरह से शुरू होती है जिस तरह से हम किसी भी थॉट का आगाज़ करते हैं, कोई भी विचार करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी नया कदम उठाते हैं, हर सुबह उसी तरह होती है। और हमें मानना चाहिए कि हर दिन आपके लिए कुछ ऐसा करने का दिन होता है जिससे आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं।
0: और देखिए, पता है कुछ लोगों की आदत ही होती है ना, वो जो जितना उनकी ज़िंदगी में मिला है वो उसको ना उसको वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वो उसको कोसते रहते हैं, अरे कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, बस क्या है हमारे पास। जबकि उन्हें थैंकफुल होना चाहिए कि जितना मिला है उसमें खुश रहें और उसी को अच्छे से जिएं।
1: बिल्कुल सुषमा जी, आपने बहुत सही बात करी। हमारे वेद और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी सांस चल रही है तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट आप उस लायक हैं कि आप सांस ले सकते हैं। ब्रेड बटर शेल्टर तो बहुत मुझे लगता है लग्जरी कैटेगरी में आता है। अगर आपकी सांस चल रही है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि आप इस लायक हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। पता, कहते ना कि लाख पते की बात कही है आपने, और ज़िंदगी में ये मंत्र अगर लोग सीख जाएं, इस चीज़ को समझ जाएं, तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जो ज़िंदगी में लोगों को ना भूख है हर एक चीज़ को पाने की, चाहे, और वो ऐश्वर्याम शोहरत की भूख है, उस वो ज़्यादा मतलब वो मायने नहीं रखती है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपना सादा और अच्छा व्यवहार रखना और सादा जीवन जीना।
1: सुषमा जी, आपकी ये पूरी इन पूरी बातों के लिए मैं एक लाइन दूंगा, संतोषम परम सुखम।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं से अब विदा चाहते हैं अपने इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से।
1: बिल्कुल, और मैं बोलूंगा कि हर बार हर दिन इंद्रप्रस्थ चैनल पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग होती है और हम बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको गुड मॉर्निंग करते हैं। और सुषमा जी आपको हर संडे मिलती हैं, आपके लिए खूबसूरत गीत लाती हैं, विचार लाती हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें।
0: और मैं चाहूंगी कि अगले आने वाले जितने भी रविवार हैं विकास हमारे साथ रहे, तो ऐसे ही गुफ्तगू हमारी भी होती रहे। तो आप सबका दिन शुभ रहे। इसी के साथ मुझे और विकास को दीजिए इजाजत, मिलेंगे 10:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका

0: भूमिका निभाएगी।
1: वी ऑल नो दैट अंडर द विजनरी
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर्टेनली विल बी एबल टू गेट द सक्सेस।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है।

0: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली टुडे। आयुष्मान भारत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम जुलाई। स्वस्थ

0: सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनज़र रखते हुए वज़राए खारजा तरजीही शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतल्लिका दीगर बैनुल-अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत, सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में दो तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक्किद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को खत्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरक मकसद 2030 तक दोतरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और जनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद

0: ने सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्यिकी। श्रोताओं, साहित्य में किसी कहानी के दो धरातल होते हैं, एक उसका बाह्य पक्ष जो घटनाओं, दृश्यों, चरित्रों के शारीरिक आवागमन और सामाजिक ताने बाने से निर्मित होता है, और दूसरा उसका आत्मपक्ष जो कहानी की आंतरिक चेतना, पात्रों के अंतर मन का भूगोल और उसकी मनोवैज्ञानिक गहनता है। यदि घटनाएं कहानी का क्लेवर या शरीर है तो आत्मपक्ष उसकी आत्मा है। हिंदी कहानी का विकास क्रम इस बात का गवाह है कि जब तक कहानी केवल घटना प्रधान थी वह महज मनोरंजन का साधन रही, परंतु जैसे ही उसमें आत्मपक्ष का प्रवेश हुआ वह मनुष्य के अस्तित्व की व्याख्या करने लगी। इस कार्यक्रम में हिंदी कहानी के इसी आंतरिक संसार की परतों को खोलने का प्रयास होगा और आप सुनेंगे कि कैसे एक लेखक शब्दों की ओट में छिपकर मानव मन के अगाध समंदर में गोता लगाता है। साहित्यिकी के इस अंक में लीजिए सुनिए परिचर्चा हिंदी कहानी का आत्मपक्ष। प्रतिभागी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर हिरण्य हेमकर, फिल्म प्रोड्यूसर, लेखिका और सांस्कृतिक दूत डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, वरिष्ठ लेखक और मीडियाकर्मी श्री सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
4: हिंदी कहानी का इतिहास देखें तो लगभग 200 साल बीत चुके हैं इंसा अल्लाह खां की रानी चक्की की कहानी से शुरू होकर प्रेमचंद से होते हुए आज उदय प्रकाश की कहानी, तिरिच और अनिल यादव की लोक गायक का विरह तक सफर करते हुए हिंदी कहानी ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। इस दौरान अनेक आंदोलन भी हुए। इन्हीं सबके बीच जो प्रश्न सबसे अधिक उभरे उनमें कहानी का आत्मपक्ष रहा। उदाहरण के लिए हम निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे देखें तो उसमें लतिका का आत्मपक्ष उभरकर हमारे सामने आता है, और अगे की कहानी गैंग्रीन में तो वे मैं शैली अपनाते हुए उस मशीनी जीवन की व्यापक तस्वीर सामने रखते हैं। इसी तरह मनु भंडारी की कहानी यही सच है में स्त्री की रिश्तों को लेकर वह पोस्ट सामने आता है। मेरा पहला सवाल सूर्यकांत जी आपसे है
5: जी,
4: कि हिंदी साहित्य की आत्मपक्ष केंद्रित कहानियों में कौन सी कहानी को आप महत्वपूर्ण मानते हैं और उसमें क्या नयापन आपको दिखता है?
5: देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी कल ही जो विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस है उसको
4: जी जी।
5: उसको सबको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारा भारत एक विश्व गुरु बने उसके लिए पुस्तक संस्कृति का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है कहानी का आत्मपक्ष
4: जी जी।
5: ये उसी से जुड़ा हुआ है। अब अगर कहानी की बात करें, मुझे सबसे अच्छी जो कहानी लगी वो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी लगी
4: जी जी।
5: ये कहानी अकेलेपन, स्मृति और पात्रों के आंतरिक खालीपन पर केंद्रित है
4: जी।
5: जितना अच्छा मानसिक द्वंद्व इसके अंदर बताया गया है और जितनी शिद्दत से इसको बताया गया है, मैं समझता हूँ कि शायद निर्मल वर्मा अगर अमर हुए हैं
4: जी,
5: तो उसमें इस कहानी का बहुत बड़ा योगदान है
4: जी जी। श्वेता जी, किसी भी साहित्य में लेखक की जो मौजूदगी होती है वह उसके आत्मपक्ष का निर्धारण करती है, और कहानी का आत्मपक्ष उस कहानी में यथार्थ की मात्रा का निर्धारण भी करता है।
2: बिल्कुल।
4: और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि इंसा अल्लाह खां की कहानी रानी तेती जो कहानी आती है उसमें राजा रानी के किस्से के तर्ज पर कहानी वो लिखी जाती है, उस कहानी से कहानी की आत्मपक्ष की प्रवेश बिंदु माना जाता है।
2: बिल्कुल।
4: इंसा अल्लाह खां की कहानियों के बाद जब हम आते हैं प्रेमचंद युग तक, तो आपको उसमें क्या नयापन दिखता है?
2: जहाँ तक आपने इंसा अल्लाह खां की बात की, तो इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी मैं मानती हूँ कि मूल रूप से राजा रानी की परंपरागत कथा शैली से शुरू होती है
4: जी जी,
2: जहाँ घटनाएं सीधे सीधे आगे बढ़ती है लेकिन आगे चलकर उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है, कथा के भीतर लेखक की अपनी उपस्थिति और हस्तक्षेप। इसमें आत्मपक्ष का प्रवेश स्पष्ट रूप से वहां से माना जा सकता है जब लेखक कहानी के बीच में रुककर केवल कथा नहीं सुनाता बल्कि कथा की भाषा और शैली पर भी टिप्पणी करने लगता
4: बिल्कुल,
2: है।
4: बिल्कुल।
2: वह यह आग्रह करता है कि कहानी ठेठ हिंदी में लिखी जानी चाहिए, फारसी अरबी मिश्रित भाषा में नहीं होनी चाहिए। यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कथाकार पहली बार पाठक को यह एहसास कराता है कि वो केवल घटनाएं नहीं सुना रहा बल्कि वो स्वयं कथा निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित और स्पष्ट रूप से कर रहा है, उसमें शामिल है, यानी वो कहानी के भीतर रहकर कहानी के बारे में बोलना चाहता है, बातें करता है
4: जी।
2: यही से रानी केतकी की कहानी पारंपरिक कथा से अलग कही जा सकती है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और इसी बिंदु पर आत्मपक्ष का प्रवेश मैं मानती हूँ कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।
4: बिल्कुल। श्वेता जी ने बहुत अच्छे से कहा कि किस्सा गोई में कहानी का आत्मपक्ष एक नए रूप में आता है। हेमकर जी, प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हम कहानी की विकास यात्रा को देखते हैं, और उनके पहले और बाद में भी लेखकों ने अपने आत्मपक्ष को बहुत सुदृढ़ रूप से अपनी कहानियों में दिखाया। मेरा आपसे सवाल है कि प्रेमचंद भारतीय आत्मा और वैचारिक स्वरूप को अपनाते हुए कहानियां लिखते हैं, उनके पूर्ववर्ती कहानियों से आत्मपक्ष में आपको कैसी भिन्नता दिखाई देती है?
6: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब भी हिंदी कहानी की बात की जाती है तो सबसे बड़ी चेष्टा की जाती है कि पहली हिंदी कहानी कौन सी है, और लगातार उसके बारे में आलोचकों ने समय समय पर, तो दरअसल पहली मौलिक हिंदी कहानी उसके आत्मपक्ष की विवेचना को ही केंद्र में लेकर, उसकी वैचारिकी को केंद्र में ही लेकर ये तैयार करने की कोशिश आलोचकों द्वारा की गई। मेरे हिसाब से प्रेमचंद से पहले एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की जो कहानी

0: है,
1: बिल्कुल
0: उसमें एक आत्मपक्ष में मजबूती है और उसमें लेखक विद्यमान है और उसमें एक सामाजिकी भी है। जैसे एक उदाहरण कहानी के अंदर ही है कि एक विधवा बुढ़िया जाती है और जमींदार से वो कहती है कि एक टोकरी भर मिट्टी उठाने दो क्योंकि मेरे छोटे बच्चे के लिए चूल्हे पे खाना बनाना है। टोकरी भरकर जैसे ही वो कहती है, जमींदार जी हाथ लगा दीजिए, तो जमींदार जब हाथ लगाने आते हैं तो टोकरी उठ नहीं पाती है। तो वो बुढ़िया कहती है कि कैसे बोझ उठा पाओगे जब एक टोकरी का बोझ नहीं उठा पा रहे हो, तो ये जो पूरा जो घर लिया है उसमें इतनी मिट्टी है उसका बोझ कैसे उठा पाएंगे। इसके बाद दुलाई वाली एक कहानी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: जी,
1: मैं बात
0: उसका
1: करना चाह रहा
0: जो
1: था।
0: जो आत्मपक्ष है कि पहली बार हिंदी कहानी में परिवार के बीच के संबंधों और हंसी ठिठोली को बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्वरूप के साथ उद्घाटित किया गया है। पत्नी है, काफी दिनों से मिली नहीं है, उस जमाने में पति और पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, तो पहचानते किससे थे, कपड़ों से पहचानते थे। लखनऊ स्टेशन है, लखनऊ स्टेशन पे उनकी भाभियों को ठिठोली सूझती है और वो अपने देवर को कहते हैं कि अंदर ही बैठी हुई है, जाकर मिल लो।
1: जी जी
0: और उनकी भाभी जो होती है उनकी पत्नी की चादर ओढ़ कर खड़ी होती है और वो पीछे से उसे दबोचते हैं और सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। ये हिंदी कहानी का एक ऐसा आत्मपक्ष था जिसने हिंदी कहानी को राजा रानी की कहानियों से अलग कर आम जनता के बीच में लेकर आई, आम जनता की संवेदना के साथ उसे प्रकट
1: सही
0: कराया।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: प्रेमचंद के युग में आते आते ये जो आत्मपक्ष है उसमें एक राजनीतिक चेतना आती है, सामाजिक चेतना आती है और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना आती है। यानी कहानी जो होती है वो हमारे आसपास के परिवेश से ही कल्पित होती है, ये प्रेमचंद पूर्ववर्ती कथाकारों ने हमें
1: बिल्कुल
0: बता दिया
1: बिल्कुल हिमकर
0: था।
1: जी,
0: सही
1: आपने
0: बात,
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए, कहानी शब्द ही बना है कहनानी से, और
0: बिल्कुल
1: जब बच्चे छोटे होते थे, चूंकि टीवी नहीं होता था, कोई मनोरंजन साधन नहीं होता था,
0: जी
1: तो बच्चों को लोरी और कहानी सुना सुना के हम उनको मनोरंजित करने का प्रयास किया करते थे।
0: जी
1: और अभी बताया हिमकर जी ने कि उसमें कैसे प्रेमचंद अलग रूप में लेके आते हैं। प्रेमचंद के बाद कहानियों
0: जी
1: में मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से
0: जी
1: और स्मृतियां आधारित बहुत सारी कहानियां हमारे सामने
0: जी
1: दिखाई देती हैं। यदि हम पाजेब की बात करें, तो पाजेब एक तरह से मनोविज्ञान भी है, और स्मृति के अलग हटने से उसकी कहानी का आत्मपक्ष बदलता रहता
0: बदलता
1: है।
0: रहे
1: रेखा
0: तो
1: जी, जैसे कि हेमकर जी ने भी कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण, प्रसाद की कहानियों की बात किए हुए
0: जी
1: आगे बढ़ना लाजमी नहीं है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: और
0: सही बात
1: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता,
0: जी।
1: जितनी राष्ट्रीयता उसने कहा था मैं दिखता है, उससे कहीं ज्यादा मुझे पुरस्कार में दिखाई देता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं,
1: और पुरस्कार जैसी कहानियों में लेखक का अपने जो उनका देश प्रेम का जो पक्ष आता है,
0: जी
1: आप उसने कहा था भी ले लीजिए, प्रसाद की कहानी ले
0: जी
1: लीजिए,
0: जी
1: उस देश प्रेम में उनके यहाँ आत्मपक्ष किस रूप में आप देखते हैं? जैसे हमने सामाजिक की बात कर ली, मनोविश्लेषण की बात कर ली, तो ये राष्ट्र प्रेम जो है
0: जी
1: वो आत्मपक्ष को किस रूप में दर्शाता है?
0: मैं मानती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, विशेषकर पुरस्कार जैसी रचनाओं में केवल कथा ही नहीं बताई जाती है, बल्कि उसमें व्यापक तौर से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना दिखाई देती है। उनकी कहानियाँ भारतीय इतिहास, संस्कृति और गौरव बोध को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। उन रचनाओं में जो आत्मपक्ष दिखाई देता है, वो पारंपरिक अर्थों में आत्मपक्ष जैसा निजी अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बल्कि लेखक की स्वचेतन वैचारिक उपस्थिति है। प्रसाद कथा के माध्यम से अपने समय के समाज, संस्कृति और राष्ट्र चेतना पर विचार करते हैं, और कहीं कहीं कथा को इस दिशा में मोड़ देते हैं जिसमें उनका देश प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक दृष्टि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुरस्कार जैसी कहानियों में ये आत्मपक्ष विशेष रूप से उस समय उभरता है जब कथा व्यक्तिगत भावनाओं से आगे बढ़कर राष्ट्र, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्यों पर केंद्रित हो जाती है। यहाँ लेखक केवल घटनाओं का वर्णन करता नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सचेत विचारक और मार्गदर्शक स्वर के रूप में उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार मैं मानती हूँ कि प्रसाद का आत्मपक्ष उनकी कहानियों में राष्ट्रवादी चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नैतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में प्रकट होता है, न कि व्यक्तिगत आत्मकथाकार अभिव्यक्ति के रूप में।
1: श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हिमकर जी, आप चूंकि रंगकर्मी हैं
0: जी
1: और आंचलिक कहानियों को आप अच्छी तरह समझते हैं, जैसे अभी श्वेता जी बता रही थी पुरस्कार और सम्मान, मैं कहीं पढ़ रहा था पुरस्कार और सम्मान में बहुत अंतर होता है, और पुरस्कार जो कहानी है मूलतः पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में जाना पड़ता है, और इस
0: जी
1: कहानी को हम देखें और पढ़ें तो लगता है कि प्रतियोगिता चल रही है।
0: जी
1: तो चूंकि आप रंगकर्मी हैं, और फणीश्वरनाथ रेणी की आंचलिक कहानियों की हम बात ना करें, और उसमें भी खासकर लालपान की बेगम का, या फिर उसके आगे आते हैं तीसरी कसम
0: तीसरी
1: की बात ना
0: तीसरी
1: करें,
0: कसम
1: पंचलेट की बात ना करें, और ये सारी कहानियों में मूलतः गांव की

0: आत्मा जो है वो मनोविश्लेषणवाद और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार में गांव है, लेकिन उस गांव में और लालपान की बेगम की गांव में अंतर दिखाई देता है, करमनासा की हार की गांव में अंतर दिखाई देता है। और उसी तीसरे जैसा और मारे गए गुलफाम पे एक फिल्म भी बनती है, और फिल्म और कहानी, क्योंकि आप कहानीकार भी हैं और रंगकर्मी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहानी की आत्मा फिल्म में रूपांतरित हो पाई है या आत्म पक्ष दोनों का अलग अलग दिखाई देता है आपको?
1: ये बहुत दिलचस्प सवाल है। फणीश्वरनाथ रेणु के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो उनकी आंचलिकता के ऊपर बात होती है। कमाल की बात यह है कि इसका आत्मपक्ष इसके शीर्षक से अपने आप ही हमारे सामने प्रकट होता है। तीसरी कसम, कहानी में तीन कसमें हैं, तीसरी कसम पंचलेट, पंचलाइट की बात हो रही है, वहां लोग पंचलेट कहते हैं तो पंचलेट है, और लाल पान की बेगम जो वहां पे बहुत मशहूर है, इस तरह के जो बोलियों में बात आती है। तीसरी कसम फिल्म बनी और तीसरी कसम जो कहानी लिखी गई, दोनों का आत्म एक है
0: जी।
1: जिस तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु ने कहानी लिखी है हूबहू उसी तरीके से पर्दे पर उतारी गई है, और साहित्य का फिल्म में रूपांतरण का एक बेजोड़ नमूना है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु के आत्म में गांव की राजनीति रहती है, गांव का अपना उसकी सामासिक शक्ति रहती है, और सबसे बड़ी बात कि गांव में पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उनकी अपनी सामाजिकता रहती है, उनका अपना आत्म रहता है। और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में जितने भी पात्र हैं वो पिछड़ी जातियों से आते हैं और वो अपने आत्म को सबसे ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, चाहे गाड़ीवान हीरामन हो, उसकी जाति अगर पूरी कहानी में कहीं भी दृष्टिगोचर स्पष्ट रूप से नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो पिछड़ी जाति से संबंध रखता है, और हीराबाई जो वहां पर आती है नौटंकी करने के लिए उससे प्रेम करता है लेकिन अपने आत्म को नहीं भूलता है। और उसके साथ साथ जो गांव में उसने जो जो कस्में खाई हैं और जो जो कहानियां सुनी हैं उन कहानियों को आत्मसात करवाता है, किसके साथ? तो हीराबाई के साथ। तो आप फणीश्वरनाथ रेणु बहुत बड़े कथाकार हैं, यानी उन्होंने आंचलिकता के बहाने कहानी के आत्मपक्ष को गांव से जोड़ा, गांव के तत्वों को और वहां के व्यक्ति को और वहां के पिछड़े समाज को, इन सब को एक साथ इस तरह से पिरोया है कि वो एकमय हो गए हैं। तो इस तरीके से
0: कहानी और फिल्म का एकमय होना
1: जी
0: एक अलग रूप में हमें दिखाई देता है। सूर्यकांत जी, जैसे फिल्म में फिक्शन होता है
2: जी,
0: कहानियों में भी फिक्शन होता है। श्वेता जी रानी केतकी कहानी की बात कर रही थी, मैंने आपसे अनिल यादव की लोक गायक कहानी की बात की थी
2: जी,
0: करमनासा की हार की बात की थी, तो इंसा अल्लाह खां से लेकर
2: जी
0: अनिल यादव तक की
2: जी
0: कहानियों में अनेक धाराएं
2: जी,
0: वैचारिक मतभेद, यदि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी
2: जी
0: अम्मा की बात करें, और अम्मा को देखते हुए हम उसे ये भूल जाएं कि वो दलित कहानी है
2: जी,
0: हम ऐसे उसे समाज के रूप में देखें, सामाजिक यथार्थ के रूप में देखें, और उस यथार्थ के बीच कई धाराएं हमारे सम्मुख वैचारिक रूप से विद्यमान दिखाई देता है। ऐसे में जो वर्तमान हिंदी कहानी है, जैसे कि हम साठोत्री कहानी को बोल जाएं, समकालीन कहानी के बाद अकहानी को देखें, उसके बाद जो कहानियों में जो आत्मपक्ष दिखाई देता है, जिस पर आज का समय विराजमान दिखाई देता है, आज का एआई स्वरूप दिखाई देता है, डिजिटलाइजेशन दिखाई देता है, तो क्या किस्सा गोई से जो शुरू हुई कहानियों की आत्मपक्ष हमारे सामने है, क्या आज भी उतना ही किस्सा कोई विराजमान है या हम उससे कहीं दूर होते जा रहे हैं?
2: जी देखिए, ये थोड़ा जटिल सवाल है, क्योंकि अब एआई का जब पदार्पण इसमें हुआ तो इसने मौलिकता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया
0: जी।
2: ये ठीक वैसे ही है जैसे शुरू में कोई चीज बेहतर लगे और बाद में आप उसके आदि हो जाएं, लेकिन आज की कहानियां या समकालीन साहित्य में जो आत्म पक्ष है उसमें जो आत्मकथात्मक लेखन है और भोगे हुए यथार्थ को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, तो आत्मपक्ष तो हमेशा ही मुखर रहना चाहिए
0: जी, जी
2: रह रहा है, लेकिन वैसा आत्मपक्ष जो साहित्यिक मापदंडों पर पूरा उतरे वो चीज उसमें नहीं है। इंशाल्लाह खां की रानी केतकी से लेकर के और अनिल यादव तक जब हम आते हैं तो बहुत अच्छा सा एक सुहावना सा सफर लगता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा
2: जी।
0: देखिए, जैसे जैसे कहानियों का स्वरूप बढ़ता गया, जैसे जैसे नई धारा बढ़ती गई, लेखकों ने अपनी कहानियों में मय शैली अपनाई, मय शैली का प्रयोग ज्यादा होने लगा, और खासकर यदि हम देखें तो दलित कथाकार और महिला कथाकारों में।
3: सही बात।
0: और यदि हम बात करें मन्नू भंडारी कहानी यही सच है, कृष्णा सोपती कहानी ए लड़की जिसे हम लंबी कहानी मानते
3: जी,
0: हैं
3: जी।
0: और ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी यह अंत नहीं या 25 चौका 150, जब हम इस कहानी की बात करते हैं ए लड़की में, तो उसमें क्या है कि लेखिका जो है अपनी बेटी को बैठाए रखती है और मैं कहती है कि जो मैंने किया है तुम शायद वैसा करो या ना करो, तो उसे बिठा कर रखना, ये जो मैं शैली वाली जो बात है, तो स्त्री और दलित कथाकारों में ये आत्मपक्ष के कौन से नए आयाम आपको दिखाई देते हैं?
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और एक स्त्री के नाते मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये मैं पक्ष बहुत उभर कर आता है। जी जी जी, कोशिश करती हूँ लिखने की। और सही बात है कि हिंदी कथा साहित्य में स्त्री और दलित कथाकारों ने अनुभव के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसे नई दृष्टि और संवेदनाओं से जोड़ा है। इस संदर्भ में जैसा आपने जिक्र किया कि मनु भंडारी की कहानी यही सच है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मैं खासकर बताना चाहूंगी, 25 चौका 150, ये बहुत बहुत पसंद की जाती है और विशेष स्थान भी रखती है। स्त्री कथाकारों में अगर कहूँ तो कथा साहित्य में स्त्री के आत्मबोध, उसकी स्वतंत्र पहचान, भावनात्मक जटिलताओं और संबंधों की सच्चाई को केंद्र में रखकर काम किया गया है। यही सच है में स्त्री मन की द्वंद्वात्मकता को दिखाने के लिए, प्रेम और यथार्थ के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए अत्यंत ही सहज और मार्मिक ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसे बताया गया है। वहीं अगर दलित कथाकारों की बात करें तो सामाजिक यथार्थ के इस पक्ष को सामने लाने के लिए जो लंबे समय से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उपेक्षित थे, उसको उन्होंने अपनी कहानी में पिरोया है। 25 चौका 150 में जातिगत शोषण, आर्थिक विषमता और मानवीय गरिमा के संघर्ष का सशस्त्र चित्रण मिलता है। यहाँ अनुभव की प्राथमिकता और प्रतिरोध की चेतना प्रमुख है। इस प्रकार मैं मानती हूँ कि स्त्री और दलित लेखन में हिंदी कहानी को आत्मानुभूति की सीमाओं से निकालकर सामाजिक न्याय, स्मिता और समानता के उस आयाम तक पहुँचाया है जहाँ कथा साहित्य से अधिक जीवंत, यथार्थ स्वरूप और व्यापक रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल श्वेता जी, चूंकि अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं, और हिमकर जी आपसे ये अंतिम सवाल
1: जी
0: संक्षेप में कि हिंदी कहानियों में आत्मपक्ष आपको कितना हावी दिखता है? हमने मैं शैली की बात कर ली, सामाजिक शैली की बात कर ली, देश प्रेम की बात कर ली, यथार्थ की बात कर ली, आदर्श की बात कर ली, लेकिन ये आत्मपक्ष आपको कितना हावी दिखता है?
1: हिंदी कहानियों में यदि आत्मपक्ष ना रहे, यानी लेखक के अपनी अनुभूतियां ना रहे, तो हिंदी कहानियां राजा रानी की कहानियां बन जाएगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बिल्कुल, ये आत्मपक्ष ही है, यानी कि एक लेखक के अपने अनुभव ही हैं जो कहानी में अपने समकालीनता के साथ जोड़ता है, वैचारिकी के साथ जोड़ता है, राजनीतिक बोध, सामाजिक बोध, सांस्कृतिक बोध और आर्थिक बोध के साथ वो जोड़ता है, और तभी कहानियां बहुत समकालीन हो पाती हैं और वो लग पाती हैं कि ये हाँ हमारी ही बात कर रहे हैं। जैसे अभी कहा कि मैं की बात क्यों की जाती है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अक्सर कहते हैं मेरे दादाजी कहा करते थे, दादाजी की लेगेसी के कारण मैं अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता हूं। लेकिन स्त्री और दलितों के पास कोई लेगेसी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मैं को अपनाया कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा महसूस कर रही हूं।
0: बिल्कुल, हिंदी साहित्य की कहानियों का जो आत्मपक्ष समय के साथ हमें प्रबल दिखाई देता है, इसी के साथ उसमें नए पक्ष, नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, हम पिता कहानी ले लें, या हाल में ही आई हुई उषा प्रियंवदती की कहानी मायावी, या संजीव की कहानी 30 साल का सफरनामा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी आत्मपक्ष को लेकर देखी जा सकती है। एक तरफ कथाकारों ने आत्मा के भीतर डुबकी लगाकर मन की परतों को खोला, दूसरी ओर अपने आत्मा को व्यापक बनाते हुए सामाजिक मुद्दों से उसे जोड़ा। मानव जीवन के हर पक्ष को कलात्मक और संवेदनशील रूप से चित्रित करना शुरू से लेकर अभी तक कहानियों का कार्य रहा है, और हिंदी कहानी इस पक्ष में बहुत सफल भी रही है। मुझे लगता है कि आगे भी कहानियों के लेखन में आत्मपक्ष की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है। हिमकर जी आपने, श्वेता जी आपने, सुरकांत जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हिंदी कहानी का आत्मपक्ष, अभी आप ये परिचर्चा सुन रही थी। प्रतिभागी थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हिरण्य हेमकर, फिल्म प्रोड्यूसर, लेखिका और सांस्कृतिक दूत डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, वरिष्ठ लेखक और मीडिया कर्मी श्री सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। और श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में कुछ रोचक तथ्य। रेडियो, जो एक सदी से निरंतर संचार माध्यमों की रफ्तार में लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, विश्व की तमाम भाषाओं, बोलियों के कलाकारों को जितना रेडियो ने समृद्ध किया है, शायद ही किसी माध्यम ने किया है। दुनिया निरंतर बदल रही है, इसी तर्ज पर रेडियो भी नित नवीन नवाचारों को अपना रहा है, क्योंकि आज भी रेडियो ही एक ऐसा जन संचार माध्यम है जिसके जरिए असंख्य लोगों तक सूचना और ज्ञान का प्रसार किया जाता है, खासकर गांव, कस्बों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का कोई माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। इन जगहों पर आज भी रेडियो कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम है। इस रूप में आकाशवाणी स्वतंत्र

भारत की एक ऐसी धड़कन है जिसने देश के हर सुख दुख, हर करवट और हर कामयाबी को अपनी तरंगों में समेटा है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर को देखते हैं, तो यह इतिहास किसी सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने तैर जाता है। आइए आज हम रेडियो के उस जादुई सफर पर चलते हैं जिसने एक औपनिवेशिक शुरुआत से लेकर आधुनिक भारत का राष्ट्र प्रसारक बनने तक का गौरवशाली सफर तय किया है। श्रोताओं, भारत में रेडियो की गूंज यूं तो 1920 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन देश का पहला संगठित और नियमित रेडियो स्टेशन मिला 23 जुलाई 1927 को। इसी ऐतिहासिक दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बॉम्बे में किया गया था। इस पल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका उद्घाटन खुद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। उद्घाटन के दिन मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था जिसमें कुछ गीत और भाषण शामिल थे, लेकिन इसने देश में जनसंचार के एक नव युग की नींव रख दी थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हम हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी दूसरा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे रेडियो देश की सूचना और मनोरंजन का मुख्य जरिया बनने लगा। राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो का जन्म 1936 से आरंभ हुआ। सफर आगे बढ़ा जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल साबित हुआ। 1 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दिल्ली केंद्र आधिकारिक रूप से ऑन एयर हुआ। शुरुआत में यह केंद्र दिल्ली के 18 अलीपुर रोड स्थित एक अस्थायी स्टूडियो में चलता था और इसका 20 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर मॉल रोड पर स्थापित किया गया था। दिल्ली केंद्र के आने से कला, शिक्षा और संगीत को एक नई दिशा मिली। इसके ठीक कुछ महीने बाद 8 जून 1936 को एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इस बदलाव के पीछे उस समय के कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लियोनेल फिल्डन की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस नई पहचान की घोषणा 7 जून 1936 को द इंडियन लिसनर के प्रथम पृष्ठ पर की गई थी और अगले दिन से रेडियो की यह नई आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। समय बदला और आया साल 1947 14 और 15 अगस्त की उस ऐतिहासिक मध्य रात्रि का जब दुनिया सो रही थी, तब ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर स्वतंत्र भारत का पहला स्वर गूंजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कालजयी भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबोधन सीधे रेडियो पर प्रसारित किया गया, जिसे सुनकर करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए थे। यही नहीं, 15 अगस्त की सुबह ठीक 5:30 बजे पूर्णम विश्वनाथ ने बाह्य प्रसारण यानी एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूर्वी एशिया तक भारत की आजादी की पहली आधिकारिक घोषणा पहुंचाई थी। विभाजन की भीषण त्रासदी के बीच जब देश अपने को खो रहा था, तब आकाशवाणी ही एकमात्र जरिया थी जिसमें बिछड़े हुए परिवारों को संदेश के माध्यम से जोड़ा और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखा। इसी दौर की एक और भावुक और ऐतिहासिक घटना जुड़ी है महात्मा गांधी से। 12 नवम्बर 1947 को बापू ने पहली और अंतिम बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में कदम रखा। उन्होंने नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस से देश को संबोधित किया। यह संदेश विशेष रूप से उन शरणार्थियों के लिए था जो विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र के शिविर में विस्थापित होकर रह रहे थे। आगे चलकर आकाशवाणी ने उस स्टूडियो का नाम बदलकर बापू स्टूडियो रखा। बापू की इस ऐतिहासिक यात्रा और उसकी लोक सेवा की भावना को याद करते हुए हर वर्ष 12 नवंबर को पूरे देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद आकाशवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में 20 जुलाई 1952 को पहली बार राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आम जनता तक पहुंचाना था। 90 मिनट के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों का अद्भुत संगम पेश किया जाता था। अक्टूबर 1952 में दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व विश्व

0: सिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया और बाद में प्रख्यात कर्नाटक वायलिन वादक टीके जयराम अय्यर इसके दूसरे संचालक बने। सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करने के लिए 25 जनवरी 1956 को तत्कालीन महानिदेशक और प्रसिद्ध साहित्यकार जेसी माथुर की कल्पना से सर्वभाषा कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के कवि एक साथ जुटते हैं और उनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी प्रसारित किया जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा भाषाई आयोजन है जो विविधता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 1956 को नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जुलाई 1956 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा रचित बांग्ला नाटक प्रफुल्ला के प्रसारण से हुई थी। इसके माध्यम से रेडियो नाटक, ओपेरा और फीचर सीधे लोगों के दीवान खाने तक पहुंचने लगे। संकट और विकास का साथी, जयमाला और फार्म एंड होम यूनिट्स रेडियो सिर्फ शांति का ही नहीं बल्कि संकट का भी साथी रहा। 1962 में भारत चीन युद्ध के चुनौतीपूर्ण समय में सीमा पर शून्य से नीचे के तापमान में तैनात हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आकाशवाणी ने जयमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। ये रेडियो जगत का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जहां पहली बार फिल्मी हस्तियों ने सीधे तौर पर कार्यक्रम का संचालन किया। इसकी पहली प्रस्तोता महान अभिनेत्री नरगिस थी और बाद में लता मंगेशकर और मुकेश जैसे दिग्गजों ने सैनिकों की फरमाइश पर गाने बजाकर अपने संदेश साझा कर सरहद पर बैठे जवानों में जोश भर दिया। युद्ध के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न की कमी। साल 1965 में जब भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ तो आकाशवाणी ने ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के लिए फार्म एंड होम यूनिट्स की स्थापना की। इन इकाइयों का काम किसानों की दैनिक जरूरतों के अनुसार विशेष कृषि कार्यक्रम तैयार करना था। उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों की जानकारी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सीधे किसानों तक पहुंचाई जाती थी। इसने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक मूक लेकिन सबसे प्रभावी क्रांति की भूमिका निभाई। समय बदला, माध्यम बदले, पर साख आज भी वही है। श्रोताओं, 1927 की उस 15 मिनट की पहली ब्रॉडकास्टिंग से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल पॉडकास्ट, एफएम चैनलों और मोबाइल ऐप्स तक पहुंच चुका है। इन 90 वर्षों के हम सफर ने साबित किया है कि तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन जब भरोसे, संस्कृति और देश की प्रामाणिक आवाज की बात आएगी तो आकाशवाणी का कोई सानी नहीं है। इसी के साथ कीर्ति को दीजिए अनुमति। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में कुछ रोचक तथ्य। साहित्य की का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की और अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर मुक्ति शर्मा, शिक्षाविद व साहित्यकार की बातचीत काजल सूरी से। कार्यक्रम की प्रस्तुति काजल सूरी।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर, कि जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, ये जो वक्त है ये चलता ही रहता है, भागता ही रहता है और कई बार अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। लेकिन हमारे अतिथि प्रोग्राम में आज हमारे साथ वक्त

0: एक बहुत खूबसूरत मेहमान को छोड़कर गया है, और वो मेहमान है हमारे आज के जो अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर मुक्ति शर्मा, जो जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री हैं। डॉक्टर मुक्ति, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य की तरफ आपका जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ?
1: साहित्य कहते हैं ना, जब इंसान कुछ लिखने का करने का मन होता है तो वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है
0: जी।
1: तो वैसे तो विरासत में मिला ही नहीं साहित्य, ना कोई था लिखने वाला, पर ये शुरू से ये तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करूं समाज में आगे पीछे जो देखती थी।
0: तो आपका यही जो सफ़र था वो आसपास जो हमारे समाज में कहानियां बिखरी पड़ती हैं और जो हमारे समाज में चीज़ें हो रही थी उनको देख देख के आपको प्रेरणा मिली, जिस तरह से आपने कहा कि आपको जो लेखन है वो विरासत में नहीं मिला, बस ये जो कहानियां हमारे आसपास बिखरी हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हैं, वही हमें लिखने की प्रेरणा देती रही, वही आपको लिखने की प्रेरणा देती रही। तो जो आपने लिखा है, आपने जिस जिस विधा में लिखा है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: मैं कहानियाँ लिखती हूँ, संस्मरण लिखती हूँ, रिपोर्टाज लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ। तो मेरा यहाँ तक सोचना है कि लेखक को अपनी लेखनी जो है, कलम जो है, प्रत्येक क्षेत्र में चलानी चाहिए, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती हूँ, है ना, कविताएं कहते हैं ना मन को छू के निकल जाती हैं, है ना। तो उपन्यास तो ऐसी चीज है कि वो उसमें कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितने सारे लोग जुड़े होते हैं, तो एक जुड़ाव सा होता है
0: जी।
1: तो इसीलिए उपन्यास लिखना अच्छा लगता है। तो लेखकों को चाहती हूँ कि और अच्छा लिखें, अच्छे उपन्यास लिखें, कहानियां लिखें
0: जी। हाँ जी जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपने उपन्यास कई किताबों की रचना की है, तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपने सशक्त लेखन भी किया है, क्या कहेंगी कैसे आपने घर गृहस्थी को और लेखन की भी जो बैलेंस है उसको कैसे आपने बनाया?
1: कहते हैं ना लेखक के अंदर एक कीड़ा होता है लिखने का
0: जी।
1: तो वो बस फिर इंसान ये नहीं देखता कि घर गृहस्थी है, तो फिर इंसान सोचता नहीं, जो दिमाग में आया बस उसे अपने कलम से लिख लो, तो वो चलता रहता है फिर साथ साथ, और लेखक के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कहीं बैठी होती हूँ तब भी लिख रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ तब भी दिमाग चलता रहता है, सोचती रहती हूँ, कई बार सो रही होती हूँ तो तब भी रहता है दिमाग में, बातें चलती रहती हैं कि लिखूँ, तो फिर एकदम से झटके से उठ जाती हूँ, सोचती नहीं अब ये लिख ही लेती हूँ, सुबह तक शायद भूल जाऊँ।
0: तो साहित्य की कौन सी विधा है जिसमें आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं और जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कौन सी विधा में आपको सबसे अच्छा लगता है लिखना?
1: उपन्यास मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
0: नॉवल लिखना,
1: नॉवल लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरा नॉवल आया था एक श्रापित किन्नर, किन्नरों पे लिखा था, फिर उसके बाद मेरी किताब आई है प्रवासी कथा संसार एक दृष्टिकोण, तो वो मैंने जितने भी लेखक हैं बाहर के प्रवासी लेखक हैं उनकी कहानियों का समीक्षाएं की, ताकि जो हमारे शोधार्थी हैं उनके लिए एक प्रेरणा बन सके और उन्हें बना बनाया मिल सके।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जब हम शोधार्थी थे तो हमने काफी स्ट्रगल की, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी स्ट्रगल करे, उनको कुछ ऐसा मिले कि जो एक नया हो, अनुभव हो अपनी तरफ से। तो बच्चे, युवा पीढ़ी और अच्छा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर मैंने वो किताब की समीक्षा इसीलिए की थी कि युवाओं के लिए, शोधार्थियों के लिए आसान हो सके सामग्री।
0: तो क्या फीडबैक मिला कि जो स्कॉलर्स हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको इससे मदद मिली, इसमें आपको क्या?
1: हाँ जी, हाँ जी, मैंने तेजेंद्र शर्मा की कहानियाँ थी, ज़किया ज़ुबैदी की कहानी ली थी, रेखा राजवंशी जी की कहानी ली थी, तो काफ़ी सारे लेखक की कहानियाँ ली थी उसमें, तो शैलजा जी की कहानी ली थी। तो जब शोधार्थियों ने वो काम किया अपना, प्रवासियों पे तो आपको पता ही है बड़ा काम हो रहा है आजकल, तो उनको काफ़ी मदद मिली, बच्चे बड़ा बोलने बाद में उन्होंने बताया शोधार्थियों ने, मैम ये बड़ी अच्छी है आपने समीक्षा की, हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है,
0: तो फिर बहुत मदद मिली।
1: हाँ जी।
0: तो आपने जितनी कृतियाँ लिखी हैं आपकी, आप किसको मानती है दिस इज़ माई बेस्ट, ये मेरी सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्या कहेंगे?
1: तो मुझे अपनी कहानियाँ, जैसे मैंने लिखी थी बलि का बकरा, बड़ी अच्छी लगी, उसके बड़े अच्छे फीडबैक मिले। पूत कपूत कहानी थी, फिर तलब कहानी थी।
0: अच्छा, कहानियाँ आपको जो आपने लिखी हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी?
1: हाँ जी, हाँ जी, कहानियाँ तलब थी, उसके बड़े अच्छे फीडबैक मिले, बच्चों ने बड़ी पसंद की, शोधार्थियों ने, लोगों ने बड़ा उसे सराहाया, अच्छी थी, सब लोगों को
0: पसंद आई। जी जी।
1: तो फिर जब लेखक सुनता है लोगों से कि हाँ जी
0: फीडबैक
1: अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर लेखक को भी लगता है कि नहीं शायद कुछ अच्छा लिखा हो। तो वो उपन्यास का भी बड़ा अच्छा रहा, श्रापित किन्नर का, उस पर भी 20-25 बच्चे MPhil PhD कर रहे हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से कर रहे हैं?
1: हाँ, एक तो बाहर की ही लड़की थी चेन्नई की, उसने अभी लघु शोध किया है उस पर हुआ है, और काफी सारे बच्चों ने वो नावल जो है वो लिया है अपना।
0: तो जब आपने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले आपकी रचना कौन सी रही?
1: मैं तो जब कॉलेज टाइम में थी तो मैं आर्टिकल वगैरह लिखती थी, तो नियर अबाउट मेरे 85 आर्टिकल पब्लिश्ड हो चुके हैं अलग अलग पत्रिकाओं में, तो तभी से लिखने का शौक था आर्टिकल्स से। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब उपन्यास लिखना चाहिए, थोड़ी लंबी उड़ान भरे।
0: तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज आप जिस मकाम पर हैं उसे पाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए।
1: लोगों को लगता है ना लेखक है तो शायद बना बनाया मिल गया है आगे, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ना, ये जब सीने में दर्द होता है तो तभी लिखा जाता है, तभी लेखनी चलती है। तो वो जो संघर्ष है उसका पीछे का, जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, पापा आर्मी में थे, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली के की, तो उसके बावजूद अपना लिखना, पढ़ाई, यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना, फिर घर की परेशानी, आपको पता ही एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, घर भी संभालना, परिवार भी संभालना, आया गया भी लगा रहता है, तो सब चलता रहता है, तो लेखन भी अपनी जगह चलता है। तो जो संघर्ष है वो तो है ही है, तो इंसान तभी मुकाम पे पहुंच सकता है जब वो संघर्ष करेगा।
0: मुक्ति जी की कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में?
1: साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, ये हमारी बड़ी पुरानी बात है। तो जब साहित्य के माध्यम से ही एक ऐसा निखार आता है इंसान के जीवन में, साहित्य के माध्यम से ही पता चलता है हमारी आने वाली पीढ़ी को कि पहले क्या हो चुका है, तो साहित्य से भी ही हमें सारी जानकारी मिलती है। जो आज इतना अच्छा लेखन लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा, प्रेमचंद लिख रहे हैं, कबीरदास ने लिखा है, वो साहित्य तो है, उन्हीं को पढ़ पढ़ के तो हम लोग आगे प्रेरणा ले रहे हैं और
0: सीख रहे हैं, बिल्कुल है ना, शब्दावली को
1: भाषा क्या है ना,
0: बिल्कुल
1: ये सब चीजें सीख रहे हैं तो कर रहे हैं, तो वो बड़ा साहित्य का तो बड़ा बहुत बड़ा योगदान है लेखन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जितना कुछ लिखा मुक्ति जी, सबसे ज्यादा मेहनत आपको किसमें लगा कि मैंने इसमें, इस किताब में या इस कविता को लिखने में, इस कहानी को लिखने में सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगी है, क्या कहेंगी आप?
1: मुझे तो लगता है उपन्यास लिखने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नियर अबाउट उसमें 2 साल लग ही जाते हैं। इंसान कितना मर्जी छांट ले कर ले, अभी मेरा उपन्यास एक और आने वाला है, मीना की उड़ान, तो 2 साल से मैं उस पर काम कर रही हूँ, 2.5 साल होने लगे हैं, अभी भी जब फाइनल होने वाला है तो अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, कुछ कमियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल। तो जब आप नॉवेल लिखती हैं, जब आप उपन्यास लिखती हैं, तो किरदार का चुनाव अपनी कल्पना के आधार पर करती हैं या रियलिटी के बेस पर करती हैं, किस आधार पर करती हैं?
1: नहीं, ये तो मैं रियलिटी के बेस पर ही करती हूँ, है ना। कई बार कोई हमसे पूछ भी ले कि हाँ मुक्ति जी आपने ये लिखा, इसमें लिखा है तो क्यों लिखा है, तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो पात्र जो है वो घटना सामने हुई होती है तो बंदा लिखता है
0: जी, समाज में जो घटित हुआ होता है वहीं से अपने किरदार लेते हैं,
1: वहीं से निकाल के तो बस फिर लिखते हैं,
0: कहानी का रूप या नॉवल का रूप
1: दे देते हैं।
0: एक और सवाल, जैसे आपने बात की श्रापित किन्नर के बारे में, जो आपका बहुत चर्चित नॉवल है आजकल, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स शोध भी कर रहे हैं जैसा आपने बताया, तो स्त्री पुरुष और तीसरे जेंडर की समस्या को आप कैसे देखती हैं?
1: हस्बैंड वाइफ होते हैं ना घर पे, तो वो 2 बर्तन जहाँ होते हैं वो खनकते हैं ना, तो थर्ड जेंडर तो एकदम से अलग है ना समाज से, ये ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं करता, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। फिर 2014 में हमारी सरकार ने सोचा कि इनके बारे में, 2009 में एक पास हुआ हाईकोर्ट की तरफ से कि नहीं इनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए, तब जाके उन लोगों को लगा कि नहीं हमारी भी पूछ हो रही है। 14 में भी हुआ वो, इनको मान्यता मिली और ये प्रोसेस 2009 से ही शुरू
0: हो गया था।
1: तो फिर क्या हुआ, जब हो गया ये सारा तो उन लोगों को फिर उनमें एक ना ऊर्जा का संचार हुआ कि हम भी समाज का एक हिस्सा है।
0: तो सरकार ने इस तरफ कदम उठाया
1: सरकार ने,
0: रिकॉग्निशन मिल गई।
1: हाँ, तो अब जो है सरकार उनके लिए काफी काम कर रही है और वो भी लोग सिर उठा के जी रहे हैं और अच्छे ओहदों पे हैं।
0: बिल्कुल।
1: कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई जज है, तो अब मुझे ये है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म मिला है तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: हम आम इंसान कर सकते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात है, हमें इनको जेंडर क्यों समझना, इंसान समझो। ये तो बड़े कम लेखक हैं, आई थिंक 14-15 लेखक हैं जिनके उपन्यास आए हैं इस पे, थर्ड जेंडर पे लिखे हुए हैं, अदरवाइज तो पहले कोई थी ही नहीं पूछ। तो हालांकि आपको पता ही कब से है, पुराने जमाने, रामायण काल से, महाभारत काल से, मुगलों के पीरियड से ये लोग चले आ रहे हैं।

0: मानता मिलनी चाहिए समाज में। देखो एक स्त्री जो है अपना सब कुछ दांव पे लगाती है, कितनी मेहनत करती है, चाहे वो ये घर हो चाहे वो बाहर हो, प्रत्येक क्षेत्र में वो आगे बढ़ती है, काम करती है। नो डाउट कि पुरुष किसी से कम नहीं है। तो मैं कहती हूँ एक कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो तभी मैं इस मुकाम पे हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता
0: ना। इसीलिए तो जब हम स्त्रियों की आवाज को उठाएंगे, स्त्रियों की क्या समस्याएं हैं उनको जागृत करेंगे तो तभी तो पता चलेगा। तो एक स्त्री होने के नाते तो इतना तो बनता ही है कि हम बिल्कुल के लिए सोचें, करें
1: और लिखें। जन जन तक आवाज
0: पहुंचे, जन जन तक आवाज पहुंचे।
1: तो आप हिंदी के लिए ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे हिंदी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे मिले? जिस तरह से आपने प्रवासी भारतीयों के लिए बात की कि आपकी किताबें बाहर भी, आपने एक किताब का नाम लिया था जो बाहर से छपती है, पत्रिका का नाम भी लिया था प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप प्रकाश डालें।
0: जैसे मैंने आपको बताया पुरवाई पत्रिका निकलती है लंदन से, मैं उसके संपादक मंडल में हूँ, कश्मीर का दायित्व है मुझ पे। तो हम लोग सेमिनार्स करवा सकते हैं, गोष्ठियां करवा सकते हैं, है ना। तो कश्मीर जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ उर्दू और कश्मीरी ज्यादा चलती है ना, हिंदी बिल्कुल बड़ी कम है। तो जब हम वहाँ पे गोष्ठियां करवाएंगे, सेमिनार्स करवाएंगे, तो लोगों को जब बताएंगे इसके बारे में,
1: भले ही ऑनलाइन हो,
0: हाँ ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ताकि भाषा के विकास के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो डॉक्टर मुक्ति, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी।
1: तो दोस्तों ये थी डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री, जिनसे अभी हमने बात की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री डॉक्टर मुक्ति शर्मा, भेंटकर्ता और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमें मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रमों के जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमें भेज सकते हैं समय समय पर मेल, और उसका मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। आप किसी भी कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉर्निंग गीतों भरी गुड मॉर्निंग का शो, या फिर 10:10 पर, या दोपहर को एक ही फिल्म से गीत, आदि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें आप सीधे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं इसी ईमेल के ज़रिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और अब समय हो गया है हमारे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

आज के प्रोग्राम में आप शब्द सुन सकेंगे। 9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे, और खबरों का वक्त होगा 9:50 पर। 10 बजे हम पेश करेंगे अकवाल जरी का प्रोग्राम शम फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गज़ल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गज़लें। 10:30 पर रूबरू प्रोग्राम होगा। 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। 11:30 पर आप सुन सकते हैं एक ड्रामा जिसका उन्वान है रुत आए रुत जाए। दिन में 12 बजे खबरें नष्ट होंगी। 12:10 से आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नष्ट होंगी, और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में सुनिए परमिंदर कौर चड्ढा का गाया हुआ शब्द।

0: सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप शब्द सुन रहे थे। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस, पेश है आज सवेरे।
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 24 मई 2026 और बात की जाए सन 1844 की, तो आज ही के दिन अमरीकी आविष्कारक सैमुअल मोर्स ने पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा। ये संदेश वाशिंगटन से ब्लाटिमोर तक भेजा गया और संचार के एक नए युग की शुरुआत हुई। और 1964 की अगर बात की जाए तो फुटबॉल के इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी आज के दिन हुई। पेरू की राजधानी लीमा के नेशनल स्टेडियम में पेरू और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के बीच मैच चल रहा था। मैच जीतने वाली टीम को टोक्यो ओलंपिक में खेलने का मौका मिला था। पेरू के खिलाड़ी ने गोल दागा, फुटबॉल नेट से जा टकराई, लेकिन मैच रेफरी ने फाउल देते हुए गोल देने से मना कर दिया। नाराज दर्शकों की भीड़ रेफरी की ओर दौड़ पड़ी और भगदड़ में 328 लोग मारे गए।
2: And moving on for it, now when we remember some of the personalities who either have the birth or death anniversaries or birthdays today, we are starting with Qazi Nazrul Islam. Today is his birth anniversary. We all know a poet par excellence, even a short story writer, lyricist and musician. Later honored with the title of the National Poet of Bangladesh, Nazrul produced a large body of poetry, music, messages, novels and stories with themes that included equality, justice, anti-imperialism, humanity, rebellion against oppression and religious devotion. His activism for political and social justice, as well as writing a poem titled Vidrohi, meaning the rebel in Bengali, earned him the title of Vidrohi Kavi. His compositions form the avant-garde music genre of Nazrul Geeti. So there is a beautiful rendition by Firoza Begum. Let's listen to it.

0: काजी नजरुल इस्लाम को 1907 में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही अधिकांश को स्वर भी दिया। इनके संगीत के आजकल नजरुल संगीत या नजरुल नीति नाम से भी जाना जाता है। और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का। उन्हें अपने शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार वीर अभिमन्यु ने किशोर अवस्था में ही कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन किया था, उसी प्रकार सराभा ने भी अभिमन्यु की भांति केवल 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके शौर्य बलिदान की मार्मिक गाथा आज भी भारतीयों को प्रेरणा देती है और देती रहेगी। यदि आज के युवक सराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना और बल्कि देश का भी मस्तिष्क ऊपर कर सकते हैं।
1: फरहत, नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अ वेरी वेरी रेनाउंड लिरिसिस्ट, इजंट इट? तो क्यों ना उनके बारे में बात की जाए।
0: बिल्कुल, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की हम बात कर रहे हैं। मजरू की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्जबागों से निकालकर दुनिया के दिगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी प्रदान करी, पूरी कोशिश की जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज्यादा अपने लंबे सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीतों की रचना की है। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये खूबसूरत
2: क्या हो।

0: और मजरू सारा कहते भी थे कि क्या भला है जो मुझको याद करोगे, मैं तो एक ख्वाब हूँ, भूल जाओगे।
1: बट ऐसे ख्वाब कभी भूले नहीं जाते। आई थिंक ही लिव्स ऑन थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज सॉन्ग्स।
0: जी बिल्कुल, एस डी बर्मन और मजरू

0: सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9 तो 11, 16 साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, तीन देवियां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं और फिल्म अभिमान में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गीत लिखे। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म अभिमान से ये प्यारा सा गीत।
1: समझ गया ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
2: क्या करा जाना?
1: वो भाभी के अवार्ड्स के लिए ऐसी जगह बनाओ।

मजहू सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती में अपने रचित गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिनसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शुमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वज़ीरे खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा

0: रात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौक़ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मतजाद बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ हिरास पैदा हुआ। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाक़े के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। जमहूरिया कांगो में हुक्काम ने बताया कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरक उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जेली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांस्य का तमगा हासिल किया। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिनसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शुमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अखवाले जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: दुनिया में सबसे मीठी चीज नर्म गुफ्तारी है। नर्म गुफ्तारी से इंसान सबका अजीज बन जाता है। नर्म गुफ्तारी से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। नर्म गुफ्तारी से इंसान दुनिया में बड़े बड़े मनासिब हासिल कर लेता है। फारसी में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि जुबान शीरी मुल्क गिरी, यानी मीठी जुबान से इंसान मुल्क और हुकूमत हासिल कर लेता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने इस अंदाज में कहा है। तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहूं और, बसी करण एक मंत्र है परी हरो बचन कठोर। तुलसीदास जी के इस दोहे का आसान जुबान में मफहूम यह है कि मीठी बात से चारों तरफ सुख फैल जाता है और मीठा बोल एक मंत्र की तरह है जिसके जरिए दूसरे लोग अपने बन जाते हैं। इसलिए कड़वी बात या सख्त बात से हमेशा दूर रहो, हमेशा मीठी वाणी बोलो। एक तुलसीदास जी की क्या बात है, दुनिया के सारे अजीम लोग नर्म गुफ्तारी और मीठी बानी बोलने की तलकीन करते रहे हैं। अपनी तालीमात के जरिए तमाम महापुरुषों और अजीम लोगों ने मीठी बानी को दुनिया में कामयाबी का मूल मंत्र बताया है। ये ऐसा जादू भरा लफ्ज़ है कि उसके जरिए घर में चैन और सुकून आता है, समाज में भाईचारा पैदा होता है, मुल्कों में खुशहाली आती है। जो मीठे बोल बोलेगा, जिसकी ज़ुबान नर्म और शीरी होगी, وہ بدترین دشمنوں کے اندر

0: भी अपने दोस्त और हम नवा तलाश कर लेगा, और जिसकी जुबान कड़वी होगी, जिसका लहजा तल्ख होगा, जो कठोर वचन बोलेगा, वो आबाद घरों को उजाड़ देगा, खुशहाल समाज को भी बर्बाद कर देगा। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, इंसान तो इंसान, जानवर भी नर्म गुफ्तारी और नर्म रवैयों से अपने बन जाते हैं। मीठी बानी बोलने वाले को सब पसंद करते हैं और कठोर बानी वाले को सब नापसंद करते हैं। इस बात को एक दूसरे शायर ने कौवा और कोयल की मिसाल से इस तरह बयान किया है। कौवा किसका धन हरे, कोयल कसकू दिए, बोली मैं इमरत बसे नू जुग अपनो कर लिए। दोबारा करूंगा। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसकू दिए, बोली मैं इमरत बसे नू जग अपनो कर लिए। यानी कौवा किसी को नुकसान नहीं देता और कोयल किसी को इनाम नहीं देती। असल बात उनकी जुबान में है। कौवे की कड़वी आवाज से सबको नफरत होती है और कोयल की मीठी आवाज सबका दिल मोह लेती है, इसलिए सब उसको शौक से सुनते हैं और राह चलते लोग कोयल की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और खड़े होकर उसका नगमा सुनने लगते हैं। कुरान पाक में भी नर्म गुफ्तारी की तालीम दी गई है। एक जगह इरशाद है कि लोगों से अच्छी बात कहो। एक और आयत का मफहूम है कि लोगों से बहस मत करो, और अगर बहस करो तो अहसन तरीक़ा से, सबसे बेहतर तरीक़े से बहस करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नरमी से महरूम रह गया, वह हर भलाई से महरूम रह गया। दरअसल कड़वे बोल या सख्त बात एक आग की तरह है, जो गुस्सा और घमंड के जरिए इंसान के अंदर भड़कती है। गुस्सा की हालत में इंसान बिलअमूम सख्त जुबानी और कड़वे वचन इख्तियार करता है। इसीलिए कुरान मजीद में कई तरह से इंसान की तरबियत की गई है। अल्लाह के महबूब बंदों की तारीफ में यह भी कहा है कि वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। इसी तरह अकड़ और घमंड, जो इंसान के बदतरीन दुश्मन हैं, उनको भी ख़त्म करने की तलकीन की गई है। इंसान सोचे कि क्या उसकी ठोकर से ज़मीन फट सकती है, या वो पहाड़ों से बुलंद हो सकता है, तो आखिर किस बात पर घमंड करता है और किस लिए लोगों में बदजुबानी करता है। जुबान तलवार नहीं है, लेकिन ऐसा धारदार हथियार है कि दिलों को चीर देता है। एक अरबी के शायर ने बड़ी खूबसूरत शेर कहा है, जिसका मफहूम यह है। कि तीर और तलवार के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जुबान का जख्म नहीं भरता। उसको अगर भरा जा सकता है तो सिर्फ जुबान से ही भरा जा सकता है, इसलिए जुबान को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जुबान के इस्तेमाल से रिश्ते बनते हैं और पायदार हो जाते हैं, और जुबान के ही इस्तेमाल से इंतहाई करीबी रिश्ते भी टूटकर गैर बन जाते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इस बात को नहायत खूबसूरत अंदाज में इस तरह लिखा है। गैर अपने हो गए शीरी हो गर अपनी जुबान, गैर अपने हो गए शीरी हो गर अपनी जुबान, दोस्त हो जाते हैं दुश्मन तल्ख हो जिसकी जुबान। मीठी जुबान ऐसा ही जादू है जिससे बड़े बड़े जख्म मुंदमिल हो जाते हैं। एक लफ्ज़ कितने रिश्ते इस्तवार कर देता है और एक लफ्ज़ कितने रिश्तों को तार तार कर देता है। जुबान को नहायत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और अगर कहीं बे एहतियाती हो जाए तो उसी जुबान से माजरत और माफ़ी का लफ्ज़ उस जख्म का इलाज बन जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके किसी के शीशे दिल को ठेस न पहुँचाएँ, नर्म गुफ्तारी को अपना शियार बनाएं और ज़िंदगी की राहों में कामयाबी की मंजिलें तय करते चले जाएं। ये कामयाबी का सबसे बासर नुस्खा है।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाले ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा, पेश कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद फारूक। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है गैर फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम हुस्ने गज़ल। आज के प्रोग्राम में पहले समाअत फरमाइए जगदीश सहगल की आवाज़ में शाद फिदाई और ग़ुलाम रब्बानी ताबा का कलाम।

0: इस गज़ल के साथ ही आज का हुस्ने गज़ल प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम रूबरू।
1: समयीन आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फारूक नाज़ुकी। आप बहुत सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, आप शायर हैं, नक़ाद हैं, ड्रामा निगार हैं, कई हैसियतें आपकी हैं। कश्मीरी में भी आप लिखते हैं, उर्दू में भी आप लिखते हैं, तो आपकी शख्सियत बहर एतबार हम अजहद है, इसलिए हमें बहुत से मौजूदात मिलेंगे जिन पर उनसे गुफ्तगू करना है। सबसे पहले फारूक नाज़ुकी, जो उनके नाम का आखिरी हिस्सा है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। नाज़ुकी साहब, ये वही नाज़ुकी है जो मीर के शेर में इस्तेमाल हुई है?
2: नहीं, दरअसल मीर ने मेरा ही शेर उड़ा लिया
1: जी।
2: मैंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया था, नाज़ुकी उनके लब की
1: क्या कही है,
2: मीर ने अपने साथ जोड़ लिया। नहीं, दरअसल ये बात शहपुर साहब ऐसे है कि मीर नाज़ुकी नियाज़ी एक बुजुर्ग कश्मीर में हुए हैं, जो सिलसिले कादरिया को कश्मीर में लाए थे, उन्होंने उसको रिवाज दिया था। तो बहुत सी जो हमारी किताबें मौजूद हैं सूफियों पर, हसन की और तारीख आज़मी वगैरह में, उनके बारे में बहुत सी बातें दर्ज हैं, और उनकी खानकाह आज भी मर्जा हर खास व आम है, कादी कदलबे पिछले 700 साल से खड़ी है
1: जी,
2: जहाँ हम

0: उसके लिए भी एक तिलिस्म दरकार,
1: यकीनन
0: जिसके पास ये हो
1: वो
0: करे, तो वो तर्जमे की बात करे, नहीं तो उसको नसर बना के पेश करे। ये मैंने कॉलेज के जमाने में ये पढ़ा था, ये यार ये कितनी बड़ी बात कही है मौलाना। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सेंसिबिलिटीज जो इंसानों की हैं वो एक जैसी हैं, इसीलिए आपने होमर, वर्जिल, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन लोगों को आपने इन सवालों में मुंतकल किया क्योंकि सेंसिबिलिटीज कॉमन थी। आज भी अब ओट नाइटिंगेल अगर कीट्स का तर्जमा करेंगे तो वो जहर पीने वाली कैफियत जो है वो हर जबान में एक ही जैसी आएगी। उसको अब देखना है कि फनकार में एक्सप्रेशन में कितनी शिद्दत वो पैदा कर सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन बड़ा कार्यधारत वाला मामला है। एक एक मिसरे को लेके आप 10-10, 20-20 दिन बैठे रहेंगे कि मैं इसमें वो वही बेसाख्तगी लाऊं। उर्दू के लिए हमारे मुझे लगता है आसान है क्योंकि महजूर ने भी कोशिश हमेशा की कि उर्दू को की बहर को भी बोले, मतलब गालिब का शेर है, तुझे हम वली समझते
1: जो नबादा खार होता।,
0: ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते
1: जो नबादा खार
0: होता। अब महजूर ने इसको तर्जमा नहीं किया है, उसने एक शेर कहा है, वो कहता है चानी कथ महजूर चावा अरिफन आबे हयात, तेरी बातें कथा कथ चानी कथ महजूर चावा अरिफन आबे हयात, आरिफों को ये आबे हयात पिलाती हैं तेरी बातें ए रिंद, मगर माना दरवेश कामिल, मैं तुझे दरवेश कामिल तस्लीम करता, आशाक ने बादखार, आशाक ने हल्कदार। अब उसने उसको नीचे गिरा दिया और कहा अगर तू पटवारी नहीं होता तो मैं तेरी बात मानता। ये मिजाज को ट्रांसफर करने वाली बात मैंने कहा ये छोड़ दी गई है, इसको मैं उठाऊंगा। फिर मैंने कुछ तर्जमे किए, मतलब चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, उसी टोन में
1: हसरत
0: बड़ी पॉपुलर, और महजबीन के नाम से मैंने जहरे इश्क जब छापी तो मैं बड़ा परेशान हाल था, मैंने कहा कि भाई कुछ होने वाला है,
1: चूंकि जहरे इश्क का मामला
0: जहरे इश्क का मामला पता नहीं, पर बड़ी जबरदस्त कबूलियत हुई शफर भाई
1: जी। ये रेडियो पे आपने उसको,
0: हाँ रेडियो से वो आप गाते हैं इसको दास्तान के तौर पर
1: जी। अब इसमें शायद आसानी आपको यूं भी रही कि आप दोनों जुबानों के शायर थे, ये भी ये चीज़ जो है ये इसकी खास एक कैफियत है, और दोनों जुबानों पर उबूर रखते थे आप। एक ब्रॉडकास्टर आप रहे हैं बहुत सीनियर, और बड़ी हैसियतें मुख्तलिफ हैसियतों में आप रहे हैं, तो एक ज़माना वो था जब रेडियो एक गैलेक्सी था, उर्दू के इतने बड़े बड़े अदीब उसमें थे, उस ज़माने की कुछ कैफियत जो है उसके बारे में कुछ आप या अपने तजुर्बे के बारे में कुछ बताइए।
0: शेफर साहब देखिए ना, मैं अभी जब आपसे आ रहे थे ना, हम ओल्ड ब्रॉडकास्टिंग हाउस के स्टूडियो में, अब तो न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस का स्टूडियो भी, मैं आपसे कह रहा था कि वो कॉर्नर जिसका जिक्र किया गया है बहुत सी तहरीरों में, वहाँ मीरा जी बैठा करते थे
1: जी,
0: वहाँ मंटू बैठा करते थे और टाइप राइटर पर लिखा करते थे, वहाँ कृष्ण चंद्र, कुलदीप अख्तर, मुस्तर हाशमी, सलाम मछली शहरी, और बाद में अमीर खनफी और जुबैर रजवी साहब और दूसरे दोस्त बैठा करते थे। आज ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा आदमी नहीं है या इस बिल्डिंग के दूर दूर तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही है कि मीरा जी ने यहाँ कैसी शायरी की थी, दो नैन मिले वाली के गीत उसने यहाँ से लिखे थे, आबिजू जैसी कंट्रोवर्शियल नज़में यहाँ पैदा हुई थी। ये रेडियो उस वक्त एक कल्चरल इनकलाब ला रहा था, मेरा अकीदा है कि जिस वक्त ये हो सकते इख्तलाफ कर सकते हैं आप, जिस वक्त शेरशाह सूरी ने पेशावर टू ट्रंक रोड बनाया कैलकटा था, तो एक स्टेप फॉरवर्ड था वो। उसके बाद जब अंग्रेज सरकार ने रेलवे से हमको जोड़ा तो हिंदुस्तान की एक शरियाने कायम हो गई सरफेस के ऊपर कि इनसे मिलोगे इस तरह। उसके बाद तीसरा इनकलाबी कदम जो आया था 20वीं सदी में वो था ऑल इंडिया रेडियो का क्याम, आवाज के जरिए से आप हवाई लहरों के ऊपर अपनी बात फैला रहे हैं और पहुंचा रहे हैं।

0: मेरे ख्याल में ये ऐसे ही क्लीशेज हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर ही दरअसल आपको उकसाता है। कभी कभी मैं आगा शाहिद अली का, आप जानते होंगे, मर गए थे अमेरिका में, कश्मीर के हवाले से जाने जा, अंग्रेज अब कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, उनकी आखिरी किताब जो थी कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, तो उन एक लेक्चर दे रहे थे एक बार यूनिवर्सिटी में, मुझसे छोटे थे उम्र में, लवली पर्सन, तो उनने कहा, उनने एक लड़के ने सवाल किया, होनहार लड़के ने, कि शेर का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने गजल लिखी है अंग्रेजी में और फैज को तरस्टमन किया है उसी स्टाइल में, और फिर आपने ओरिजिनल गजलें भी कही हैं, अंग्रेजी में गजल कही है, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, किसी वक्त अचानक कोई आदमी कोई लफ्ज बोल जाता है, फिर मुझे चैन ही नहीं आता कि इस लफ्ज के पीछे एक नज़्म, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यस इट हैपन्स, या छोटा सा मामूली सा वाका हो जाता है घर में। मैं परसों एक नज्म, खैर नज्म अभी तैयार नहीं हुई है, नज्म मेरा पोता है 4 साल का, इंतहाई जहीन हमजा, मैंने उससे कहा मेरा कंप्यूटर खोल दो, वो हजरत कंप्यूटर जब खोलने लगे तो उन्होंने सारा निज़ाम मेरे सामने वाजह कर दिया कि इस कंप्यूटर में क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि दादू एक बात तुम्हारी समझ में आई, मैंने कहा नहीं आई, कहा होता यह है बुढ़ापे में मालूम क्या होता है, मैंने कहा क्या होता है, कहा बाल गिर जाते हैं लेकिन कानों में चले आते हैं। मैंने कहा यार ये क्या इरेलेवेंट होता है, आदमी कैसे होता है, मैंने कहा ये पूरा बच्चा बोल गया, अब देखिए यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, असल जगह को बोल रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो एक छोटे से वाक्य से जो नज्म को जन्म देती है।
1: जी,
0: आपके पास वक्त की कमी है और मैं बोलते ही जा रहा हूँ।
1: नहीं, आप बोल रहे हैं लेकिन काम की बातें आप बता रहे हैं।
0: आप रोक तो
1: नहीं। मैं इसके साथ साथ, चूंकि मैं भी कुछ शेर वेर टूटे फूटे कहता हूँ, तो मेरा तजुर्बा इससे मुख्तलिफ है कि कभी मालूम हुआ कि गजल कह रहे हैं और एक शेर गजल का हुआ, उसके बाद कोई नज्म हो गई और वो गजल नहीं हुई, तो महसूस हुआ कि तख्लीकी तजुर्बा जो है वो अपने लिए कोई अपनी शक्ल जो है खुद लेके पैदा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है बाज़ार। खैर, अब मैं चाहूँगा कि कुछ शायरी आप जो है सुनाएं ताकि सामईन आपकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हों।
0: हाँ,
1: गज़ल और नज़्म जो आप चाहें।
0: हाँ नहीं, कहीं से जितना आपके पास वक्त थोड़ा सा। मैं छोड़ आया था अपने घर को मगर उसी के ख्याल में हूँ।
1: मैं छोड़ आया था अपने घर को,
0: मैं छोड़ आया था अपने घर को मगर उसी के ख्याल में हूँ, नकुश पाए हवा नहीं हूँ मैं अपने माजी के हाल में
1: हूँ,
0: नकुश पाए हवा नहीं हूँ
1: मैं अपने
0: माजी के हाल में हूँ,
1: क्या क्या
0: बुलंदियों पर कयाम मेरा, हर एक पस्ती में नाम मेरा,
1: बुलंदियों पर कयाम मेरा,
0: बुलंदियों पर कयाम मेरा,
1: हर एक
0: पस्ती में नाम मेरा, मैं हर जमाने की आबरू हूँ, अरूज में हूँ जवाल में हूँ,
1: क्या क्या वाह,
0: मैं हर जमाने की आबरू हूँ, अरूज में हूँ जवाल में हूँ, हिसारे खौफ व हिरास में है भुताने वहम व गुमां की बस्ती,
1: वाह,
0: हिसारे खौफ व हिरास में है भुताने वहम व गुमां की बस्ती, मुझे खबर ही नहीं कि अब मैं जनूब में या शिमाल में,
1: क्या क्या वाह वाह,
0: मुझे खबर ही नहीं कि अब मैं जनूब में या शमाल में हूँ, यहाँ से निकलूँ तो जान लूंगा मगर असीरी में जब तलक हूँ,
1: यहाँ से निकलूँ तो जान लूंगा
0: मगर असीरी में जब तलक हूँ, मुझे भी इसने जवाब दे दे कि कैद अपने सवाल में हूँ,
1: क्या वाह,
0: मुझे भी इसने जवाब दे दे कि कैद अपने सवाल में हूँ, यहाँ किसी को खबर नहीं है किधर से आया किधर गया वो, यहाँ किसी को खबर नहीं है
1: किधर से आया
0: किधर से आया किधर गया वो, उसी की चश्मे करम है मुझ पर कि मस्त खुद अपने हाल में,
1: क्या क्या वाह,
0: कि मस्त खुद अपने हाल में हूँ,
1: वाह।
0: और कुछ अर्ज करूँ?
1: इरशाद फरमाइए।
0: नहीं, मैंने कहा ना कि ये माइक्रोफोन और उसके सामने बैठने के

0: ये आदमी को ख्याल नहीं रहेगा वक्त का, तो कहेंगे कि साहब ये आदमी ब्रॉडकास्टर कहाँ से हुआ। हमारे को पहले ही
1: अभी वक्त है, अभी शायद सुन
0: वो पहले ही बताया करते थे कि वक्त का ख्याल रखना। गहरी नीली शाम का मंजर लिखना है,
1: गहरी नीली शाम का मंजर लिखना है,
0: तेरी ही जुल्फों का दफ्तर लिखना है।
1: वाह वाह।
0: कई दिनों से बात नहीं की अपनों से, आज जरूरी खत अपने घर लिखना है। शिद्दत पर है हरे भरे पत्तों की प्यास, शिद्दत पर है हरे भरे पत्तों की प्यास, सहरा सहरा खून समंदर लिखना है। पत्थर पर हम नाम किसी का लिखेंगे, आईने पर आजर आजर लिखना है। चेहरा रोशन खुले हुए सहरा की धूप, गहरी आंखें गहरा सागर लिखना है।
1: क्या कहने, वाह।
0: इससे आगे कुछ लिखने से कासिर हूँ,
1: इससे आगे कुछ लिखने से कासिर हूँ,
0: इससे आगे तुझको बढ़कर लिखना है।
1: वाह वाह वाह। क्या कहने,
0: नाम उसका जहां जहां लिखना, बेवफाई की दास्तां लिखना।
1: वाह।
0: नाम उसका जहां जहां, जहां लिखना,
1: बेवफाई
0: की दास्तां लिखना, उसके चलने का जिक्र जब आए, एक दरिया रवां दवा लिखना। चांद बस्ती में फूल सोने के अब भी खिलते हैं मेहरबान
1: लिखना
0: लिखना।
1: नाजो के साथ जवाब ने ये आपने गजल के अशार सुनाए, बड़े खूबसूरत और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। कितने पहलू आपके तजुर्बात के हैं, अदब के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, और जो दूसरे आपके तजुर्बात रहे हैं, हम बहुत आपके ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी मुफीद और इतनी पुरमख्स गुफ्तगू फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: आपने सुना प्रोग्राम रूबरू। आज के प्रोग्राम में आपने जनाब फारूक नाज़िकी के साथ डॉक्टर शाहपुर रसूल की गुफ्तगू सुनी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। आज सुनेंगे मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे नगमे और उन्हें पेश करेंगे खराज अकीदत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गज़ल सुनी तीन देवियां फिल्म से। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में दस्तक फिल्म से है।

अभी आपने सुनी गजल ममता फिल्म से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अब सुनिए तलत महमूद को, फिल्म का नाम है आरजू।

0: ये कौन था?
1: कोई नहीं था, सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन मुझे कई दफा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे पास से गुजर गया है? फिर जब ध्यान से देखता हूं तो कोई नहीं होता। कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे एक भूत बंगले से झांक रहा है, और फिर वो साया बनकर दरख्तों के झुंड में छुप गया है। लेकिन गौर से देखता हूं तो ना कहीं दरख्त होते हैं ना साया, बंगले का भी नामो निशान नहीं। मैं क्या था, क्या हो गया हूं? कभी खामखाब महक सी आने लगती है आसपास से, जैसे बचपन में आया करती थी, जैसे खुशबुओं भरा हवा का झोंका आए, या किसी पहाड़ी पर अचानक फूल ही फूल खिल उठे, हवा की लहर आए और फिर सूरज चमकना शुरू कर दे। चमकते सूरज को खाइयों से धुआं उठकर ढांप ले और अंधेरा छा जाए, बादल गरजने लगे, एक तूफान मुझे घेरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कुछ ज्यादा ही ख्वाब देखने लगा हूं आजकल। भरे बाजारों में उजाड़ों और वीरानों के ख्वाब, जंगलों और उजाड़ों में रौनक भरे मेलों के ख्वाब, पल पल बदलते मौसमों के ख्वाब और

0: ये क्या, मुझे तो बैंक जाना था, कुछ रुपए निकलवाने थे और मैं
1: भाई साहब, इस शहर में आग लगती नहीं, लगाई जाती।
2: क्यों भाई साहब, वो क्यों?
1: आग लगाना भी आजकल का रोजगार बन गया है।
3: वो क्यों जनाब?
1: देखते नहीं, अपने महानगर में जमीन की कीमतें कहां से कहां पहुंच चुकी। आग तो लगाने ही पड़ती है।
3: क्यों, किस लिए?
1: जगह नहीं खाली करवानी झुग्गी झोंपड़ी वालों से।
0: तो वो बेचारे कहां जाएं?
1: तो उन बिचारों के लिए ठेकेदार और बिल्डर अपना अपना धंधा छोड़ दें हैं। 25-30 हजार रुपए वाला फ्लैट पूरे 5 लाख का हो गया है और फिर भी वो फ्लैट है, जमीन अपनी नहीं होती। अजी राजधानी में खाली जगह तो रही नहीं।
2: मैं सोचता हूँ इस तरह गरीबों को, मजदूरों को बेघर करने से फायदा?
0: फायदा तो भाई प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स को होता है। जिनके घरों में आग लगती है उनका तो

0: नुकसान ही नुकसान है।
1: भला ये अपना गांव छोड़कर महानगर में क्या लेने आ जाते हैं?
2: जल मरने, तुम ये समझ लो मेरे भाई। लेकिन एक बात जान लो, हमारी सरकार उनके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देती, नई जगह ढूंढ निकालती है। भाई ये लोग ही तो सरकार का वोट बैंक हैं, यही लोग नेताओं का सहारा भी हैं। महानगर के आसपास कई वीराने हैं, उन्हें आबाद भी तो करना होता है। ये बात भी सोचो। हाँ सोचो।
0: आप लोगों की बातों ने मुझे भी उलझा लिया, मुझे तो बैंक जाना था।
2: बैंक? हो, मैं भी तो बैंक में ही काम करता हूँ जनाब।
0: इस वक्त तो 10:30 बज चुके हैं और आप?
2: क्या फर्क पड़ता है जनाब, राजधानी में जितनी नौकरी मिलनी मुश्किल है, मिली नौकरी से निकालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बस किसी तरह एक दफा पक्के हो जाओ बात।
0: तो आप सरकार की इसी रियायत का फायदा उठा रहे हैं?
2: आप यूं ही समझ लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, ये तो ठीक हो गया था।
0: एक विथड्रॉल फॉर्म दीजिए मिस्टर।
2: ये लीजिए। अरे वो आप ही हैं, ये लीजिए फॉर्म। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे?
0: फरमाइए।
2: आप करते क्या हैं?
0: क्या करता हूँ? बहुत कुछ करता हूँ। वैसे मैं
2: रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया है आपकी पासबुक से। लेकिन आपका वक्त कैसे गुजरता है?
0: वक्त? सुबह शाम दूध लाता हूँ, बच्चों को स्कूल की बस तक पहुँचाता हूँ, दोपहर को 2 बजे वापस लाना, सारा दिन नौकरों की निगरानी करना, हर महीने बिजली और पानी के बिल जमा करवाना, इसी तरह के कई और काम हैं। वक्त का तो पता ही नहीं चला, 10 साल गुजर गए।
2: गोया आप 10 साल से रिटायर्ड हैं। मैं नया नया ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। कहाँ काम करते थे आप?
0: कचहरी में।
2: हाई कोर्ट में?
0: उससे भी जरा ऊंची
2: है। तो सुप्रीम कोर्ट, यूं कहिए ना, वो कोई कचहरी है।
0: जिला हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी कचहरियां ही होती हैं।
2: लेकिन वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मुकदमों के फैसले सुनाए जाते हैं, क्यों जनाब?
0: हाँ ये तो है।
2: आप वहाँ क्या थे? मुंशी थे? क्लर्क थे? रीडर थे? क्या थे, क्या करते थे?
0: फैसले सुनाया करता था।
2: क्या क्या? आप मेरा मतलब है कि जज थे आप? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी आप इंसाफ करते थे?
0: इंसाफ का तो पता नहीं, फैसले जरूर सुनाता था जो गवाहियों पर मबनी होते थे। इंसाफ करता था ये नहीं कह सकता। इंसाफ तो अब ये जिंदगी कर रही है मेरे साथ।
2: आप इतने बड़े जज थे और अब
0: मैं एक फालतू चीज हूँ जो छोटे मोटे काम करती रहती है।
2: लेकिन आप तो बहुत बड़ी अदालत के
0: जज था कभी, अब नहीं हूँ। अरे आपने टोकन भी नहीं दिया अभी तक।
2: आपने फॉर्म भी तो कंप्लीट नहीं किया अभी तक।
0: ये लीजिए। न जाने इन दिनों मैं क्यों हर किसी से बातें करने लगता हूँ, हालांकि मैं कभी सिर्फ सुना करता था, और आजकल जब कोई ना हो तो अपने आप से ही बातें करने लग जाता हूँ।
2: जनाब जज साहब एक बात और बताते जाइए।
0: अब वो भी फरमाइए।
2: आपने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली, 10 साल से लगातार काम ही करते चले जा रहे हैं।
0: अब की आपने काम की बात, वाकई मैंने कोई छुट्टी ही नहीं ली, 10 साल हो गए, लेकिन अब लूंगा।
2: किससे?
0: अपने आप से और किससे। मैं कोई किसी का नौकर

0: तो नहीं हूं कि उससे छुट्टी मांगू।
1: अब एक राज की बात बताते जाइए।
0: बोलिए।
1: बाकी रिटायर आदमियों की तरह आपकी बातों में झल्लाहट, माथे पर त्यूरी और चाल में थकन नहीं, क्यों? हालांकि आप काम भी इतना करते हैं।
0: भाई काम कोई भी हो, दिलचस्पी से खुशी खुशी करो तो ना थकन होती है, ना माथे पर त्योरियां पड़ती हैं और ना ही बातों में झल्लाहट। बस जाऊं मैं अब?
1: शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नहीं, शुक्रिया आपका। चलता हूं मैं।
1: अच्छा।

0: देखिए ना पिताजी क्या करते हैं, चीजें इधर उधर करते रहते हैं, आदमी परेशान हो जाता है।
1: अरे भाई वो तो चीजों को संभाल कर उनकी ठीक जगह पर रख देते हैं।
0: खाक ठीक जगह पर रखते हैं, मैं जहाँ रखती हूँ वहाँ क्यों नहीं रहने देते। हे भगवान, मुझे तो तू बुढ़ापा नहीं दिखाना।
1: अरे अब तुम और क्या बूढ़ी होगी, जलती भुनती रहती हो हर वक्त, और बल तो खुद ब खुद पहले ही पड़ गए माथे पर। बूढ़ा होने में कोई कसर है क्या?
0: लेकिन उनकी तरह बहुत मीठा तो नहीं खाती, लोगों की बातों में दखल तो नहीं देती, खामखा शक तो नहीं करती रहती।
1: अरे ये सब तो पिताजी भी नहीं करते।
0: अरे पिताजी की बात और है, और फिर हम दोनों घर पे रहते ही कितना है, क्या पता ये सब भी वो करते ही हो।
1: ओफो, अरे अब चुप भी रहो, वो देखो वो शायद आ गए। वो
2: टैक्सी आ गई मेरे लिए बाबू।
0: आप कहीं जा रहे हैं पिताजी?
2: हाँ, कुछ उपजा गया हूँ इसलिए। क्यों?
0: ओशो जरूर जाइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
2: पता नहीं, फैसला नहीं किया, बस इस शोरगुल से दूर जाऊंगा।
1: फिर भी कुछ तो तय किया होगा पिताजी?
2: नहीं अभी तय नहीं किया।
1: तो कब करेंगे?
2: स्टेशन पर जाकर या बस अड्डे पहुंचकर।
1: तो आपने अभी तक यानी कहां ये सब?
2: हाँ अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया।
1: फिर भी कुछ तो सोचा होगा पिताजी?
2: कहा ना अभी तक कुछ नहीं सोचा। अच्छा चलता हूँ मैं।

0: ये गाड़ी कहाँ जाएगी मिस्टर?
1: कालका मेल है जनाब, कालका मेल कालका जाएगी। पर आपको कहाँ का टिकट चाहिए?
0: कालका, चलो कालका का ही टिकट दे दीजिए। वहां से 9 मील का शॉर्टकट हुआ करता था, वहीं तो वो भूत बंगला है।
1: ये लीजिए। ठहरिए जनाब, ये बाकी पैसे तो लेते जाइए।
0: बाकी पैसे आप रख लीजिए।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।

ये हुई ना जगह, बिल्कुल वही जगह है, वही दो पहाड़ियां, सामने वाली पहाड़ी पर वही भूत बंगला, लेकिन इसमें तो अब तीन दरख्त रह गए, रंग बदलते हैं, अभी सब्ज थे और अभी सफेद हो गए, चांदी से सफेद। ये रही वो चक्कर वाली सड़कें, और फिर इस शेल्टर से ऊपर जाने वाली दो पगडंडियां।

0: जो पहाड़ियों की चोटियों तक दौड़ गई हैं नागिनों की तरह बल खाती हुई, एक ईगल पॉइंट वाले पहाड़ की तरफ, दूसरी उस भूत बंगले की तरफ जो कभी महाराजा का महल होता था, जहां रात गए तक डांस और मुजरे हुआ करते थे। लेकिन ये पगडंडियां बिछड़ क्यों जाती हैं, तन्हा तन्हा क्यों चलती हैं, और यहां खाइयों में किस तरह अचानक धुएं उठा करते थे। हाँ, वो तो अभी उठ रहे हैं। वहां खाई में एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो हंस रहा है। चीड़ें अब भी झूमती रहती हैं, क्या नजर आता है उन्हें। लेकिन ये पगडंडियां अकेली अकेली तन्हा तन्हा क्यों चलती रहती हैं?
1: पगडंडियां तन्हा ही अच्छी लगती हैं। मैं भी यहाँ आकर बैठ सकती हूँ?
0: हाँ, आइए, आप बेंच खाली है, तशरीफ रखें।
1: दो दिन से आपको यहाँ आकर कुछ ढूंढते हुए देख रही हूँ। किसका इंतजार है आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप?
0: ये आपको किसने कहा कि मैं कुछ ढूंढने आया हूँ? पहले आप ये बताएं कि आप कौन हैं।
1: मुझे भी आप एक पगडंडी समझ लीजिए जो बेमौसम पहाड़ों की तरफ भागी आती है जब टूरिस्ट मैदानों को भागते हैं। अब आपको दो दिन से देखा आते हुए यहाँ तो लगा कि...
0: कैसा लगा? क्या लगा आपको?
1: यही कि आप कभी सड़क से बातें करने लगते हैं, कभी चीड़ के दरख्तों से, और कभी इक्का दुक्का खिले फूल से कुछ पूछ रहे होते हैं।
0: मैं शहर से भागकर यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर एक दूसरी बेचैनी ने घेर लिया है, तो आपने अंदाजा लगाया कि मैं...
1: हाँ, उस सामने वाली पहाड़ी पर जो बंगला है वो हम दो बहनों का है। अब वहीं से आपको देखा तो मैंने सोचा
0: कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है। क्या आप उस भूत बंगले में रहती हैं जहाँ दरख्त रंग बदलते हैं, जहाँ रात को परछाइयाँ घूमती हैं और एक गीत सुनाई देता है?
1: अब वो ऋतु लॉज है, मेरी बहन के नाम पर। मैं भी उसमें कुछ दिन गुजारने आ जाती हूँ हर बरस इसी ऋतु में।
0: क्यों?
1: इन दिनों यहाँ सुकून होता है, शांति होती है।
0: हाँ, सुकून तो है यहाँ, शांति बहुत है।
1: लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं।
0: मैं यहाँ बैठा था कि अचानक बारिश आ गई और वो इसी शेल्टर के नीचे आ गई, इसी जगह बैठ गई और फिर गुनगुनाने लगी।
2: जी

0: मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं गा रही, पहाड़ियों की चोटियां गा रही हैं। कि अचानक गीत रुक गया, बारिश थम गई थी ना, और गीत चला गया पता नहीं कहां। वो गीत
1: आपने उसे फिर कभी नहीं देखा?
0: हाँ, एक दफा वो फिर आई थी, मैं इसी जगह बैठा था कि वो आ गई, लेकिन उस दिन बारिश नहीं आई थी। आकर बैठ गई, पहले गुनगुनाने लगी फिर गाने लगी। मैं उस गीत में शराबोर हो गया, वो गाते हुए और भी अच्छी लगती थी।
1: आपने उससे कहा कि वो गाती हुई बहुत अच्छी लगती है?
0: नहीं, कह नहीं पाया, चाहता तो था लेकिन झिझक आ गई।
1: कमाल है, आप किसी को एक अच्छी बात नहीं कह पाए। लोग तो बुरी बात बेझिझक कह देते हैं और आप
0: शायद अच्छी बात वो भी नहीं कह पाते, मैं भी नहीं कह पाया। सारी जिंदगी गुजर गई और सर छोड़ी, ऐसी बातों में क्या रखा है। आप सुनाइए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
1: मुझे खुश करते रहते हैं।
0: कैसे?
1: दौलत इकट्ठी करके, हर तरीके से, हर ढंग से। उनका ख्याल है कि मैं दौलत से, जायदाद से खुश हो जाऊंगी।
0: वो करते क्या हैं आखिर?
1: बहुत बड़े बिल्डर हैं मेट्रोपॉलिटन के, वहां सस्ती जमीन खरीदकर उस पर कई मंजिला इमारतें बनाते हैं और ढेरों दौलत समेटते हैं। दिल बहलाने के लिए उन्होंने ये धंधा चुना है।
0: क्यों, आपके यहां तो?
1: हमारे यहां कोई बच्चा नहीं, पहले तो होने नहीं दिया, फिर हुआ ही नहीं, और अब कोई उम्मीद भी नहीं, इसलिए उन्होंने शहर शहर खाली जगह ढूंढनी शुरू कर दी। और कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। छोड़िए, ये मैं क्या अपने बखेड़े ले बैठी, हम तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं।
0: अब तो जान गए हैं सिवाय नामों के, लेकिन नामों में क्या रखा है? किसी की परेशानी जान लेना उसको जानने के बराबर होता है।
1: अच्छा, वो गीत याद है आपको?
0: अब थोड़ा बहुत याद तो है।
1: सुनाइए तो।
0: लेकिन मुझे गाना नहीं आता, सिर्फ सुनना आता है।
1: देखिए, गाना सबको आता है, अच्छा या बुरा, लेकिन ये कहना गलत है कि गाना नहीं आता। अच्छा, वैसे गुनगुना दीजिए, सुना दीजिए ना, या और तो कोई है नहीं?
0: अच्छा, अगर आप जिद करती हैं तो

0: छोड़िए गीत को, अब तो एक प्यास है, एक भटकन है, एक तलाश है।
1: तो वो एक प्यास, एक भटकन, एक तलाश देखी आपको?
0: आप यूं ही समझ लीजिए।
1: यही तो समझ नहीं आया कि आप एक अच्छी और खूबसूरत बात उसे कह क्यों नहीं पाए।
0: हाँ, नहीं कह पाया।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: फिर वो अचानक चली गई, लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिली। हमारे डैडी की तब्दीली हो गई, रूखे सूखे पहाड़ों की राजधानी की तरफ। फिर हम यहां कभी नहीं आए और आधी सदी बीत गई। अब तो उसका चेहरा खदोखाल तक याद नहीं रहे, बस गीत याद है, वो लहजा याद है, पूरे बोल भी याद नहीं रहे।
1: उसका चेहरा, उसके नैन नक्श क्यों नहीं याद रहे?
0: मैं शोर व गुल का हिस्सा बन गया, वक्त भी धूल उड़ाता हुआ ही आया। ख्याल था गीत को भी भूल जाऊंगा, जब यकीन आता कि भूल गया हूं तो ये एक टीस सी बनकर जाग उठता, दर्द बनकर गीत गूंजने लगता, महक बनकर

0: फैल जाता है, लेकिन लेकिन पूरा गीत याद नहीं आ रहा और किसी ने सुनाया भी नहीं कभी।
1: मेरा ख्याल है ये गीत तो आपको सुनवाया जा सकता है।
0: क्या?
1: हाँ,
0: सच?
1: हाँ हाँ, गीत गाने वाले का तो नहीं कह सकती, लेकिन गीत मिल जाएगा आपको।
0: कब, कैसे, कहाँ?
1: यहाँ, इसी जगह, कल इसी वक्त। मेरी दीदी भी इसी गीत को गाती रहती है।
0: अच्छा,
1: मैं उनको लेकर यहाँ आ जाऊंगी। गीत का क्या है, वो सुना देंगी आपको।
0: आपकी दीदी का नाम?
1: रितु दीदी।
0: रितु?
1: हाँ, रुत, मौसम, इनको रितु भी कहते हैं। और उस भूत बंगले को अब लोग रितु लॉज के नाम से जानते हैं।
0: रुत, मौसम, रुत, रुत का क्या भरोसा, आए आए ना आए ना आए। पर आप तो आएंगी ना?
1: हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों आएंगी। अच्छा, मैं चलूं, काफी देर हो गई और उनको दवा देने का वक्त भी हो गया है।
0: तो कल मैं इंतजार करूंगा, इसी जगह इसी वक्त।
1: इंतजार किसका?
0: रुत का, मौसम का और
1: गीत का।

0: शायद मैं कुछ जल्दी आ गया हूं। अगर आज यहां कोई ना आया तो लगता भी है अब यहां कोई नहीं आएगा।
1: मैं तो आ गई हूं, कुछ देर हो गई। तार वाला आ गया था इसलिए।
0: तार? कैसा तार? खैरियत तो है?
1: वो शहर में कोई झगड़ा हो गया था उनका। जमीन खाली करवाना आसान काम नहीं, लेकिन वो सब झगड़े निपटा लेते हैं।
0: लेकिन वो आपकी दीदी?
1: हाँ, वो नहीं आ सकी। बारिश में वो बाहर नहीं निकलती, उन्हें कोई वहम भी है। बारिश से, काले बादलों से, कड़क कर चमकने वाली बिजली से। हालांकि यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह हमारा बंगला ऋतु लॉज।
0: किस किस्म का वहम है उन्हें? बारिश का?
1: कहती है बारिश तो सब कुछ बहा कर ले जाती है।
0: लेकिन बारिश तो हरियाली को जन्म देती है, फूलों को आमूद होती है, दरख्तों को नहलाती है और नए गुंचे खिलते हैं, कोहसार महक उठते हैं, फजा नगमों से गूंज उठती है।
1: हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उन्हें नहीं ला सकी। और वो गीत आप नहीं सुन सकते। क्या करें, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। एक बार कोई फैसला कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे, आपको क्या हो गया? आप तो बिल्कुल मुरझा गए। ऐसे भी कोई उदास होता है?
0: क्या उदास होना है, ये ख्वाब बनते बनते टूट गया है, और तो कोई बात नहीं।
1: देखिए, दीदी नहीं आ सकी तो क्या, आप तो उनके पास जा सकते हैं ना।
0: अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मैं तो गीत तलाश कर रहा हूँ, उसके लिए कहीं भी जा सकता हूँ।
1: लेकिन बारिश और ज्यादा हो गई है, ये बादल छटने वाले नहीं लगते हैं।
0: जानता था रुत का क्या भरोसा, वो आए तो आए, ना आए तो ना आए। रुतें आती रहती हैं, रुतें जाती रहती हैं, लेकिन तलाश का तो कोई मौसम नहीं होता, इंतजार की कोई घड़ी नहीं होती। चलिए जल्दी चलिए, फिर कहीं देर ना हो जाए।

0: आप जल्दी से मुझे उस गीत के पास ले चलिए ना।
1: इस तूफानी बारिश में?
0: हाँ, इसी तूफानी बारिश में पहाड़ी की उस चोटी पर बंगले में मुझे बिजली की चमक में एक साया सा लहराता दिखाई दिया है। एक गीत थरथराया है, शायद वही गीत है। जल्दी कीजिए ना प्लीज।
1: ठीक है तो चलिए। देखिए रास्ते में खाई है, नदी जैसी जिस पर बाढ़ आई हुई है। सुनिए
0: जी,
1: घर तक पहुंचते पहुंचते मैं ही वो गीत गाती चलूं तो
0: क्या?

वगदा जो

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ये ड्रामा, उन्वान था रुत आए रुत जाए, पेशकश सरफराज अहमद की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो के दरमियान बाहमी मुजाकरात शुरू हो गए हैं। अमरीका में खुफिया सर्विस के एहलकारों ने व्हाइट हाउस के नज़दीक फायरिंग के बाद एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। जमहूरिया कांगो में हुक्काम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। अफ्रीकी यूनियन ने मजीद मुल्कों में इस वायरस के फैलने की वार्निंग जारी की है। टेनिस में आज पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है। खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही इनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दुन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब यह नहीं कि हम अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। फौजी और फौजी तकनीकी ताउन पर भारत रूस के बैन हुकूमती कमीशन के तहत पांचवीं जैली वर्किंग ग्रुप लैंड की मीटिंग नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा के एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ADGPI ने कहा कि कल की मीटिंग में भारतीय फौज और रूसी बर्री फौज के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक और अहम संग मील तय किया है। ADGPI ने इस बात की निशानदेही की कि दोनों फरीकों ने नतीजा खेज तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद बाहमी तौर पर सीखने, ऑपरेशनल हम आहंगी और दो तरफा फौजी सलाहियतों को बढ़ाना है। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो के दरमियान बाहमी मुजाकरात शुरू हो गए हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रोबियो क्वाड के वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से चार दिन के दौर पर कल भारत पहुंचे थे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फरामी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दो तरफा ताउन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीका आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रोबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। हमारे नामनिगार ने खबर दी कि क्वाड के वज़ीर खारजा की मीटिंग 26 मई को होगी। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिट्सू, मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काइल के क्वाड विजन को मद्देनज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे और क्वाड के जारी इकदामात पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफद के साथ कनाडा के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। वजारत तजारत ने मुतला किया है कि तजारत सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इकतसादी शराकत दारी माहदे CEPA के मुजाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में 2 तरफ़ा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे जो इस दौरे का मरकजी महवर है। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनाकिद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को ख़त्म हुआ था। इस दौरान ओटावा में मुजाकरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजन और बाहमी तौर पर फायदेमंद CEPA के जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ और हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाक़े के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने कहा है कि वो इस वाक़े की तफसीलात हासिल करने के बाद आवाम को जानकारी फराहम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। अफ्रीकी यूनियन के सेहत हुकाम ने इससे पहले खबरदार किया था कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के मजीद मुल्कों में इस वायरस के फैलने का खतरा है। भारत सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। उसने इन मुल्कों में रहने वाले यह सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को हिदायत दी है कि वो मकामी हुकाम की तरफ से जारी की गई सेहत आमा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत ने इबोला बीमारी के किसी केस की इत्तला नहीं दी है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ़्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत यकसर तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनात की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ़्ज़ान सेहत के निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज़ देकर भारत अपने हिफ़्ज़ान सेहत के इको निज़ाम के मुस्तक़बिल को एक शक्ल दे रहा है। जनाब नड्डा ने कहा कि मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ़्ज़ान सेहत में पेशावराना

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नगमा था माया फिल्म से। अब सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम को, फिल्म है जो जीता वही सिकंदर।

ज्वल थी फिल्म का नगमा भी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना। अगली पेशकश कारवां फिल्म से है।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त है तारीख साज का। आज का मौजू है बायजीद बस्तामी।
1: बायजीद बस्तामी। बायजीद बस्तामी आलम इस्लाम के मारूफ सूफी थे। वो बुस्ताम ईरान में 804 ईस्वी में पैदा हुए और 874 ईस्वी में उनकी वफात हुई। उनका असल नाम अबू यजीद तैफूर बिन ईसा था, मगर वो बायजीद बस्तामी के नाम से मशहूर हुए। बायजीद बस्तामी के आबा अजदाद मजूसी थे, जो बाद में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और सभी ने अपने ज़माने में दीन इस्लाम की खिदमत की। अपने आबा अजदाद की रवायत पर चलते हुए बायजीद बस्तामी ने भी खुद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। बायजीद बस्तामी का मकाम औलिया अल्लाह और मशायख में से एक है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार तस्करतुल औलिया में उनके बारे में लिखते हैं, वो मादरजाद वली अल्लाह थे। उनकी वालदा फरमाती हैं कि जब वो मेरे पेट में थे तो जब कभी मैं मुश्तबा लुकमा खा लेती तो आप मेरे पेट में तड़पना शुरू कर देते। जब तक कह न करती और वो लुकमा दूर न हो जाता, आप आराम न करते। बायजीद बस्तामी के बारे में मशहूर सूफी जुनैद बगदादी का बयान है कि बायजीद बस्तामी को औलिया अल्लाह में वही एजाज हासिल है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मलाइका में, और तौहीद में तमाम बुजुर्गों की इंतहा आपकी इब्तदा है। इन्हीं खसलतों की वजह से बायजीद बस्तामी को सुल्तानुल आरिफीन भी कहा जाता है। तारीख में मस्कूर है कि बायजीद बस्तामी ने इब्तदाई तालीम अपने घर के करीबी मकतब में हासिल की। उनका जहन तसव्वुफ की तरफ उसी वक्त माइल हो गया जबकि वो तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे। जिक्र शगल में ज्यादा से ज्यादा मशगूल रहने के लिए उन्होंने अपनी वालदा से इजाजत ली और सहराओं और जंगलों में निकल पड़े। वो मुल्क शाम के मुख्तलिफ बयाबानों में 30 सालों तक रियाजत करते रहे। दरी असना उन्होंने 170 से जायद मशायख से कस्ब फैज हासिल किया। उनमें सर फहरिस्त नाम इमाम जाफर सादिक का है। उनसे उन्होंने तरबियत बातिनी हासिल की और इमाम जाफर सादिक ने उन्हें खिलाफत सौंप दी। बायजीद बस्तामी की जिंदगी के बेशुमार करामाती वाकयात मुख्तलिफ किताबों में बिखरे हुए हैं, जिनमें शेख फरीदुद्दीन अत्तार की किताब तस्करतुल औलिया भी एक है। बायजीद बस्तामी से मुतल्लिक ज्यादा वाकयात उनकी रियाजत और जिक्र इलाही से मुतल्लिक हैं। वो हमेशा इस बात के कोशां रहते कि लोगों को उनकी रियाजत और इबादती इन्हमाक का पता न चल सके, इसलिए वो बारहा ऐसे कदम उठा लेते कि लोग उन्हें बुरा समझने लगते और इस तरह वो तन्हा होकर जिक्र इलाही में फिर मशगूल हो जाते। बायजीद बस्तामी शरीयत इलाही के हद दर्जा पाबंद थे। जब वो हज के सफर पर रवाना हुए तो रास्ते में चंद कदम चलते

0: Méridien.
1: सीआईडी फिल्म का नगमा आपने लता मंगेशकर, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में सुना। यह है लता मंगेशकर के साथ सोनू निगम, फिल्म है 1 2 का 4।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार अनुभव जी।
2: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
3: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में ये है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 1900 लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है,
2: जी,
3: वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
2: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही, इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं, ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
2: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती हैं और कैसे प्रोत्साहित करती हैं?
3: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिसे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस है, जो

0: चुनौती है देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते,
1: जी
0: लगातार उनके लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे, और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
1: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।
1: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से ये स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है और बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
0: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई।
1: जी बिल्कुल,
0: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि 5 कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करे अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है,
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
1: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
0: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपके 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहां शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसमें हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है। और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन की हमने बात की वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा पीएम यहाँ जाने से पहले यूएई गए।

0: वहां स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है और कई डिफेंस क्रिटिकल मिनरल साइंस टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते,
1: बिल्कुल
0: जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं।
1: जी
0: ये बड़ी चेंज आई है।
1: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूँ कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए, महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो, अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को। एक क्षेत्र नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को, मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी टियर 2, टियर 3, वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप के आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है, आपको कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है, जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है। ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
0: ज्यादातर इन रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
1: जी।
0: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, उसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है। और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे डर जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, तब भी जाके अवसर आगे आएगा।
1: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
0: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए
1: जी।
0: तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उस पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो उस

0: पे तो मेरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ पे एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउन स्ट्रीम भी होती है। एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निधि क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र आप खुला गया, आपको डिफेंस
1: जी
0: खुला गया है,
1: बिल्कुल
0: डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया। आप देख रहे बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी ज्वाइंट प्रोडक्शन में चल रहा है।
1: जी
0: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह
1: जी
0: इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
1: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान बाहमी मुजाकरात शुरू हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत ने इबोला वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र भारतीय शहरियों को कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान के लिए गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम अज कम 30 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में आज पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान जामे आलमी क्लीदी साझेदारी कायम है और इसमें मजबूत और वसी तर बुनियाद वाले इश्तराक को खास अहमियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ये बात कही। वजीर खारजा ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का असर न सिर्फ इन दोनों मुल्कों पर पड़ता है बल्कि दीगर खित्ते और वसीतर दुनिया पर भी ये असरअंदाज होते हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलात और दुनिया के कई हिस्सों में दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि आज पेचीदा हालात हैं, लेकिन साथ ही ये एतमाद भी जाहिर किया कि दोनों फरीक खुली और मुफीद बातचीत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड उजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफद के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तजारत ने मुत्तला किया है कि तजारत, सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में 2 तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे जो इस दौरे का मरकजी महवर है। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को ख़त्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरका मकसद 2030 तक दो तरफा तजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुँचाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही इनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दून और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। फौजी और फौजी तकनीकी ताउन पर भारत रूस के बैन हुकूमती कमीशन के तहत पांचवें जैली वर्किंग ग्रुप लैंड की मीटिंग नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा के एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ADGPI ने कहा कि कल की मीटिंग में भारतीय फौज और रूसी बर्री अफवाज के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक और अहम संगे मील तय किया है। ADGPI ने इस बात की निशानदेही की कि दोनों फरीकों ने नतीजा खेज तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद बाहमी तौर पर सीखने, ऑपरेशनल हमाहंगी और दो तरफा फौजी सलाहियतों को बढ़ाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र उसने इन मुल्कों में रहने वाले या सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को हदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी की गई सेहत आम्मा की हदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत ने एबोला बीमारी के किसी केस की इत्तला नहीं दी है। जम्हूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। अफ्रीकी यूनियन के सेहत हुकाम ने इससे पहले खबरदार किया था कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के मजीद मुल्कों में इस वायरस के फैलने का खतरा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 30 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निमटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। एक सौ पच्चीसवां फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम, जो आमतौर पर रोलांड गैरोस के नाम से जाना जाता है, आज पेरिस में शुरू हो रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए कोशिश शुरू करेंगे। तीन बार के चैंपियन कोर्ट फिलिप कैरटियर में नाइट सेशन के दौरान फ्रेंच खिलाड़ी गोवेनी पेट्शी पेरिकार्ड के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। एक और टेनिस खिलाड़ी और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर जवेरेव और सातवें दर्जे के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज भी टूर्नामेंट के पहले दिन मर्दों के सिंगल्स खिलाड़ियों के साथ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी एनिक सिनर की ये कोशिश होगी कि वो पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीतें। पिछले साल वो फाइनल में कार्लोस अल्कराज से हार कर दूसरी पोजीशन पर आए थे। कल वो अपना मैच खेलेंगे। ख्वातीन के जुमरे में कोकोगाफ मौजूदा चैंपियन के तौर पर फ्रेंच ओपन में खेलेंगी। इसी दौरान दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्याना सबालेंका का मकसद ये होगा कि वो पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीतें। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान रॉयल्स

0: को प्ले ऑफ के लिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखने की खातिर ये मैच जीतना होगा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में मायूसकुन रही है और वो आईपीएल से पहले ही बाहर हो चुकी है। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान बाहमी मुजाकरात शुरू हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत ने इबोला वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र भारतीय शहरियों को कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 30 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में आज पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान बाहमी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत ने एबोला वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र भारतीय शहरियों को कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान के लिए गैर जरूरी सफर ना करने का मशवरा दिया है। और टेनिस में आज पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस अब ख़त्म होती है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ एक मरतबा हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

और दोस्तों, हम भी आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं यानी रेगुलर लिसनर हैं, उनको तो मालूम ही है कि हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। और जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैंने इस ईमेल आईडी को दोबारा से बता रहा हूं, ip.radio.delhi@gmail.com। इस पर मेल करके आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम अनुरोध फिल्म की, और इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने बहुत ही यादगार भूमिका निभाई है। और उनके अलावा इस फिल्म में विनोद मेहरा साहब का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन वह रोल बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू जाने वाला था। और हिंदी सिनेमा में जब भी परंपरावादी किसी कवि या लेखक को संघर्ष करना पड़ता है, तो उसे पहचान और अस्तित्व के लिए बेहद कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, चाहे वो बात सुपर डुपर क्लासिकल हिट मूवी प्यासा के विजय यानी गुरुदत्त साहब की हो, या फिर नमक हराम के आलम यानी रजा मुराद साहब की हो, या फिर बात हो हमारी आज की फिल्म अनुरोध के श्रीकांत की, उनकी कविताएं तभी सामने आती हैं जब कोई उन्हें गीत के रूप में पहचान देता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर एक कवि को बीमार और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े तो वो क्यों संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, क्योंकि उसे एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध करना पड़ता है, उसे आत्मपीड़ित होना पड़ता है, जो समाधान तो देता है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर हम बात करें अनुरोध फिल्म की, तो अनुरोध फिल्म उस गुमनाम कवि को एक श्रद्धांजलि है जो बनावटी खुशियों से पले बढ़े समाज के अशांत जीवन को सुकून देता है। इस कवि की दुनिया में छल, कपट और दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी रचनाओं में पारदर्शिता होती है, उनकी प्रतिभापूर्ण आवाज के माध्यम से लोगों तक उनके दिलों को छू जाते हैं, और इस प्रक्रिया में उनकी आवाज स्मृति में बस जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुण खन्ना यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जो फिल्म के मुख्य किरदार हैं, और उन्होंने निभाया है अरुण का किरदार। वे एक महत्वाकांक्षी गायक हैं, और अपने दोस्त श्रीकांत जिसका किरदार निभाया है विनोद मेहरा साहब ने, और वे उनकी कविताओं के माध्यम से अपने मन की बात को कहने का मंच देते हैं। ये अनुरोध फिल्म एक बेहद ही संगीतमय फिल्म है, जिसे किशोर कुमार, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दमदार जोड़ी से ताकत मिली है। और इस फिल्म की पटकथा कैसी है, कहानी में आगे क्या होता है, हम आपको वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, यानी इसी फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में एक बेहद ही प्यारा गाना आपको सुनाते हैं, और उसके बाद आपके संदेश भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सचिन शर्मा और नंदिनी शर्मा का ये ईमेल आया है और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज की फिल्म अनुरोध के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रही है। हम आपका कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद तो आपको है कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।

और हमें बिल्कुल याद है कि आपके मैसेजेस हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल करना है, तो एक और संदेश ले लेते हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और डॉली बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही फिल्म में अनुरोध फिल्म के जो गीत और संगीत के साथ साथ कहानी आपके श्रीमुख से हम सुन रहे हैं, तो हमें बेहद आनंद आ रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की जो फिल्म है अनुरोध, ये भी याद रह जाने वाली फिल्म है। और हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जो इस फिल्म की कहानी है, तो उसके में ये होता है कि जो इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले लिखा गया है, तो वो ऐसा लगता है कि वो राजेश खन्ना साहब के लिए ही लिखा गया है। हालांकि इसमें उन्हें अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए पेड़ों के आसपास दौड़ने का मौका तो नहीं दिया गया है, लेकिन उनका किरदार अपनी आवाज़ से पहचाना जाता है, क्योंकि वो एक रेडियो स्टेशन में काम करता है, जैसा कि हम यहाँ पर आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और अरुण के पिता यानी जिसका किरदार निभाया है उत्पल दत्त साहब ने, और वो एक जाने माने व्यापारी हैं, और उन्हें अपने बेटे का गायन यानी सिंगिंग का जो उनका शौक है, वो एक आम पिता की तरह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा विद्रोह कर देता है और इसके बाद अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी होती है। लेकिन श्रीकांत तो बेहद प्रतिभाशाली है, और जब उसका दोस्त उसकी रचनाओं को आवाज़ नहीं देता तो उसकी लेखन प्रतिभा अधर में लटक जाती है, वो अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और अपने दोस्त की परेशानियों से बेखबर अरुण, जिसे अब संजय के रूप में जाना जाता है, वो दूसरे शहर में अपना टैलेंट दिखाने का मौका तलाश रहा होता है, जहां वह मैकेनिक के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करता है। और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। सुनीता यानी जो सिंपल कपाड़िया जी हैं, उन्होंने इसका किरदार निभाया है, और आपको बता दें ये डिंपल कपाड़िया की बहन है और ये उनकी डेब्यू फिल्म है, यानी इसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो कहानी में कुछ यूं होता है कि सुनीता, अरुण यानी संजय जिसका किरदार राजेश खन्ना साहब ने निभाया है, वे उनकी बेहद बड़ी प्रशंसक होती हैं, और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं फिल्म में कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गायक सुनीता को खोने के डर से वो अपनी पहचान को उजागर तो नहीं करता, लेकिन अब उसे श्रीकांत यानी जो हमारे विनोद मेहरा साहब ने उसका किरदार निभाया है, उनके इलाज के लिए धन जुटाने के लिए मंच पर आकर गाना गाते हैं, और कुछ इस तरह से घटनाएं घटती हैं। और कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब श्रीकांत को अपने बिछड़े दादा यानी अशोक कुमार साहब, उनके बारे में पता चलता है, तो बच्चों के लिए वे एक आश्रम चलाते हैं, और कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सभी खुशी खुशी एक हो जाते हैं, और श्रीकांत ही आश्रम में गाए जाने वाले अपने ही गीत तुम बेसहारा हो तो आइए सुनाते हैं यही गाना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज़ में।

और इसी के साथ आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार का मैसेज आया है, और इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्म के जो गाने और जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है, आपकी शानदार प्रस्तुति है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, कितना ही प्यारा सा संदेश इस गाने के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से हम सभी को दिया गया है कि अगर हम बेसहारा हैं तो दूसरों का सहारा बने। बात करते हैं और कुछ मैसेजेस की। तो एक मैसेज आया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से। अरे क्या बात है, हमारा कार्यक्रम मुंबई में भी सुना जा रहा है। जी हाँ, और ये संदेश भेजा है अहमद भाई, सदफ जूही, इकबाल, इमरान अहमद और बिटिया आमना, आसमा परी, आशु अहमद और समस्त परिवार। इसके अलावा गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने, कहानी और रोचक जानकारी आपकी दमदार आवाज़ में दिल को छू रहा है। अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और एक और जल्दी से मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज आया है, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं और अनुरोध फिल्म अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म के बारे में कुछ और कहानी बताते हैं आपको। कि होता यह है कि जब हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि एक दिन अरुण का अपने पिता से झगड़ा हो जाता है और वो घर छोड़ करके कलकत्ता, जिसे आज के दौर में हम कोलकाता कहते हैं, वहाँ वो चला जाता है और वहाँ का जो लोकल एक रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पर सिंगर के रूप में काम करने लग जाता है। और इसके बाद माथुर साहब एक होते हैं और उनकी पोती सुनीता के वो साथ में रहते हैं। उन्होंने युद्ध में अपने बेटे को खो दिया था और अपनी बहू और पोते का कोई पता नहीं लगा पा रहे थे, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। अरुण माथुर की जिद्दी पोती सुनीता के करीब आ जाता है और सुनीता संजय कुमार की प्रशंसा करती है और यह जाने बिना कि वह और अरुण एक ही व्यक्ति है। जी हाँ, जो अरुण का किरदार निभाया है राजेश खन्ना साहब ने, दरअसल उनका फिल्म में किरदार तो अरुण का है लेकिन जब वो सिंगर बनते हैं तो वो अपना अरुण नाम से फेमस नहीं होते हैं बल्कि वो संजय के नाम से फेमस होते हैं। और इस फिल्म की जो हीरोइन है सिंपल कपाड़िया, वो संजय यानी जिस जाना माना जो सिंगर है, जो गायक है, उनसे प्यार करने लग जाती है। और इसी बीच श्रीकांत का किरदार निभाया है विनोद मेहरा साहब ने और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और जब डॉक्टर से उनका चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें

टीबी हो गई है और वो अंतिम अवस्था में है। उसकी माँ उसे लेकर कलकत्ता आती है और जब श्रीकांत को इस हालत में अरुण देखता है तो बेहद ही निराश हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है और वह उसे बचाने का निश्चय करता है। वह एक स्टेज शो आयोजित करने का फैसला करता है लेकिन लास्ट मोमेंट में यानी बिल्कुल आखिरी समय में वह इसे टाल देता है। वह स्टेज पर आकर ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लेता है और सर्जन श्रीकांत की माँ को माथुर की खोई हुई बहू के रूप में पहचान लेता है और उन्हें सूचना दे देता है। उधर श्रीकांत का ऑपरेशन सफल हो जाता है और वो अपने दादा यानी किशोर वो जो अशोक कुमार साहब हैं उन्होंने उनके दादा का किरदार निभाया है उनसे वो मिल जाता है और अरुण के माता पिता अपने बेटे की प्रसिद्धि देखने कलकत्ता आते हैं और तब उनके पिता का सिंगिंग के प्रति उसका करियर बनाना जिसका वो लगातार विरोध करते रहे हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा एक गायक के रूप में सफल हो गया है और वो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है तो फिर गायन के प्रति उनका नज़रिया बदल जाता है और अंत में सब कुछ सामान्य हो जाता है, सुलह हो जाती है और सुनीता और अरुण का विवाह हो जाता है। दोस्तों यह राजेश खन्ना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और बहुत सारे इसमें ऐसे विनोद मेहरा की छोटी सी भूमिका थी लेकिन बेहद ही प्रभावशाली भूमिका थी। आश्रम में भूखे कवि से लेकर स्वस्थ सिंगर के रूप में उनका जो रूपांतरण हुआ था वो बेहद ही वास्तविक लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो चलते चलते आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनवाते हैं।

किशोर कुमार साहब की दर्द भरी आवाज़ में अभी आप इस गाने को सुन रहे हैं। और इसी बीच कुछ और संदेश ले लेते हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम लग रहा है, आपकी प्रस्तुति भी बेहद पसंद आ रही है। और इसके अलावा हनुमान नगर नरवाना हरियाणा से बालकिशन, रोशनी, आरती, मुस्कान, पूजा का भी संदेश हमें आया है। और अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में इसी चैनल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद रखिए ख्याल और सुनते रहिए हमारा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके की दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त तबकत हासिल हो गई है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम से कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादले ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात और वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसीक का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमेरिका के कलीदी एतबार से यकसां मौक़िफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमेरिका कलीदी एतबार से यकसां मौक़िफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुँचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। आखिरी खबरें मिलने तक वो 44,891 वोटों से आगे चल रहे थे। सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक तीसरे मुकाम पर चल रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथी पोजीशन पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चेंग जोंग के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खान चेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और ज़मीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी में
खान चेंगजोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वज़न और पैमाइश की जाँच के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जाँच मराकज़ के रोल को उसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सारिफिन के उमूर की वजारत ने बताया है कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज़ को वज़न और पैमाइश के 23 ज़ुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाज़त होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, LNG, LPG, CNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को भी उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीम शुदा जाँच मराकज कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेशेनज़र कांगो, युगेंडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आमा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम अज़ कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग ज़ख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाका में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम अज़ कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांगसी सूबे में ल्यू शेनयू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज़ करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल्स जुमरे में यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल विनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राज़ील के अपने साथी खिलाड़ी मार्सेलो डोमिलिनर के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त सबकत हासिल हो गई है। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों

देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।
भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है।

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर

0: भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। नमस्कार, आदाब आप सभी का आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जिसे लेकर आई है आज आपकी दोस्त तृप्ति चौहरी। श्रोताओं, आज जिन पंक्तियों से या यूं कहें कि जिस कलाम से आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, ऐसे अशार कहने वाले, बेहतरीन गजलों, नगमों और शेरो शायरी करने वाले महान फनकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है, तो उन्हीं पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम।

जी हाँ, ऐसी ही जादू नगरी से आया था वो जादूगर, शब्दों का फनकार, अपने हुनर का उस्ताद, जो है हमारे आज का कलाकार। हमारे आज के कलाकार हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार माने जाते हैं। उर्दू शायर, गजल गायक और फिल्मों में गीत लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का निधन 24 मई सन 2000 में हो गया था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गाने आज भी लोगों की जुबान पर है, लोगों के दिलों में बसे हैं। वो 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गाने लिख चुके थे। उनको हमारा शत शत नमन।

भाई आज के कार्यक्रम में हमने तो आवाज लगा दी है ऐसे गीतकार को जिन्होंने दिए अपनी कलम से एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गजलें, बेहतरीन शायरी, कविताएं और भी बहुत कुछ इस फिल्मी दुनिया को, इस खूबसूरत संसार को। आज की जो है हमारे कलाकार जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में जन्मे असरार उल हसन खान, जो सिनेमा में मजरू सुल्तानपुरी के नाम से मशहूर हुए। पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे और चाहते थे कि उनका बेटा असरार हकीम बने। मदरसे में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मजरू निकल पड़े यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई करने लखनऊ। भाई अब हकीम की पढ़ाई करने तो निकल पड़े थे, लेकिन हकीम बनने की पढ़ाई कर जरूर रहे थे, लेकिन दिल तो गजल में लगा हुआ था। एक बार सुल्तानपुर में मुशायरा लगा और मजरू भी निकल पड़े अपनी गजल गाने। उनकी गजल सुन दर्शक भी गदगद हो गए और तब मजरू को एहसास हुआ कि वो हकीम के लिए नहीं बल्कि शायर और गीतकार के लिए बने हैं।

तो भाई ऐसे ही बेहतरीन गीत नगमे लिखने वाले मजरू सुल्तानपुरी हैं हमारे आज के कलाकार, जिसे आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर अपनी दोस्त तृप्ति चौहरी के साथ। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। मजरू की कलम की स्याही नज्मों गजलों के रूप में जब लोगों तक पहुंची तो उर्दू शायरी को नई ऊंचाई तो मिली, साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी दी। कहते हैं फिल्मों में गीत लेखन के लिए मजरू को जिगर मुरादाबादी ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। उन्हें बतौर शायर अपनी पहचान सादा प्रिय थी। पहले तो फिल्मों में गाने से मना कर दिया था, मगर बाद में बढ़िया फीस मिलने के बाद वो मान गए।

तो भाई आज के राही जो जो कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं अपनी ईमेल के ज़रिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com। तो जो राही जुड़े हैं बताएं हमें आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है और आपको मजरूह सुल्तानपुरी के गीत सुनकर कैसा लगता था, कैसा लगता है, और आप अक्सर उनके गाने सुनने की फरमाइश हमें भेजते हैं। तो जब आप भेजते हैं तो क्या सोचकर भेजते हैं। तो आज केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। तो बात कर लेते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में थोड़ी सी। और मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म शाहजहाँ के गीत बादल आए झूमके से की थी। उन्होंने वतन के रखवाले, कयामत से कयामत तक, घर की कहानी, लाल दुपट्टा, मलमल का और घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों के गाने लिखे। अगर बात करें पुरस्कार और सम्मान की तो भारत के 2013 के डाक टिकट पर अगर आप देखें तो मजरूह सुल्तानपुरी का आपको चित्र भी नज़र आएगा। मजरूह ने 1950 के दशक में लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे फैज़ अहमद फैज़, हुमार बख्श बख्शी के साथ। मजरूह का सबसे उल्लेखनीय गज़ल लेखक माना जाता था उनको। मजरूह ने 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत के लिए चाहूँगा मैं तुझे साथ सवेरे के लिए अपना एकमात्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता। उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार बने।

और इसी के साथ कुछ साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में, और हमारे साथी हैं ये दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन बाबू, मिफा बेबी और सादिया। इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। इसके साथ हैं उदय भान, ये कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को इन्होंने शायद नाम नहीं सुना, तो मेरा नाम तृप्ति है। अगली बार से आप कार्यक्रम टाइम से सुनेंगे तो आपको नाम भी पता चलेगा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का। प्रताप ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से श्रोता उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं प्रेम पूर्वक आदाब गांव कुमरहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में, तो भाई आपका शामिल हो गया है। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, तृप्ति जौरी, मैम जी सब प्रेम नमस्कार। तो भाई आपको भी मेरा दिल से नमस्कार कि आपने मेरा नाम सुना और कार्यक्रम से शुरुआत से जुड़े। मजरूर सुल्तानपुरी जी पर केंद्रित प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। आज हम एक बार फिर आपके साथ शानदार पेशकश के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो धन्यवाद आपका। और अब जुड़े हैं ये हमारे साथी हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी, और इसके साथ हैं धर्मेंद्र छिपा जी, एक ही कलाकार आज आप चर्चा कर रहे हैं, मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, और इनके बारे में इन्होंने लिखा है, शुरुआत से इनके बारे में जानकारी दी है। भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और हरजिंदर शिंदे जी हैं, ये हैं गाँव नथाना पंजाब से, हरजिंदर शिंदा, जसवीर, सीता, गीता और इनके साथी। दिगंबर गौड़ जी आप हैं गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता, और इनको ये मजरू सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोचक जानकारी प्राप्त कर ये बहुत अच्छी लग रही है इनको, तो इसके लिए इन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद लिखा है, ये जानकर और भी अच्छा लगा। और हमारे साथी हैं देव शंकर कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देव और मास्टर अल कबीर, तो आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ और हमारे साथी जुड़ गए हैं, तो चलते चलते उनका भी नाम ले दें हम। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हैं हमारे सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। प्रतिक्रिया आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही कलाकार जिसमें आज आप बात कर रही हैं गीतकार मजरू सुल्तानपुरी पर, उत्तम प्रस्तुति, रोचक जानकारियां, सदाबहार गीत, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बड़ी बधाई। तो धन्यवाद साथी आपका जो आपने इतने अच्छे से आपने कार्यक्रम को सुना, सराहा। आपके कलाकार गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। अच्छा, एक ही कलाकार के लिए आप लिखना चाह रहे हैं, बेहतरीन गीत ये है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के। तो साथियों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आनंद लीजिए इस गीत का।

0: मीडियम वेव 1,71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान किलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम किलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हुए हैं। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूआत पर तबादला ख्याल किया और भारत अमरीका किलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तिजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तिजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी अहमियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तिजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम किलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमेरिका के किलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमेरिका किलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। ये मीटिंग इस माह की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खांग चेन जोंगा के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मस्कूरा मजमून में खांग चेन जोंगा को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के महाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खांग चेन जोंगा की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीत साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस

पार्टी की असल नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकज के रोल को वसअत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सार्फिन के उमूर की वजारत ने बताया कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज को वजन और पैमाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाजत होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीम शुदा जांच मराकज कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस इकदाम से तस्दीक की खिदमात के अमल में बेहतरी आएगी, सलाहियत में इजाफा होगा और पूरे मुल्क में माहौलियात के लिए ज्यादा साजगार ईंधन के इस्तेमाल को तकवीत मिलेगी। सिक्किम बाजाबता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोट का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निपटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीजें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, युगेंडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इतला नहीं मिली है। 6 रोज़ा 79वीं आलमी सेहत असम्बली का इजलास जेनेवा में ख़त्म हो गया है जिसमें मेंबर मुल्कों ने इंसानी सेहत के तहफ़ में कसीर रुखी इश्तराक को आगे बढ़ाने की खातिर कई करारदादें मंजूर की हैं। आलमी सेहत असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ मामलों पर 20 से ज़्यादा फैसले और 13 करारदादें मंजूर की गईं जिसमें तपेदिक, एमरजेंसी अफजान सेहत, एंटी माइक्रोबायल मुदाफियत, हेमोफीलिया और दीगर उमूर शामिल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। ये धमाका राजधानी कोयटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद पूरे कोयटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शिमाली चीन में कोयला कान में हुए धमाके से कम अज़ कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांजी सूबे में लियू शेनू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। जुमे के रोज जब ये धमाका हुआ तो कान में मुबैना तौर पर 247 कानकुन काम कर रहे थे। भारत में चीन के सफीर यू फीहोंग ने कान के हादसे के बाद ताजियती पैगाम भेजने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तशक्कुर का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चीन के सफीर ने भारत की हिमायत और हमदर्दी के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि जाए हादसा पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल जुमरे में यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल वीनस जोली बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्री राम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी के साथ जोली बनाकर मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फरामे के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगेंडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी

0: पर करने से गुरेज करें। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशी खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हमने नगमे लिए हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए, क्योंकि आज उनका यौम वफात है। मजरू सुल्तानपुरी 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तालीम उनकी मजहबी रही, इब्तदा घर में ही हुई, लेकिन फिर बाद में दरस निज़ामी से फरागत के बाद उन्होंने हिकमत शुरू कर दी और लखनऊ में तकमीलुल तिब के कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल की। इत्तफाक से सुल्तानपुर में एक मुशायरा हुआ और वहाँ आपने एक गज़ल पढ़ी जिसकी बड़ी शोहरत हुई। लोगों ने कहा कि आप शायरी भी साथ साथ करें तो बेहतर है, हिकमत भी चलती रहे और शायरी भी चलती रहे। उस दौर में जिगर मुरादाबादी साहब का सिक्का चलता था, लोग जिगर मुरादाबादी को पसंद करते थे और उसी के तर्ज पे मजरू ने अपनी शायरी का आगाज किया। मजरू सुल्तानपुरी के बारे में एक बात यह भी कही जाती कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के मेंबर थे और बहुत सरगर्मी के साथ उसकी कारकर्दगी में हिस्सा लेते थे। मजरू सुल्तानपुरी 1946 में मुंबई गए और वहाँ साबू सदीक में एक मुशायरे में जब गज़ल पढ़ रहे थे, मारूफ प्रोड्यूसर यार कारदार की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने उनसे कहा कि आप फिल्मों के लिए लिखिए। उस मुशायरे की सदारत जिगर मुरादाबादी साहब फरमा रहे थे। मजू साहब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन जब जिगर साहब ने समझाया कि नहीं, आपको लिखना चाहिए, इससे आपकी न सिर्फ शायरी मजबूत होगी बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके ख़ानदान की किफ़ालत का ज़रिया भी बनेगी, तो मजरू ने फिर इब्तदा की और सबसे पहले नौशाद के लिए एक उन्होंने नगमा लिखा। उस नगमे के बाद धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ और उसके बाद आखिरी वक्त तक तकरीबन सन 2000 तक उन्होंने नगमे लिखे और खूबसूरत नगमे जिनमें गज़ल भी है और गनाइत भी है, शायरी भी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वैसे ही कुछ नगमे सुनवा रहे हैं।

0: नीलिमा, चप्पू को रख दो और मेरे करीब आ बैठो। बजरे को इन लहरों पर आप ही आप बहने दो और मुझसे बातें करो, आर्यवीर की, उनके नाटकों की।
1: राजकुमारी, अगर आर्यवीर को ना देखें तो अच्छा है।
0: क्यों, क्या वो देखने में ऐसे बुरे लगते हैं?
1: वो इतने खूबसूरत है राजकुमारी कि आप उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी।
0: क्या सच कहती हो नीलिमा?
1: सच झूठ का फैसला तो आज हो ही जाएगा।
0: वो कैसे?
1: आज स्टेज पर उनका नया नाटक खेला जा रहा है।
0: मैं जरूर चलूंगी नीलिमा। क्या वहाँ हम उन्हें देख भी सकेंगे?
1: क्यों नहीं।
0: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ख्याल रहे, मेरे कुछ चुने हुए गीत उन्हें लिखकर जरूर दे देना और उनकी राय भी मालूम करना।
1: आपके प्रेम गीत पढ़कर तो दीवाने हो जाएंगे आपके आर्यवीर।
0: हमारे आर्यवीर?
1: आपके नहीं तो और किसके?
0: शरीर कहेंगे।
1: आज तो महाराज और महारानी भी जाएंगे वहाँ। आर्यवीर

0: वीर के नाटकों की शोहरत दूर दूर तक फैल रही है।
1: नीलिमा, सुना है लड़कियां उनकी दीवानी हैं, कहीं किसी को दिल तो नहीं दे बैठे?
0: किसी को दे भी दिया हो तो वापस मांग लेंगे राजकुमारी अमरावती के लिए। वो हसीन है तो हमारी राजकुमारी भी किसी से कम नहीं। देखिए बदलियों में छुपा छुपा चंद्रमा कैसी हसरत से देख रहा है आपके चेहरे को।
1: हटो, बनाओ नहीं।
0: गुलाबी पेश करूं?
1: संदल का अर्क मिला देना।
0: लीजिए।
1: तुम भी लो।
0: आज नहीं, वरना आर्यवीर के नाटक का लुत्फ नहीं आएगा।
1: तब तो मैं अभी नहीं लूंगी। नीलिमा, बजरे को राजभवन वापस ले चलो।
0: जो हुक्म राजकुमारी। नाटक का समय भी हो गया है, देखिए ना दूर रंगशाला चराखों से कैसी जगमगा रही है। सुना है आर्यवीर ने ये नाटक पूरे 2 बरस में लिखा है।
1: अच्छा,
0: और ये उनका बेहतरीन नाटक है। लीजिए राजकुमारी, अब नाटक शुरू हुआ ही चाहता है। महाराज और महारानी तशरीफ ले आए, वो देखिए सामने मंच के दाएं तरफ झरोखे में।
1: हाँ,
0: देख लिया, उनके साथ प्रेमवर्धन भी तो है।
1: हाँ,
0: कितने अच्छे लग रहे हैं प्रेमवर्धन, यहाँ भी फौजी लिबास में आए हैं।
1: मेरा ख्याल है ये सोता भी फौजी लिबास में ही होगा।
0: इनके दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है।
1: फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना नीलिमा, मुझे नफरत है इससे, इसके नाम से भी और इसके काम से भी। भगवान जाने महाराज इसके इशारों पर क्यों चलते हैं।
0: प्रेमवर्धन बहादुर है राजकुमारी, पिछली लड़ाई में दुश्मनों को जो शिकस्त मिली उसका सेहरा इन्हीं के सर है। सारा देश इन पर फख्र करता है, महाराज तो इन्हें अपना बेटा कहते हैं।
1: बस बस नीलिमा, बहुत गुणगान हो चुका इस फौजी अफसर का। सोचता होगा महाराज के बाद राज सिंहासन का वारिस यही होगा, मगर ये भूल है इसकी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: अरे लो, पर्दा उठने ही वाला है।
1: अरे स्टेज पर ये अंधेरा क्यों हो गया?
0: ये आर्यवीर का पुराना अंदाज है राजकुमारी, वो अब स्टेज पर दाएं तरफ से दाखिल होंगे। वो देखिए, वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे, वो जरा सी रोशनी हुई, रोशनी के दायरे में ये चेहरा देखिए।
1: हाँ, देखा, पहचान गई मैं, ये आर्यवीर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। क्यों नीलिमा, मैंने पहचानने में गलती तो नहीं की?
0: नहीं राजकुमारी, आपने ठीक पहचाना। देखिए ना कितने शांत लग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, देख भी रहे हैं सबको। महाराज और महारानी के सामने किस अदा से झुक रहे हैं। अब उनकी नजर आपकी तरफ है।
1: क्या उन्होंने हमें देख लिया?
0: इजाजत हो तो इस निगोड़ी चलमन को हटा दूं ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख लें।
1: नहीं नहीं पगली, ऐसा गजब ना करना, महाराज ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। और हाँ, तुमने उनसे मुलाकात के लिए कोई तरकीब निकाली?
0: तरकीब निकाल ली है, नाटक शुरू होते ही आर्यवीर स्टेज के पीछे चले जाते हैं, हम भी चुपके से वहीं चलेंगे।
1: तुमने मेरे गीत लिख लिए ना?
0: हाँ, बहुत खुशखत लिखे हैं, गीतों का चुनाव ही मैंने किया है।

0: तुम मेरे साथ ही रहना। हाँ लो आर्यवीर को देखो, हमें देख लिया उन्होंने।
1: हाँ, मुस्कुराई भी है।
0: आ जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। कोई काम हो तो दासी को आवाज दे दीजिएगा।
1: नहीं नहीं, अकेले में मैं घबरा जाऊंगी। नीलिमा,
0: आप अकेली नहीं होंगी, आर्यवीर भी तो होंगे।
1: तभी तो आज दूसरी बार डर लग रहा है, आर्यवीर से नहीं, खुद अपने से।
0: वो आपका सारा डर दूर कर देंगे।
2: आज मौसम कितना अच्छा है, आपके बाग की हर चीज पर निखार है।
1: नीलिमा बहुत शैतान है, कह रही थी।
2: हाँ हाँ, आप रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: मैंने उससे कहा तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मुझे डर लगता है। बोली आर्यवीर आपका डर दूर कर देंगे।
2: तो क्या मैं इतना डराने लगता हूँ आपको?
1: नहीं नहीं, डर आपसे नहीं, अमरावती को अपने आप से डर लग रहा है।
2: वो किस लिए?
1: न जाने क्यों बार बार यही लगता है, जैसे जैसे हमें कोई देख रहा है छुप छुप कर।
2: आपको नाटक कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा, लेकिन नाटक में कीर्ति को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा।
2: मौत के अलावा उसका कोई और अंजाम हो ही नहीं सकता था।
1: इतना जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरत का ऐसा अंजाम?
2: ये मौत नहीं राजकुमारी, बल्कि उसका खामोश एहतजाज है, पूरे समाज के खिलाफ, पूरी तहजीब के खिलाफ, एक निकम्मे शासन के खिलाफ।
1: न जाने क्यों मुझे उसकी मौत नागवार लगी।
2: यही मेरा मकसद था, कीर्ति की मौत पर आदमी अंदर से टूटने लगे और देर तक अपनी रूह के अंदर एक जलन सी महसूस करता रहे। मैंने आपके गीत पढ़े,
1: कैसे लगे आपको?
2: अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी से दूर।
1: वो कैसे?
2: आपके गीतों में सुंदरता तो है, लेकिन जिंदगी का रस नहीं।
1: सुंदरता में रस न हो तो उसे सुंदरता कैसे कहेंगे?
2: ख्वाब कितने सुंदर होते हैं, कितने हसीन, लेकिन हकीकत से कितनी दूर होते हैं। राजभवन में रहकर आप ख्वाब देख सकती हैं, इस राजभवन से भी आलीशान और बुलंद राजभवन के, लेकिन हकीकत राजकुमारी जी राजभवन के अंदर नहीं, राजभवन के बाहर बिखरी हुई है।
1: क्या ये जिंदगी मैं नहीं देख सकती?
2: क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको राजभवन के कैद से बाहर निकलना होगा, वरना आपके अंदर की शायरा इन ख्वाबों में दफन हो जाएगी। अगर आपको राजकुमारी अमरावती के बजाय सिर्फ अमरावती बनना है और युग युग तक अपने गीतों से सोई हुई आत्माओं को जगाना है, तो राजभवन के बाहर जो दुनिया बस रही है उसे जीना होगा।
1: हम ये दुनिया जरूर जिएंगे।

0: ये हम क्या सुन रहे हैं प्रेमवर्धन? क्या ये सच है कि वो भिकमंगा नाटककार राजकुमारी के महलों में आने जाने लगा है?
1: सिर्फ यही नहीं महाराज, बल्कि राजकुमारी मामूली औरतों के भेष में उसके साथ शहर के गंदे इलाकों में घूमने जाती।
2: मुझे यकीन नहीं आता प्रेमवर्धन, लगता है तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है।
0: नहीं महारानी, ये सच है।
1: और ये भी सच है कि अगर अभी से कोई तरकीब ना सोची गई तो पूरे देश में राजकुमारी बदनाम हो जाएंगी।
0: कोई राज घराने पर उंगली उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: इस सांप को काटने से पहले ही अपने पैरों तले कुचल डालो प्रेमवर्धन।
1: चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इससे पूरे देश में कोहराम मच सकता है। लोग आर्यवीर को बहुत चाहते हैं।
0: एक तरकीब है,
2: और वो ये कि इस सांप को दूध पिलाना शुरू कर दो।
0: महारानी ने हमारे मुंह की बात छीन ली। ऐसा ही करो प्रेमवर्धन, आर्यवीर शायद राज सिंहासन के ख्वाब देखने लगा है। उसे दरबारी नाटककार बना दो और हमेशा हमेशा के लिए निकम्मा कर दो। आर्यवीर, हमें तुम जैसे कलाकार पर नाज है। तुम वाकई अपने जमाने के एक बड़े नाटककार हो। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारा फन इससे ज्यादा तरक्की करे और तुम्हारी शोहरत दूसरे देशों में भी फैले।
3: मैं आपका शुक्रगुजार हूं महाराज, मेरे फन को आप कदर की निगाह से देखते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है।
0: आज से तुम राज कलाकार हो, दरबार में तुम्हारे लिए एक मुनासिब जगह मुकर्रर कर दी गई है।
3: इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन आर्यवीर एक आम आदमी है और एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है। इसकी जगह राजदरबार में नहीं महाराज, बल्कि इसे आपके ही इस शहर में वो छोटा सा मकान ज्यादा अजीज है, जहां इसके नाटकों के किरदार जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं और इसके साथ जीते हैं। आपके इस अजीमुल शान दरबार के आदाब से न वो वाकिफ हैं और न मैं।
0: तो हम समझ ले कि हमारे बख्शे हुए इस एजाज को ठुकरा रहे हो।
3: आपका ये

0: आओ सुभाषिनी, बैठो। सुभाषिनी के आते ही कमरे में रोशनी हो गई। तुम भी बैठ जाओ कुमार, इधर मेरे करीब
1: जी।
0: सुभाषिनी ये चिराग वहां रख दो ऊपर, बस बस वही ठीक है।
2: आज नीलिमा आई थी।
0: नीलिमा यहां आई थी?
1: हाँ।
0: कुछ कहा? अमरावती कैसी है?
2: आप ही की तरह दुखी है, उसके महल के चारों तरफ पहरा है, नीलिमा को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। प्रेमवर्धन ने अपनी खास दासी को अमरावती की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया है। सुना है इस पूर्णिमा को दोनों की शादी है।
0: ये तो जुल्म होगा, मुझ पर नहीं राजकुमारी पर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। महल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगी। दरअसल वो राजभवन में रहने के लिए पैदा ही नहीं हुई।
1: अब क्या होगा रेवीर?
0: मालूम नहीं कुमुद, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द कोई अनर्थ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ। मैं एक बड़ा नाटककार सही, लेकिन प्रेमवर्धन मुझसे भी बड़ा नाटककार है, जालिम और संग दिल।
2: आर्यवीर, ये खबर लाई हूँ।
0: क्या शादी हो गई?
2: नहीं।
0: तो क्या अमरावती?
2: राजकुमारी राजभवन से गायब हो गई, सिपाही उसकी तलाश में इधर आ रहे हैं।
1: आर्यवीर आप यहाँ से निकल जाएं, वो जरूर आपको पकड़ लेंगे। आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। सुभाषिनी तुम भी इनके साथ जाओगी।
0: और तुम?
1: आप मेरी फिक्र न करें,
0: मुझे न पाकर वो जरूर समझ लेंगे कि अमरावती मेरे साथ है। वो तुम्हें बड़ी अजियतें देंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कुमुद, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं जेल की दीवारों के साए में एक नया नाटक लिखूंगा जिसमें कीर्ति जिंदा रहेगी।
3: आर्यवीर ये तुम्हारा स्टेज नहीं, जेल की सिया कोठड़ी है। जहां तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे, वही बोलना होगा जो प्रेमवर्धन चाहेगा। अब भी मौका है, सच सच बता दो कि अमरावती को तुमने कहां छुपा रखा है, वरना तुम्हारी हड्डियों से लिपटी हुई इस खुशनुमा खाल को खींचकर शिकारी कुत्तों को खिला दिया जाएगा, और तुम्हारी हड्डियों को इस जमीन के नीचे हमेशा हमेशा के लिए गाड़ दिया जाएगा।
0: अगर मुझे मालूम होता कि राजकुमारी कहां है, तब भी मैं उसका पता हरगिज न बताता।
3: लगता है तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं।
0: राजकुमारी की जिंदगी मुझे उससे ज्यादा अजीज है।
3: अमरावती हमारे सिपाहियों की निगाह से कब तक छुपी रहेगी? आज नहीं तो कल उसे राजभवन में आना ही होगा। मगर तुम्हारे

वीर मौत के मुंह में जाने से नहीं बच सकते। हम तुमसे बड़े नाटककार हैं और वीर तुम्हें इतनी जल्दी मौत के घाट नहीं उतारेंगे। ये तमाशा अमरावती को भी देखना होगा। अपने अजीम नाटककार का अंजाम वो अपनी आंखों से देखेगी। सिपाहियों, इस कैदी के तलवे छील दिए जाए और फिर इसके नीचे जलती हुई रेत बिछा दी जाए। हम इस नाटककार के सब्र की दाद देना चाहते हैं।

0: नीलिमा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? बताओ नीलिमा, आर्यवीर कितनी तकलीफ में होगी, कितने गहरे अजाब में।
1: राजकुमारी, सुना है आज उनकी आंख की रोशनी भी छीन ली गई। उनका दुख अब न देखा जाता है न सुना जाता है। आप महाराज और महारानी से क्यों नहीं कहती कि वो आर्यवीर को जल्द से जल्द मार डाले? राजकुमारी, ये पल पल का दुख मरने से बदतर है। एक एक पल जैसे हजारों मौतों के बराबर है, बल्कि हजारों मौतों से भी बढ़कर है।
0: इतने दुख तो कीर्ति ने भी नहीं सहे थे, बस चुपचाप मर गई थी। अब तो भगवान से मेरी यही दुआ है, पिछली किरे समय फट जाए और मेरा आर्यवीर जल्द से जल्द लंबी नींद सो जाए।
2: जुल्म जब हद से गुजरता है तो कयामत आती है। आज वो दिन आ गया है जो हम सबसे कुर्बानी मांग रहा है। इस देश के अजीम नाटककार की जिंदगी को जिस तरह पल पल नोचा गया है, उसकी दर्दनाक कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। प्रेमवर्धन ने जहां महाराज और महारानी को धोखे से कैद कर लिया है और आर्यवीर को जीते जी मार डाला है, वहां उसने आज राजकुमारी को भी अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। हम कितने कमजोर और बदनसीब हैं कि खामोशी से इस जुल्म को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अगर हम अब भी खामोश रहे तो इसका मतलब यह होगा कि यह देश एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें हम सब दफन हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी हमारी रगों में खून बह रहा है और इसका सबूत यह इंसानी सरों का सैलाब है जो राजभवन को एक सूखे तिनके की तरह बहा सकता है। हम निहत्ते इंसान अगर एक साथ निकल पड़े तो जुल्म तशद्दुद का पहाड़ रेत के घर की तरह पल भर में ठह सकता है।
3: ये पर्दे के पीछे कौन है?
1: मैं हूं नए महाराज, आपकी दासी।
3: ओ नीलमा, आओ आओ, नाच रोक दो और जाओ। क्या खबर लाई हो नीलमा?
1: बहुत अच्छी खबर लाई हूँ नए महाराज।
3: क्या अमरावती के बारे में?
1: जी महाराज, राजकुमारी शादी के लिए रजामंद हो गई। लेकिन
3: लेकिन क्या, कोई शर्त रख दी है?
1: बस छोटी सी शर्त।
3: जरूर पूरी की जाएगी। कहो क्या शर्त?
1: महाराज और महारानी की रिहाई।

0: और इसके साथ आर्यवीर की मौत, लेकिन अजियतनाक।
1: अजियतनाक?
0: हाँ, अमरावती के दिल में मैंने आर्यवीर के लिए ऐसी नफरत भर दी कि वो अब उनकी मौत अपने ही हाथों से चाहती है।
1: नीलमा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। आर्यवीर के लिए अमरावती के दिल में नफरत पैदा करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारी कितनी वफादार।
0: शादी के बाद आप और वो बजरे में सैर करने जाएंगे। आपका कैदी आर्यवीर जंजीरों में जकड़ा हुआ उसी बजरे में होगा।
1: फिर
0: उसकी पीठ में पत्थर बांध दिया जाएगा। राजकुमारी उस अंधे कैदी को अपने हाथों से नदी की गहराइयों में धकेल देंगी।
1: नीलमा, ये मैं क्या सुन रहा?
0: ये सच है नए महाराज। राजकुमारी अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, एक महारानी की जिंदगी।
1: तो ऐसा ही होगा नीलमा, अमरावती की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आखिर वो इस देश की महारानी है।
0: है नहीं नए महाराज, बल्कि कल होंगी।
1: जिंदा रहो नीलमा। लो ये हीरो का हार, पहन लो इसे। हमारी तरफ से ये पहला तोहफा समझो।
0: शुक्रिया नए महाराज, आपकी इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। दासी ने हार पहन लिया और अब चहकती फिरेगी, इतलाती फिरेगी आपकी राजभवन में।

0: क्यों आर्य वीर, सुना तुमने महारानी का गीत?
1: शुक्रिया महारानी अमरावती, आपको नया गीत और नई जिंदगी मुबारक हो। अंधे कैदी की यही दुआ कि आप यूं ही गाती रहें। प्रेमवर्धन, अब मेरे मरने में कितनी देर है?
0: इसके लिए तुम महारानी से पूछ सकते हो। मैं खुद ये तमाशा देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
2: आर्यवीर, तुम मरना चाहते हो ना? जल्द से जल्द, और हम भी तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकते। देखो, मुख्तार होते हुए भी हम कितने लाचारे हैं, कितने मजबूर। हमारी मजबूरियों को समझते हुए हमें माफ कर देना आर्यवीर, हमें माफ कर देना।
3: नीलमा, ये शोर कैसा है? ये राजभवन से आता हुआ शोर किस बला का शोर है?
4: हमारा लोगों का सैलाब राजभवन पर टूट पड़ा है और अब इधर ही बढ़ता रहा है। महाराज,
3: तुम क्या कह रही हो?
2: आर्यवीर, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ इस नदी की गहराइयों में उतर जाऊं। आओ, अब चलें यहां से, इन लहरों के नीचे।
5: वो जगमगाता हुआ शहर जहां जुल्म सितम के भयानक हाथों ने दो मुकद्दस रूहों का गला घोंट डाला है, आज मेरे अंदर चुपचाप सोया हुआ है। लोग समझते हैं मैं मर गया हूं, मेरा नाम निशान मिट गया है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। आज भी मेरे अंदर वो शहर यहां से वहां तक दूर दूर फैला हुआ है। जब शाम के साए गहरे हो जाते हैं तो मेरे अंदर ये शहर जाग उठता है। इसकी रंगशाला में आर्यवीर का कोई नाटक खेला जाता है। अमरावती के गीत राजभवन की चार दीवारी से बाहर शहर की गलियों में गूंजने लगते हैं।

बात एक रात की इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था एसडी बर्मन ने। और अब सुनिए विशाल भारद्वाज की, माफ कीजिएगा, वनराज भाटिया की मौसीकी से जनगमा भूमिका फिल्म से, आवाज प्रीति सागर की है।

0: और सामिन अब सुनिए अभिनेत्री फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: हंसो मत, बोलो

मोहम्मद रफ़ी और भूपेंद्र की आवाज़ों में आप सुन रहे थे धर्म कांटा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था नौशाद ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत फिल्म दोस्ती से। मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था एस डी बर्मन ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में सुनिए धर्म करम फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू, मौसीकार आर डी बर्मन।

मार्जा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम क्लीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को यह सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी तर मौजूद पर तबादला ख्याल किया और भारत अमरीका क्लीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाजात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हमायत करने के भारत के मौकफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हमायत करता है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम क्लीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमेरिका के क्लीदी एतबार से यकसा मौक़िफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका क्लीदी एतबार से यकसा मौक़िफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह से खांगचेंग जोंग के 5 खजाने सिक्किम के सफ़र को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खांगचेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और ज़मीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी में खांगचेंग जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असल नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकज के रोल को उसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सारिफिन के उमूर की वजारत ने बताया है कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज को वजन और पैमाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाज़त होगी।
सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी

0: और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ें पेश की हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मज़ीद नोटिस जारी होने तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। इससे पहले सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फूट पड़ने के बाद इसे बैन अलाक़वामी तशवीश की एक सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। 6 रोज़ा 79वें आलमी सेहत असम्बली का इजलास जिनेवा में ख़त्म हो गया है, जिसमें मेंबर मुल्कों ने इंसानी सेहत के तहफ्फुज़ में कसीर रुखी इश्तराक को आगे बढ़ाने की खातिर कई करारदादें मंजूर की हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलियां चलने के वाक़े के बाद तेज़ी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाक़ा वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाक़े के चंद रोज़ बाद पेश आया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम 82 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्षी सूबे में ल्यूशेनह्यू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत विच पेश कर रहे हैं सराय की जबान दा प्रोग्राम झोक माही दी।
3: ऑल इंडिया रेडियो दा सराय की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडे किते अज दा प्रोग्राम घेन के। मेरा ख्याल है तुसा सब ठीक ठाक हो सो ते वाला प्रोग्राम शुरू करें दे हां। अज असा तुहाकू सब तो पहला एक कहानी सुनवेंदे पए हां, जिस दा नाम है दूर दराज दी।

ए हई जीशम खान जोखड़ी दा गाया सरैकी गीत। ते आओ हुण सुणेंदे हां हिक सूफियाना कलाम। कलाकार हिन नुसरत फतेह अली खान ते उन्हां दे साथी।

ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਂਝਿਓ ਸਜਣ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

0: उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: निरंकर भाई, देखिए सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता यानी पोषक तत्वों की स्थिति का स्टिक वितरण देना, ताकि वे वैज्ञानिक तरीके से सही खाद और उर्वरक का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। और यह कार्ड प्रत्येक किसान को हर 3 साल में एक बार जारी किया जाता है, ताकि मिट्टी में होने वाले बदलावों को ट्रैक किया जा सके।
1: बिल्कुल, और जब हमें पोषक तत्वों की जानकारी हो जाती है तो हम उसी हिसाब से खाद और उर्वरक देते हैं जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक देने में न केवल हमारी जेब पर भारी पड़ता है बल्कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है और मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ जाता है।
0: और साथ ही देखिए भाई, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। असंतुलित खाद के उपयोग से होने वाले नुकसान से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बची रहती है और फसल की उपज में भी सुधार होता है, यानी डबल फायदा निरंकर भाई।
1: बिल्कुल, हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए, अपना कार्ड बनवा के रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी बीमारी का हिसाब किताब रखते हैं अगर बीमारी होती है, लेकिन जब आप खेती है, खेती के जितने भी आपके खेत हैं अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग बांट करके आप कार्ड तैयार रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे इस जगह पर किसी चीज़ की कमी है।

0: क्योंकि फसलों को भी आप अदल बदल के बोते हैं। कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जिसमें किसी खास तत्व की कमी हो, अगर खास तत्व की पूर्ति आप नहीं करेंगे तो फसलों का उत्पादन भी उससे प्रभावित होगा।
1: और देखिए निरंकार भाई ने जो कार्ड की बात की, इसके आवेदन के लिए आप किसान भाई राज्य सरकार के कृषि विभाग या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण और अपने खेत की जाँच रिपोर्ट देखने के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और जो जून का महीना आने वाला है आगे, उसमें बहुत गर्मी पड़ने वाली है, अभी भी गर्मी पड़ रही है, हमारे किसान भाई अभी से तैयारी करें कुछ खास चीज़ों की। जैसे कि इस तेज़ गर्मी में एक और फ़ायदा कर सकते हैं, इस समय आप जुताई करके खेत को खुला छोड़ देंगे तो सौरीकरण करके जो हानिकारक बैक्टीरिया है या खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उनको नष्ट करने के लिए आप धूप में तेज़ करके जुताई को छोड़ देते हैं अपने खेत में, उसके बाद जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो मारे जाते हैं और साथ साथ जितने भी सूखे वीड हैं वीड सूख करके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो खरीफ की फसल की तैयारी है वो करनी है, जिसमें आपको बीज का चुनाव अभी से कर लेना है। आप धान की बिजाई करना चाहते हैं, ज्वार बाजरा चारे के लिए आप उगाना चाहते हैं, या सब्जियों की बात करें तो भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, उनके जो फसलों के बीज हैं उनका इंतज़ाम आपको अभी से करना है। और एक और बात है, बागवानी अगर आप कर रहे हैं तो अभी से गड्ढे आपको तैयार कर लेने चाहिए ताकि आप बरसात आने पर नए पौधों का रोपण कर सकें।
1: बिल्कुल, देखिए भाई जुलाई के माह तक आप खड्डे तैयार कर लेंगे तो अगस्त में आप बागों की जो रोपाई कर सकेंगे।
0: और जो हमारे किसान भाई पशुपालक हैं उनको भी बहुत ज़रूरी बात यह है कि देखने में आता है कि जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बीमारियां पशुओं में आती है, इसलिए उनका टीकाकरण पहले से ही करा लें। अब टीकाकरण पहले से करा लेंगे तो बचाव बीमारियों से हो जाएगा।
1: और देखिए भाई सबसे बड़ी बात, जो टीकाकरण के बारे में हम अपने कार्यक्रम में बताते रहते हैं हमेशा, टीकाकरण या तो बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम पैसे में, और आजकल तो निरंकर भाई गाँव में ये टीकाकरण हो सकता है, कहीं बाहर दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल। और पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, कई इलाकों में जल स्तर बहुत नीचे पहुँच गया है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जल के संरक्षण की हम कोशिश करें, जल का बचाव भी करें। अब जल का बचाव अगर हम करेंगे तो आपकी फसलों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और ये काम भी आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो उस पानी को बहने से अगर आप बचा लेंगे तो ज़मीन के नीचे भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे सुनील भाई, तकनीकें ऐसी अपनाएं जिससे कि पानी का समुचित हम प्रयोग कर सकें, दूसरे जब बारिश का पानी आता है तो उसको बचाव के तरीके अपना सकें। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम प्रकृति में जो हमारे किसान हैं पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, तो प्रकृति में प्रबंधन करके वो इन चीज़ों से फायदा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए भाई खाली जल ही जीवन है ये कहने से काम नहीं चलेगा, जल की बचत जीवन के हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी और खेती में भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे जल उपलब्ध हो पाएगा।
0: अच्छा, इसी बारे में चलिए एक रागनी भी सुन लेते हैं उपदेश के रूप में, योगेंद्र निमचाना की आवाज में।
1: लेकिन भाई कुछ फरमाइश भी निरंकार भाई आई है, तो फरमाइश हमारे पास आई है पुरुषोत्तम कुमार गांव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से, और छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2 से कमलेश शाहू जितेंद्र शाहू उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गोविंदगढ़ माजी वाला से राजू टुटेजा खुशी दूर मिला टुटेजा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति और प्रहलाद और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: यह गाँव चोलदा बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया पर ढींगिया, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता, हिंदुस्तान रेडियो मित्र के तरफ से पत्र है विजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली और इनका परिवार।
1: योगेंद्र निमचाना को ही सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल केशव और दक्ष के।
0: उलम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर शहर से सुरेंद्र संधु अनीता संधु रोहित और इनका परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर बेबी ग्रोवर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: जलालपुरा जिला सहारनपुर से स्वर्ण कुमार प्रजापति शिवम प्रजापति आर्यन प्रजापति और इनका परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है पुराना तालाब डुमराव वलिया वाला।

0: अंसारी, से बेगम सबनम बानो और असमा नाज अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा राज और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और ये है गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बिरासा, विकास बिरासा, रोशनी बरासा, सुगुन बरासा और इनका परिवार। अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक और जयपाली यादव।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है कुलामा रोड पंजाब से, इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू और उनका समस्त परिवार।
1: दतरेंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा और इनका परिवार। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव और इनका परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है पदमपुरा राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये है कुलाम रोड हरबी गोविंद नगर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, दोबारा से इनका मैसेज है। और
0: यानी दो कलाकारों को सुनना चाहते हैं।
1: पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और इनका परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और इनका परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेंद्र निमचाना को।

0: तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ये बात तो है। और ये चीज़ें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। और बात करें आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं और इसमें बहुत सारी कोशिशें हमने की हैं आकाशवाणी की तरफ से अपने श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाने की। और इसमें समाचार, कृषि, शिक्षा, संगीत, संस्कृति, आपदा की सूचना या फिर जन जागरूकता के काम हैं उनको जोड़ने में आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और
1: बिल्कुल
0: गांव से
1: निरंकर भाई, आपने सही कहा। देखिए, हमारे देश में यूं कहें कि आकाशवाणी की पहुंच दुनिया में सबसे व्यापक है, जो देश की 99% से अधिक जनसंख्या सीधे तौर पर उस तक पहुंचती है। और इस वर्ष आकाशवाणी अपने ऐतिहासिक जो गौरवशाली 90 वर्ष का सफ़र पूरा कर रहा है। जून 1936 से शुरू हुई इस यात्रा ने रेडियो को मनोरंजन और सूचना के सबसे भरोसे का माध्यम बना दिया है।
0: अब देखिए, गांव से महानगर तक, किसान से युवा तक और सीमावर्ती क्षेत्रों से जनजातीय अंचलों तक आकाशवाणी की पहुंच ने जन जन का माध्यम बनी है आकाशवाणी। और आप देखिए कि डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता, सरलता और त्वरित सूचना प्रसारण के कारण अभी भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जो
1: बिल्कुल।
0: अपनी शुरुआत के समय में शुरुआत की गई थी।
1: और बात चाहे देखिए ग्रामीण विकास की हो या खेती की हो, रेडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, युवाओं के लिए रोजगार की जानकारी, या महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती संबंधी जानकारी देने की, नई नई तकनीक जानकारी देने की, उपकरणों की जानकारी देने की, या फिर देश में लगने वाले कृषि मेलों की जानकारी, इतना ही नहीं निरंकार भाई, कृषि आधारित कार्य, चाहे फिर वह मुर्गी पालन है, मछली पालन है या पशुपालन है, सबकी जानकारी रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को मिलती है। और समय के साथ साथ विज्ञान की तरक्की के साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन आया। आज किसान भाई फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से भी घर बैठे फोन द्वारा सीधे वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
0: और सबसे ज़रूरी बात है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है हम सभी के लिए कि आपको हैंडलिंग करने में भी बहुत परेशानी नहीं है कि एक रेडियो सेट आप अपने साथ रखें, मोबाइल के अंदर भी रेडियो है, आप अपने खेत में कहीं भी आप सफ़र में हैं या रसोई में महिलाएं हैं वहीं पे उसको आराम से सुन सकते हैं। और आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में कोशिश की है कि हम सर्वांगीण विकास हो समाज का, सभी सूचनाएं वहाँ तक पहुँचे। तो आज भी रेडियो जिस समय जिस उद्देश्य के लिए शुरू हुई थी आज भी उसी तरह पूरी तरह से प्रासंगिक है। इतने सोशल मीडिया, इतना व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी रेडियो का अपना पूरा महत्व अभी भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल। और कहने का मतलब ये है कि देखिए, आकाशवाणी की अगर बात करें तो 90 वर्ष का सफर सभी के लिए, फिर चाहे वह महिला है, किसान है या युवा साथी हैं, कोई भी किसी के बारे में कहे, सभी के लिए ऐतिहासिक व गौरवशाली है।
0: बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे सुनील भाई के जो खेती के काम हमें करने हैं वो आगे का जो समय है उसमें सबसे ज़रूरी है। तो जैसे कि हम पौध तैयार करेंगे, धान की पौध खास तौर पर जो धान उगाते हैं किसान भाई, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीज को उपचारित ज़रूर करें, नर्सरी के टाइम में संतुलित उर्वरक और खाद देने की ज़रूरत है। बीमारी कोई आती है तो उसका बचाव भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नर्सरी अच्छी होगी तो आपकी फसल भी फिर आगे चल करके अच्छी होगी। जो दलहनी फसल लगाएंगे उनको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि राइजोबियम कल्चर से उपचारित ज़रूर करें, क्योंकि जब आप राइजोबियम इस्तेमाल करें

0: तो उनकी जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया की गांठें बनेंगी, उससे जो वातावरण से जो नाइट्रोजन लेते हैं हमारे पौधे उसको ले सकेंगे और ज़मीन के अंदर ऐड कर सकेंगे। इसकी वजह से जो उत्पादन है ज़्यादा बढ़ेगा और ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगी, जिससे कि अगली फसल में भी नाइट्रोजन कम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और जो हमारे पशु हैं उनको भी ध्यान रखना है। गर्मी के दिनों में आप मेहनत करते हैं खेतों में, पशुओं को प्यास भी लगती है, उनको नहलाने का और उनको खाने का और पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। और इन दिनों में एक समस्या आती है, कीचड़ जैसे हो जाते हैं पशुओं को, या पशुओं के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनका उपचार बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कीचड़ की समस्या आती है, हमारे किसान भाई कई बार उसका निदान करते हैं कि भाई पशुओं को खरारा कर दिया, कोई उसको सफाई कर दी, लेकिन जो उनके अंडे हैं वो जो पशुशाला है उसमें या खूंटे के आसपास बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको नष्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके पशुओं को वे आज ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो
1: बिल्कुल
0: अब पशुओं का भी ध्यान रखना है, खेत का भी ध्यान रखना है, और खेत में भी अपनी आगामी आने वाली फसलों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है।
1: और भाई मौसम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये गर्मी काफ़ी ज़ोरों पर है इन दिनों में। तो जब भी आप खेत पर जाएं तो भाई अच्छी तरह से या तो सुबह शाम क्या काम करें और शरीर को ढककर अच्छी तरह से, और भाई पानी आप लगातार पीते रहेंगे तो आप रहेंगे स्वस्थ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विनोद कुमार से सुन लेते हैं ये उपदेश।

0: निरंकार भाई, ये तो भाइयों ने सुना विनोद कुमार से उपदेश। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। साथ ही जानकारी देंगे गर्मियों में स्वास्थ्य को सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका के बारे में।
1: और दोपहर में भी हमारा दोपहर का प्रोग्राम होता है किसान की बात, उसमें भी बता देते हैं फसलोत्पादन के लिए वर्षा जल संरक्षण की तैयारी, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी।
0: साथ ही भाई कृषि जगत कार्यक्रम में 7:05 पर जानकारी लेंगे कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन के बारे में, और भाई बाजार भाव के बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: और अब भाइयों से लेते हैं इजाजत, सब बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत, और अब वक्त हो चला है 7:30, और ये वक्त है गज़लों और कव्वालियों से सजी एक महफिल का। तो इस महफिल की एक खूबसूरत सी गज़ल है जिसमें आँखों का जिक्र है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी।

कहते हैं कि जब किसी शख्स के जज्बात खूबसूरत अल्फाज में बयां होने लगें और उन्हें वो खूबसूरत अल्फाज की एक जमा मिलने लगे, तो गज़ल अपने आप में मुकम्मल होने लगती है। उसके अल्फाज गज़ल का रूप धरने लगते हैं और इतने प्यारे अल्फाज अशार की शक्ल में और इतनी खूबसूरत आवाज़ में बयान हो जाते हैं। यही है गज़ल। और एक और बहुत खूबसूरत गज़ल है जिसे गाया है जगजीत सिंह साहब ने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।

और अब इस कार्यक्रम की एक आखिरी पेशकश जो है एक कव्वाली, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी तलत को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी आपसे 8:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, और उसके बाद 11:10 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। इसके बीच भी बहुत खूबसूरत और जानकारी से भरे कार्यक्रम है, आप जुड़े रहिए आकाशवाणी से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का आनंद लिया और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया। देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया और दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल सुरक्षित राजधानी बनाना है।
12: इन परियोजनाओं में नजफगढ़ क्षेत्र में 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। करीब 860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन प्लांटों की कुल क्षमता को लगभग 46 MGD किया जाएगा और इन्हें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले चरण का उन्नयन और क्षमता विस्तार किया जाएगा। करीब 122 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के जरिए उपचारित जल की गुणवत्ता को नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में 11 वर्ष तक संचयन और रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी। इससे पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न विभागों की ओर से नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण और पुराने ढांचों के पुनर्स्थापन का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अमी चंद्र चौक से पुराना कल्याणपुरी सीवेज पंपिंग स्टेशन तक लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन पहलों से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
11: मुख्यमंत्री ने जनसेवा सदन में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से संवाद कर उनकी समस्याओं, खेती से जुड़े विषयों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसान हित से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज अपनी विधानसभा के ग्राम सभा पूट कला में नालियों, गलियों और सीवर लाइन के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर मूलभूत सुविधाओं की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा श्री सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में गलियों और नालियों के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। श्री प्रधान ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
13: ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी, कम भुगतान के मामलों में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
11: देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री आशीष सूद ने इस विशेष संस्करण में सहभागिता की और साइकिलिंग के माध्यम से फिट और स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और ईंधन बचाने में मदद करता है। श्री सूद ने कहा कि यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है।
14: फिट इंडिया मूवमेंट है और संडेज ऑन साइकिल्स है भारत सरकार का अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी जो फिट इंडिया के लिए आह्वान करते हैं, जो एक मजबूत

0: फिटनेस के लिए डॉक्टर पे जाने से पहले पेडल मार लो 30 मिनट, तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान आप अपने लिए कर सकते हैं। और आज तो साइकिल का उपयोग देशभक्ति का भी प्रतीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और इतने सारे लोग जो ऑर्गेनिक से आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भारतीय धावक गुरिंदर वीर सिंह को सबसे तेज धावक बनने के लिए बधाई दी है। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि गुरिंदर वीर सिंह यह उपलब्धि देशभर के अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। दिल्ली सरकार कल सूरहेड़ा गांव में नवनिर्मित चौपाल का लोकार्पण करेगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहेब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चौपाल ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का एक सार्थक प्रयास है। राजधानी आज भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता के ऐतिहासिक और अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी। देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,00,000 से अधिक वनवासी समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति, वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत और गौरवशाली विरासत का भव्य प्रदर्शन करते हुए 5 विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्राओं में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: इन शोभा यात्राओं को आज अजमेरी गेट चौक से लाल किले तक निकाला गया, जिसने पूरे पुरानी दिल्ली क्षेत्र को भारतीय लोक संस्कृति, रंगों, परंपराओं और उत्सव की जीवंत झलक से सराबोर कर दिया। जहां एक ओर पारंपरिक वेशभूषा में सजे वनवासी बंधुओं के समूह आकर्षण का केंद्र बने, वहीं दूसरी ओर वनवासियों के स्वागत में दिल्ली के लोगों द्वारा आयोजित किए गए ढोल नगाड़ों की गूंज, लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां और बैंड बाजों की स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। अजमेरी गेट चौक से शुरू हुई इस यात्रा को भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा अजमेरी गेट से हौस काजी, चावड़ी बाजार, घंटाघर और चांदनी चौक मेन बाजार से होते हुए ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंची। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला टीम ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बवाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ कई वर्षों से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल था। मामले की जाँच जारी है। यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मात्र 2 दिनों में लगभग 1100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है और 12,000 से अधिक चालान किए हैं। यातायात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्या ने कहा कि इस विषय पर पहले भी समन्वित कार्रवाई अभियान चलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
3: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे हम निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। पहले भी कंसर्टेड एक्शन और ड्राइव्स होती रही हैं। लास्ट वीक भी इस चीज पे एफआईआर हुई थी और इस वीक में भी मात्र 2 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे में, हम 1100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुके हैं ऐसे लोगों पे जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो है वो सड़क के ऊपर व्यवस्थित ट्रैफिक को और सड़क के ऊपर सेफ्टी को, दोनों को ही बहुत बड़ा खतरा है।
1: राजधानी के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में आज लगभग दोपहर 12:30 बजे आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। आयोग ने बताया कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। राजधानी में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का

0: अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया। देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना,
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना,
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोता, आप सुनते हैं कार्यक्रम कवि गोष्ठी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रसेन।
2: नमस्ते श्रोताओं, मैं डॉक्टर चंद्रसेन आज की इस कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ जो प्रतिभागी कवि स्टूडियो में उपस्थित हैं उनमें डॉक्टर दीपा, जो कि एक युवा कवित्री हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो महाविद्यालय में कार्यरत हैं, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। साथ ही हमारे साथ में चंद्रशेखर, बड़े कवि और अधिवक्ता, दोनों का बड़ा मेल जो है ना, अधिवक्ता होना और कवि होना, दोनों का एक बड़ा अलग सा नाता है। लेकिन चूंकि अनुभूतियों और संवेदना का स्वर एक जैसा ही होता है और एक ऐसा संगम चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में है कि वो अधिवक्ता होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे कवि भी हैं। और गोपालदास नीरज जी का एक दोहा याद आता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और साथ ही हमारे बीच में एक जाने माने कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी भी उपस्थित हैं। रचना धर्मिता और इनका जो रचना यात्रा है वो बड़ी बेमिसाल रही है, और जो हिंदी काव्य प्रेमी श्रोता है वो डॉक्टर रजनीश त्यागी जी की रचनाओं और उनकी आवाज से रूबरू ना हुआ हो ये संभव नहीं है। और मैं सबसे पहले प्रारंभ में डॉक्टर दीपा से अनुरोध करूंगा कि वो इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ अपनी श्रेष्ठतम रचना से, अपने सस्वर, क्योंकि उनका गायन बड़ा बहुत मधुर है, तो तरन्नुम में प्रारंभ करें इस कवि गोष्ठी का डॉक्टर दीपा जी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं चाह तो कुछ पेश करना तो तहत में रही थी, लेकिन अभी आपने कहा कि तरन्नुम में, तो मैं विषय बदल लेती हूँ। कसम से

0: धन्यवाद दोस्तों। पिता जो हमेशा हाशिए पर रहता है, उस विषय को, संवेदनशील विषय पर अपनी एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ।
1: जी स्वागत है।
0: धन्यवाद। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, दर्द हजारों सीने में दबा कर जीना। कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं पुरुषों की यहाँ, जीकर तो देखे एक लम्हा यहाँ पुरुषों की तरह। मुझे प्यारे मेरे रिश्ते हमें जहार नहीं करता, मुझे प्यारे मेरे रिश्ते हमें जहार नहीं करता, मगर उनके बिना जीने की कभी सोच नहीं सकता।
1: क्या बात है,
2: सुंदर।
0: धन्यवाद। कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ, कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ, हूँ मैं जिंदा या दफने जिंदा लाश में हूँ। जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है, जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है, जरा पूछे मुझसे कोई कि आखिर घटा क्या है।
1: बहुत अच्छे,
0: धन्यवाद। मेरे बच्चों तुम ना आना इस जमाने की बातों में, मेरे बच्चों तुम ना आना इस जमाने की बातों में, कुछ पल तो गुजारो इस पिता की बाहों में।
2: वाह।
0: मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है, मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है, तुम्हें ना याद हो भले पर वो तुम्हारा उंगली पकड़कर चलना आज भी याद आता है।
2: कहने बहुत सुंदर।
0: धन्यवाद। आज हाथ मेरे कपकपाते हैं, आज हाथ मेरे कपकपाते हैं और कदम ये मेरे लड़खड़ाते हैं, आज हाथ मेरे कपकपाते हैं और कदम ये मेरे लड़खड़ाते हैं, काश तुम आकर आज मेरी उंगली थामो, अगर लड़खड़ाए मेरे कदम तो उन्हें संभालो। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, अकेले में रोना और कुछ ना कहना, सूजती आंखों का सबब।
2: धन्यवाद।
0: सूजती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, सूजती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, बूढ़ा हो चला हुआ बस इतना ही कहा। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना।
1: अच्छा है, बहुत
2: सुंदर। धन्यवाद। अभी आपने श्रोताओं जानी मानी कवियत्री डॉक्टर दीपा जी को कि उनकी बड़ी मार्मिक रचना जो पिता को समर्पित थी, श्रीवास्तव जी की गजल है, घर की बुनियादे दीवारें बामो दर थे बाबू जी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबू जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: घर की बुनियादे दीवारें बामो दर थे बाबू जी, घर को बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबू जी, और अब तो सोने माथे पर कौरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब्जेवर थे बाबू जी।
0: क्या बात है, बहुत
2: कभी है। कभी बड़ा सा हाथ खर्चते कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्चते कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबू जी।
0: क्या बात है।
2: तो डॉक्टर दीपा जी की रचना से मुझे सुनके
0: धन्यवाद।
2: बहरहाल मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक बड़े अच्छे जाने माने कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे सुधी कवि और आप हम सब के जाने माने प्रिय कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रोता वर्ग को अपनी रचना धर्मिता से रूबरू कराए। डॉक्टर रजनीश त्यागी जी,
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सीधे सीधे अपने अशार पेश करता हूं कि लहू दिल का निकल कर राज कागज पर उभरता है, लहू दिल का निकल कर राज कागज पर उभरता है, नहीं आसान होता है कलामे मीर लिख देना।
0: क्या बात है।
3: नहीं आसान होता है कलामे मीर लिख देना। बहुत शुक्रिया। और चार मिनट से और देखिए कि आंसुओं की कब रही बाजार में कीमत कभी, आंसुओं की कब रही बाजार में कीमत कभी, कुछ बहाने ढूंढ लो तुम मुस्कुराने के लिए।
1: क्या बात है,
0: क्या
3: कुछ बहाने ढूंढ लो तुम मुस्कुराने के लिए, और दो घड़ी हंसने की हसरत का नतीजा ये मिला, दो घड़ी हंसने की हसरत का नतीजा ये मिला, शहर सारा आ गया मुझको रुलाने के लिए।
1: क्या बात,
2: क्या बात,
3: शहर सारा।

0: आ
1: वहां
0: गया
1: पे
0: मुझको
1: मुझको वहां
0: रुलाने
1: से
0: के
1: के लिए।
0: लिए, बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे हैं कि तेरी जफा की बात ने सब कुछ मिटा दिया।
1: वाह वाह डॉक्टर जी,
0: तेरी
1: क्या
0: जफा की
1: कहें।
0: बात ने सब कुछ मिटा दिया, यूं तो न कोई बात थी बस दिल दुखा दिया।
1: क्या बात है,
0: यूं
1: क्या
0: तो न
1: बात है,
0: कोई बात थी बस दिल
1: दिल
0: दुखा
1: दुखा
0: दिया,
1: दिया।
0: और अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम।
1: हाँ
0: अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम, अच्छा किया जो तुमने लहू भी मिला दिया।
2: क्या बात
1: अरे
2: है,
1: क्या
2: क्या बात
1: कहने,
2: है।
1: वाह
2: फिर
1: वाह,
2: पढ़े इस
1: क्या
2: लाइन
1: बात
2: को,
1: है।
2: फिर पढ़े इस
1: तुमने
2: लाइन को।
1: इस पंक्ति को
0: बहुत
1: दोबारा
0: शुक्रिया।
1: सुना।
0: कि अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम,
1: गम,
0: अच्छा किया जो तुमने लहू भी मिला दिया।
1: क्या
2: क्या
1: बात
2: बात
1: है,
2: है,
1: क्या
2: बहुत
1: बात
0: शुक्रिया।
1: है।
0: और चार में से और देखे कि न राहत ही नजर आती, न कुछ तस्कीन मिलती है।
1: हाँ
0: न राहत ही नजर आती, न कुछ तस्कीन मिलती है, परेशान आसमां मिलता जमी गमगीन मिलती है।
1: क्या
2: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: क्या
0: परेशान
1: बात
0: आसमां मिलता जमी गमगीन मिलती है, और रईसों के ही घर की ये बपोती है नहीं साहिब। रईसों के ही घर की ये बपोती है नहीं साहिब, हवा मुफलिस के घर में भी बड़ी शालीन मिलती है।
1: वाह
2: बहुत
1: क्या
2: अच्छी,
1: कहने,
0: वाह,
1: क्या बात,
0: हवा मुफलिस के घर
1: शानदार
0: में भी
1: शानदार,
0: बड़ी शालीन
1: शालीन
0: मिलती
1: मिलती।
0: है। बहुत शुक्रिया। और जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप फोर्स से रिटायर्ड हैं तो कुछ वीर रस में लिखो, तो मैं वीर रस में नहीं लिखता हूं, बस उनके लिए मेरी दो चार लाइनें हैं कि गर आग ना हो कुछ सीने में, गर आग ना हो कुछ सीने में और वतन से प्यार ना हो, गर आग ना हो कुछ सीने में और वतन से प्यार ना हो, तब लफ्जों को ताकतवर शमशीर बनाना मुश्किल है।
1: क्या बात
0: तब
1: है, क्या
0: लफ्जों को
1: बात है,
0: ताकतवर शमशीर बनाना
1: बहुत
0: मुश्किल है,
1: बढ़िया।
0: और दिन रात मशक्कत करने से काम हुआ है दुनिया में। दिन रात
1: क्या
0: मशक्कत करने
1: कहने
0: से
1: से,
0: काम हुआ है दुनिया में, तकदीर भरोसे रहकर तदबीर बनाना मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: है।
0: वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: सही,
0: तकदीर भरोसे
1: बहुत सही,
0: रहकर
1: बिल्कुल सही।
0: तदबीर बनाना मुश्किल है। और चार मिसरे और देखिए कि गुजारा हो नहीं सकता मेरा तेरे सहारों पर,
1: क्या कहें,
0: गुजारा
1: हो
0: हो नहीं
1: नहीं
0: सकता
1: सकता।
0: मेरा तेरे सहारों पर, तवज्जो है नहीं तेरी जरा भी खाक सारों पर,
1: क्या बात है,
0: तवज्जो है नहीं तेरी जरा भी खाक सारों पर, और तेरी पायल की झनकारें मेरे घर अब भी आती हैं।
1: वाह
0: वाह,
1: क्या बात
0: तेरी
1: है,
0: पायल की झनकारें मेरे घर अब भी आती हैं, जरा पैवंद चस्पा दो मेरे घर की दरारों पर।
2: अच्छा है त्यागी जी,
1: वाह
2: अच्छा है,
0: जरा
2: बहुत
0: पैवंद
2: बढ़िया,
0: चस्पा दो
1: बहुत
0: मेरे घर की दरारों
1: बढ़िया।
0: पर, और मोहब्बत में ये मुमकिन है, मोहब्बत में ये होता है,
1: वाह
0: मोहब्बत में ये मुमकिन है, मोहब्बत में ये होता है, नहीं तो कौन नंगे पांव चलता है शरारों पर।
2: क्या बात है,
1: क्या
2: क्या
1: बात
2: बात
1: है,
0: नहीं तो कौन
1: सही,
0: नंगे पांव
1: क्या
0: चलता
1: कहने,
0: है शरारों पर।
1: जिंदाबाद,
0: बहुत
1: सही, बहुत
0: शुक्रिया, बहुत
1: अच्छा।
0: शुक्रिया। और बस कुछ आखिरी मिसरे और आपके सामने पेश करता हूं कि दर्द मेरे दिल में था घुटता रहा मैं रात भर।
1: वाह,
0: दर्द मेरे दिल में था घुटता रहा मैं रात भर, दार पर फांसी, दार पर जैसे कहीं लटका रहा मैं रात भर,
1: बहुत
0: दार पर जैसे कहीं लटका रहा मैं रात भर। और शेर देखिए कि सोचता था दूर होकर मैं कहूं उन पर गजल,
1: वाह,
0: सोचता था दूर
1: दूर
0: होकर
1: मैं
0: मैं
1: कहूं,
0: कहूं उन पर गजल, एक मिसरे पर मगर अटका रहा मैं रात भर।
1: रात भर,
2: क्या बात,
0: एक
2: क्या बात,
0: मिसरे पर मगर
1: क्या
0: अटका
1: बात,
0: रहा मैं
1: रात
0: रात
1: भर।
0: भर, और एक कांटे की तरह चुभती रही यादें तेरी,
1: वाह,
0: एक कांटे
1: कांटे
0: की
1: की
0: तरह चुभती रही यादें तेरी, एक गुंचे की तरह चटका रहा मैं रात
1: रात,
0: भर।
2: क्या
1: क्या
2: बात
1: बात
2: है,
1: है,
0: एक
1: क्या
0: गुंचे
1: बात है,
0: की तरह
1: बहुत
0: चटका
1: कुछ
0: रहा मैं
1: सुना।
0: रात भर। और शेर देखिए कि कैसे अनजाने हुए अपनी गली के रास्ते,
1: वाह,
0: कैसे अनजाने हुए अपनी
1: अपनी
0: गली
1: गली
0: के
1: के
0: रास्ते,
1: रास्ते,
0: अपने घर के पास ही भटका रहा मैं रात
1: रात
0: भर।
1: क्या बात,
2: अच्छा है,
1: अपने
2: अच्छा है,
1: घर
0: घर के
1: क्या बात
0: पास
1: है,
0: ही,
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: शुक्रिया।
1: बहुत
0: कैसे
1: बहुत
0: अनजाने
1: सुना।
0: हुए अपनी गली के रास्ते, अपने घर के पास ही भटका रहा मैं रात भर। और आखिरी शेर है कि चांद सूरज ओस बिजली गुल घटाएं मैं कदा।
1: आय हाय हाय,
2: क्या
1: हाँ,
2: बात है,
0: चांद सूरज ओस बिजली गुल घटाएं मैं कदा, राज उसके नाम ये रटता रहा मैं रात भर।
1: क्या
2: आय
1: हाय
2: हाय,
1: हाय, क्या
0: राज
1: बात
0: उसके
1: है,
0: नाम ये
1: क्या बात है,
0: रटता
1: बहुत
0: रहा मैं
1: बढ़िया,
0: रात भर। बहुत
2: बहुत अच्छे,
0: शुक्रिया,
2: बहुत अच्छे।
1: अभी श्रोताओं, डॉक्टर रजनीश त्यागी राज साहब की गजलों से आप रूबरू हुए, और कहते हैं कि जो कविता है वो इशारों के, संकेत की भाषा होती है, और उसमें प्रतीक और बिंब का बड़ा महत्व होता है। अभी उन्होंने चांद और कई तरह की उपमाएं दी, जो एक कवि कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हमारी संवेदनशीलता से वो भावनात्मकता जुड़ती है, शब्दों का वो जामा पहनती है और एक बड़ा सुंदर चित्र सा कविता या गजल

0: या नज्म के रूप में उभर के आता है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपने डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी के इन रचनाओं से आपको रसास्वादन हुआ होगा।
1: बहुत शुक्रिया।
2: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे आदरणीय चंद्रसेन जी को। जितने अच्छे वो संचालक है, उतनी ही सुंदर उनकी कविताएं हैं। तो एक वरिष्ठ कवि के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं और आप पहले से उनको सुनते आए हैं, तो आज उनकी भावभूमि से हम उनकी संवेदनाओं को झलकते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रसेन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें।
0: धन्यवाद डॉक्टर दीपा जी, आपने हमें भी दावतनामा दिया। और लीजिए श्रोताओं, मैं आपके समक्ष में एक गीत को प्रस्तुत करता हूं कि जो मिलने बिछड़ने का जो मर्म है, वो मर्म उस गीत में समाहित है, प्रस्तुत कर रहा हूं।
1: स्वागत है।

0: कहूँ अब तलक कितना टूटा हूँ, कैसे कहूँ कोई भी तरस समझाने वाला मिले।
1: वाह क्या बात है।
0: मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला, मेरी हसरत है अब आने वाला मिले। घिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा,
2: क्या बात है।
0: घिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, मीठी यादें भी हत्यारी लगती
1: वाह
0: है अब।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: घिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, मीठी यादें भी हत्यारी लगती है अब। मैं तो सूखी नदी का किनारा रहा, मैं तो सूखी नदी का किनारा रहा, कोई सागर सा बस जाने वाला
2: क्या बात है डॉक्टर
1: मिला।
2: साहब, बहुत
1: वाह
2: बढ़िया।
1: वाह क्या
0: कोई
1: आशावादी था यार।
0: सागर सा बस जाने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Awesome.
0: मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला, मेरी हसरत है अब आने वाला मिले। फूल जब भी खिला मेरे संसार का, एक पतझड़ ने उसको झुलसा दिया। फूल जब भी खिला मेरे संसार का, एक पतझड़ ने उसको झुलसा दिया। मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, कोई उपवन को महकाने वाला मिले।
1: बहुत
0: अब
1: सुंदर।
0: तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला मिले। एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले बन के अपना मिले, मन से अपना मिले।
2: अच्छा है।
0: एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले बन के अपना मिले, मन से अपना मिले। मिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, मिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, कोई तो दूर तक जाने वाला मिले।
1: वाह क्या
0: अब
1: बात है।
0: तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला मिले।
2: बहुत अच्छे,
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर।
0: मैं अपने गीत को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
3: स्वागत है।

रहा आपने तोड़ा नाता, तो क्या कीजिए, रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा आपने तोड़ा नाता, तो क्या कीजिए। नज्म का पहला शेर है, रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा आपने तोड़ा नाता, तो क्या कीजिए। खुद चटकने लगी अब तो खामोशियाँ, खामोशियाँ खुद चटकने लगी अब तो खामोशियाँ, आपने कुछ न बोला तो क्या कीजिए। रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा

0: होश है, मौन वीरान है, आपका ये हुनर है तो क्या कीजिए। रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा, आपने तोड़ा नाता तो क्या कीजिए।
1: अच्छा है।
0: जुड़

0: प्यासों की महफिल में चर्चे शबनम के, प्यासों की महफिल में चर्चे शबनम के, जुल्म सरासर प्यासों पर यूं ढाना है, जुल्म सरासर प्यासों पर यूं ढाना है, मौसम के होठों पर ऐसा गाना है, जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना
1: क्या बात है, क्या बात।
0: है। मैं एक गीत को प्रस्तुत करता हूँ।

महफूज रखा, यार को महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा। और तू जो मिल जाता जहां में, हम भटक जाते जहां में। तू जो

0: रखा।
1: क्या बात है,
2: वाह
1: क्या बात।
0: श्रोताओ, आपके बीच एक ऐसे जाने माने कवि लेखक श्री
2: आश्री
0: चंद्रशेखर आश्री जी के लगभग आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मोम का पुतला, जन प्रतिबिंब, जन प्रतिध्वनि, वकालतनामा बहुत चर्चित कविता संग्रह हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी रचना धर्मिता से, अपने रचना कौशल से हिंदी काव्य प्रेमियों को अपनी रचनाओं से रूबरू कराएं।
2: धन्यवाद। कुछ छोटी छोटी रचनाएं आपके सामने हैं। इंतजार। सागर में डूबे तो लौट आए, मगर मोबाइल में वो ऐसे डूबे कि फिर न लौटे। नजरें आज भी करती हैं इंतजार उनके लौट आने का।
1: वाह, क्या बात है।
2: एक धन्यवाद,
0: नजरें आज भी करती हैं
2: उनके
0: उनके
2: लौट
0: लौट
2: आने
0: आने,
2: का।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
2: शब्द। शब्द मरहम हैं जो घावों को भर देते हैं, शब्द पंख हैं जो उड़ने को प्रेरित कर देते हैं, शब्द मुसाफिर हैं जो हम सफर बन साथ चल देते हैं,
0: वाह।
2: शब्द मित्र हैं जो मन की पीड़ा को हर लेते हैं, शब्द पुष्प हैं उपवन के जो जीवन में मकरंद भर देते हैं,
1: बहुत सही, बहुत।
2: शब्द ईश्वर का वरदान है जो परम आनंद जीवन में भर देते हैं।
1: क्या बात,
0: क्या कहने,
1: बहुत सुंदर।
2: एक और कविता, धन्यवाद। जुगनू। शहर के तमाम जुगनू यहां चले आए, कितना उजाला है यहां। काश कोई एक रुक जाता वहां अंधेरे में भी, तो रोशनी की कुछ उम्मीद वहां भी बची रहती अंधकार में।
0: क्या कहने,
1: बहुत
0: सुंदर,
1: बहुत मार्मिक।
2: आदमी इस बात से कितना अनजान है, जहां सांस लेना भी एक इम्तिहान है, उसकी मर्जी से ही तो है यह सांस आती जाती है।
0: वाह,
2: विधाता का दिया हुआ यह कितना अनमोल वरदान है।
1: बहुत सही, बहुत सुंदर सर।
2: और वकील हूं तो अदालत में मुकदमे चलते रहते हैं, तो एक कविता मध्यस्थता के ऊपर आपके सामने पेश कर रहा हूं। मध्यस्थता अपनाई।
0: वाह।
2: अपने परिवारों का, रिश्तों का अदालत में मजाक ना बनाएं। कड़ी परिश्रम से कमाई दौलत और प्रतिष्ठा को बेकार की मुकदमेबाजी में ना गवाएं।
1: वाह, क्या बात है सर।
2: छोटे छोटे मतभेदों, नोक झोंक, अविश्वास को मूछ और पगड़ी का प्रश्न ना बनाएं।
0: क्या कहने,
2: कि जान लें कि एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में गुजर जाता है जीवन
0: वाह,
2: और समय का कारवान। इसलिए छोड़कर लड़ने मरने का रास्ता आओ, पल भर को विश्वास और सौहार्द्रता से भरे माहौल में क्यों न हम अपने मुद्दों को स्वयं सुलझाएं। शांति को एक और अवसर देकर आओ मध्यस्थता अपनाएं।
1: क्या बात,
2: आओ
0: क्या
2: मध्यस्थता
0: बात।
2: अपनाएं।
1: समकालीन विषय को कितने सुंदर ढंग से उकेरा है सर, बहुत सुंदर सर।
2: धन्यवाद।
0: अभी आपने चंद्रशेखर आश्री जी को सुना, क्योंकि वो एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ना जो मार्मिकता है वो या तो पूरे फान पे होती है या वो कहीं वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाती है। अब क्योंकि एक बार जो गुजर गया वो दोबारा नहीं लौट के आता, इसलिए अच्छा है उन्होंने कितने एक मध्यम मार्ग की बात की। और वो ऐसा मध्यम मार्ग, ऐसे रचना धर्मिता जहाँ संवेदनाओं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वहां की उस धरती में संवेदना के बीजारोपण करते हैं हमारे चंद्रशेखर आश्री साहब, उनकी रचना इस बात का प्रमाण है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं फिर से आग्रह करता हूँ अपने डॉक्टर रजनीश त्यागी राज साहब से कि वो कोई और अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें श्रोताओं के समक्ष, क्योंकि उनकी रचनाएं हम सभी को गुदगुदा भी रही हैं और एक संदेश पर रखे प्रेरणादायी रचनाएं हैं।
3: बहुत शुक्रिया। श्रोताओं को पुनः नमस्कार। एक गजल आपके सामने फिर पेश करता हूँ
0: जी।
3: कि इस कदर भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का,
0: आहा।
3: इस कदर भारी पड़ा है
0: हम पे
3: खतरा दर्द का, खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का।
1: क्या बात है,
3: खत में लिख भेजा है उनको
0: अपना
3: हमने किस्सा दर्द का।
0: वाह।
3: और शेर देखिए कि दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई।
0: वाह।
3: दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का।
1: क्या
3: भेज देना तुम भी मुझको।
1: बहुत सही,
3: बहुत शुक्रिया। दूसरों के दर्द लेना भी

0: मेरी फितरत हुई, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। और पंखुड़ी जो दब रही थी ओस की एक बूंद से, पंखुड़ी जो दब रही थी ओस की एक बूंद से, सह गई बरसात में वो बोझ सारा दर्द का। सह गई बरसात में वो बोझ सारा दर्द का। और शेर देखिए कि आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू,
1: आंसुओं में खिंच के आया
0: है मेरे दिल का लहू, आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू। आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का।
2: क्या बात,
0: आओ तुम भी देख लो
3: क्या बात है,
0: आकर तमाशा दर्द का। और मकता है कि हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें। कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द का, कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द का।
3: बहुत
2: बहुत अच्छे,
3: बहुत सुंदर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, अभी आपने इस कवि गोष्ठी में तीन बड़े जाने माने कवियों को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मूल्यवान समय दिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया,
3: धन्यवाद,
2: धन्यवाद।
4: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे सुश्री दीपा केमवाल, श्री चंद्रशेखर आश्री, श्री रजनीश त्यागी और डॉक्टर चंद्रसेन। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर चंद्रसेन। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
5: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कवि गोष्ठी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत कार्यक्रम में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रोमांटिक गीत से जिसे सुनते ही प्यार का एहसास दिल में उतरने लगता है।

दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी मुस्कान बनकर चेहरे पर खिल जाता है, तो कभी याद बनकर दिल में बस जाता है। और जब इसी एहसास को संगीत मिल जाए तो हर शब्द दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। तो चलिए।

शुदा वक्त है एक ऐसे ही गीत का जो दिल को छू लेना छू जाने वाला गीत है और आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नई धुनों के साथ।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
3: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
3: Importer of energy and much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे

0: महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया

गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाश

अब से कुछ देर बाद यानी 9:20 पर हज के खुसूसी मौके पर आप एक तकरीर समाअत करेंगे, अजमल फारूक नदवी की तहरीर गदा। 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 9:55 पर हेल्थ टिप्स आप सुनेंगे। रात

पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैरा धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में अब बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी एलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IIT के माहरीन की टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतअल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा है कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतअल्लिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में भी शदीद गर्मी है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। सेहत के हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दोपहर में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, निज़ बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 7 रोज तक वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में गर्मी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसमें किसी तरह की राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ा जिले के ठट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताज़ा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में लोगों के डूब जाने के हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहीं ताज़ियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2,02,00,000 रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ

0: रिड्यूस हो जाते हैं
1: हुँ.
0: जब आप लैब पखाना कर रहे हैं तो उसके बाद वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड ग्रेड टू पाइल्स. ग्रेड थ्री में और फर्दर डेवलपमेंट है कि पाइल्स बाहर निकल के आते हैं लेकिन वो अपने आप नहीं जाते, पेशेंट को अपने हाथ से उनको रिड्यूस करना पड़ता है. और फर्दर ग्रेड फोर में वो बाहर ही निकले रहते हैं, फिर अंदर नहीं जा पाते.
1: उसके लिए ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है.
0: हाँ, ऑपरेशन ग्रेड थ्री और फोर के केसेस में नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है. देखिए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पाइल्स का इलाज नहीं है. मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाकर दिखाते नहीं है. भारत जैसे देश में हर आदमी एक डॉक्टर बना हुआ है, तो जिस तरह की वो ओपिनियन देता है वो लोग फॉलो करते हैं और समझते हैं कि पाइल्स लाना इलाज. लेकिन अगर प्रॉपर डॉक्टर पर जाके दिखाएं और इलाज कराएं तो और सभी केसेस में इसका इलाज संभव है और अच्छे तरह संभव है.
1: तो जो एक पेशेंट होता है पाइल्स का, इसको खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए या बचना चाहिए?
0: नहीं, 100% खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए. हम नहीं कहते कि उसको किसी भी चीज को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए. जाते जाते मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्लीडिंग जब भी किसी पेशेंट को हो, रेक्टम से ब्लीडिंग होता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है. उससे पहले किसी और तरह का इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर, कैंसर भी हो सकता है. तो इलाज करा के, डायग्नोस करा के और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता साहब.
2: सामिन, आप सुन रहे थे हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी है. आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत. लीजा मीना पेश है मुशायरा.
3: मोहतरम सामईन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से आज के इस खुसूसी नातिया महफिल में आप सबका खैर मकदम है. मुनासिब मालूम होता है कि शुरू में उनके अस्माए ग्रामी आपके गोश गुजार कर दूं. जनाब एस एम ए कैसर अजीज, जनाब सलीम अमरोहवी, जनाब एम आर कासमी, आइए अब इस मुबारक महफिल को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं. मैं सबसे पहले जनाब एस एम ए कैसर अजीज से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी नात से इस महफिल का आगाज करें. जनाब कैसर अजीज,
4: अस्सलामु अलैकुम.
5: वालेकुम अस्सलाम.
4: इरशाद गिरामी, नात का मतलब पेश करता हूं.
3: इरशाद,

0: हुआ हुआ हुआ, क्या कहने हैं सब।
1: सामईन, अभी जनाब एस एम ए कैसर अजीज ने अपने कलाम से इस नूरानी महफिल का आगाज कर दिया। अब इसके बाद मुनासिब मालूम होता है कि मैं अजमल फारूक नदवी खुद अपना कलाम पेश करूं। मुलाहिजा फरमाएं।
2: इंशाल्लाह।

0: अजमते निस्वान थी कुछ आपने की है अता।
1: अजमते निस्वान थी।

0: जन्नत में जब मुस्तफा
1: हर एक फूल ने फल ने कलमा पढ़ा गए।

0: ब्रह्म है और शेर समाप्त फरमाइए अब्रार भाई के उजाले भी हैं तेरी शफकतों की वजह हयात,
1: उजाले भी हैं तेरी शफकतों के,
0: उजाले भी हैं तेरी शफकतों के वजह हयात, ये हस्तबूद जमाने पे एक कदगन है, यह हस्तबूद उजाले भी हैं तेरी शफकतों के वजह हयात, यह हस्तबूद जमाने पे एक कदगन है। और आखिरी शेर के अमीने वही भी उम्मी लकब भी अहमद भी, अमीने वही भी अमीने वही भी उम्मी लकब भी अहमद भी, तेरा वजूद भी किस किस सिफत मुजयन है, तेरा वजूद भी किस किस सिफत मुजयन है, तसव्वुरात में तैबा का एक आंगन है, फराजे फिक्र में जैसे कि
2: चांद रोशन है।
3: सामिन आप मुशायरा समाप्त कर रहे थे, यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामिन अब पेश है फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामिन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

फरमाइश इस साल की है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु पाकुड़ झारखंड से, हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, उत्तम जमदाड़े इनके साथ हैं। ये फरमाइश हमें इस साल की है। जय विहार निजफगढ़ से शाहरुख फारूख और शहनाज ने, साथ में इनके घर की एक और खातून है। ये फरमाइश इस साल हुई है कहाँ से, इनके रेलवे रोड गंजुड़वारा से जी। और संभल से छोटे अंसारी जी फरमाइश इस साल कर चुके हैं। और ये इस फरमाइश डोंडी लोहारा से देवजय जटोलिया और देव तुषार जटोलिया की हमें मौसूल हुई है। वर्ली मुंबई से नवाब खान, शाहजहां, अजीम खान और इनके साथ एक मास्टर साहब भी हैं, फरमाइश सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का नगमा। बिलराम गेट कासगंज से मुस्लिम सैफी जैबुन्निसा बेगम ने हमें फरमाइश इस्तेमाल कर दी है। अब सामीन, जो नगमा आप सुनना चाहते थे वो आप सबकी खिदमत में।

इंद्र कौर गुरप्रीत सिंह और इनके कुछ और घर के अफराद हैं। उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमल रानी गीतिका खोरवाल, महाराष्ट्र से विजय सुलकर, रतन माला और कुमकुम जी सुलकर ने भी इस नगमे को सुनना चाहता। फरमाइश नगमा नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें इरसाल किया गया अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर की जानिब से। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन आज़ाद, आसमा परी राविया, बागवान मंदिर छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान। ये फरमाइश इस साल हमें की है साबरा, शबान और रईसा ने, खंडवा की तीनों बहुए हैं ये फरमाइशी। और भी हैं भारत कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ कुशवाहा, तारानगर बड़वाह से फरमाइश हमें इरसाल की है सिंघाड़ तलाई खंडवा से, राधेश्याम यादव, प्रभा यादव और शालिनी यादव, इनके घर के दो दिगर अफराद इनके साथ मौजूद हैं। खंडवा की सहेलियां हैं अमीदा बानो, आशा भदौरिया और सईदा बानो। दादा बाबू गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सहमद नवाज, हसन नवाज ने फरमाइश इरसाल की है और ये फरमाइश हमें भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। सफी मुल्ला जी, दिस मुल्ला जी, रफीक मुल्ला जी, बरगद बेल हुबली कर्नाटका से, और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकर, रतनमाला सुरकर, हिमेश कुमार इनके साथ हैं। पश्चिम तो गंजुड़वारा से अलीम रजा सिद्दीकी, मासूम मुनवर हुसैन अंसारी, फैजुल अलीम सिद्दीकी, डॉक्टर शबनम अनवार, दबीरुल हसन और बेगम शमनवा, भुवन प्रकाश गौतम, अमीर खुसर रोड गंज डुडवारा से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। आइए अब पेइंग गेस्ट फिल्म का ये दो गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी नगमनिगार और मौसीकी तरतीब दी है सचिन देव बर्मन ने। फरमाइश बाबा साहेब बड़ौदे, आदि चरवे चंदन प्रभा बड़ौदे, जरूड वरुड से, कोलकाता से सुब्रत चौधरी फरमाइश साल करते हैं और ये फरमाइश हमें साल की है। निजामाबाद बहुलांग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वही दुरमानी, मोहम्मद फसी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर इनके साथ हैं। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने हमें इरसाल की है और साईनगर आरवी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, प्रिया और प्रियंका काल पांडे, जवानिया गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, अनिल जैन, संयम जैन, मास्टर दिव्याम जैन, एक मालियान सरदाना मेरठ से ये फरमाइश इन्होंने इरसाल की है। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, अशोक, सविता, अनिकेत, कुमार गली, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश इन्होंने इरसाल की थी और ये फरमाइश उत्तर नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कुमार, भानु प्रकाश, डब्बा बाजार सूरत गुजरात से मोहम्मद अयूब मुल्ला जी, याकूब मुल्ला जी और इनके साथ एक फरमाइश और शामिल करते हैं फिर आपकी पसंद का नगमा आप सब तक। ग्राम उपोष हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी और इनके दीगर अफराद। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। अजमेर शरीफ राजस्थान से गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी।

गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतालिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शिमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत तवानाई नकलो हमल नीज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तिजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया, तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाज़े के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात सिफारती कोशिशों महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक़ में भारत के मौक़िफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने यह भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका इसराइल ईरान नीज दीगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतें कम चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमद रफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतीज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजरा खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक्किद होगी। कर्नाटक के एक कुंबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ जिले में तट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सप्लाई सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में लोगों के डूब जाने के हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी की दुआ के लिए कहा है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दोतरफा जामे आलमी दिफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलों पर तबादला ख्याल किया।
मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने

एल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में अब बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नीज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी अलामिये के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को इन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शिनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा इख्तियार करने वाली ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्विशा का जसद खाकी उनके कुंबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेटोरियम में अदा की गई। 33 साल ट्विशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुंबे ने उनकी ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने नीज उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्विशा के शौहर सामर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरीबाला सिंह साबिक जिला जज हैं। उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जामात हैं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को बगैर किसी रखना अंदाजी के दोबारा जांच के अमल को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी माहिरीन की एक टीम मुतय्यन करने की हिदायत जारी की हैं। ये फैसला तलबा और वालदेन की तरफ से CBSE के नतीज से मुतालिक सर्विस पोर्टल के हवाले से पैदा होने वाली पेशरफ्त और खदशात के पेश नज़र किया गया है। वजारत तालीम ने एक बयान में कहा कि IIT की माहिरीन की टीम सिस्टम की तकनीकी बेहतरी को यकीनी बनाने की और ख़ासतौर पर पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शिमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को धरम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। सेहत हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, दोपहर में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, नीज बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर दानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लाथीरा और काजल धुचक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सांगवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहलिया शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रीक रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बूरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तिजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फरहमी और एक दूसरे के यहां आमद रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दीपांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के

जी, और नलेश नगर नारवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, पुराण तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमान अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, ये फरमाइश विपिन कुमार, राजीव जेटली, जनकपुरी दिल्ली से हमें मौसूल हुई है। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक तबसुम शेख, बीबी अलिशबा शेख, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हनीफ और बाबू खत्री कॉलोनी खंडवा से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने फरमाइश इस्तेमाल की है। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगजीश गुजराती, जैनिश गुजराती और लड्डू कुमारी। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नोमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख। गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी, शबनम अकरम और दोनों बच्चे ठीकरी। मध्य प्रदेश से किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया जुबैर, अंजुमन खान। और ये फरमाइश इरसाल की है हमें विजय मोहबिया, कविता मोहबिया और ईशु बाबा ने। अब कहाँ से फरमाइश इरसाल करते हैं? जी, जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेजा, हंसबेन कोटेजा, आशीष कोटेजा, अल्तमर, समीना मुदस्सिर, जो मगर खंडवा के बच्चे शामिल हुए हैं। और ये फरमाइश हमें इरसाल की है बांद्रा आर्मा कोर्ट मुंबई ईस्ट से शाहीन परवीन, सोनम मारी, आयश शेख, मोहम्मद अरीब शेख ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका वंश बत्ता। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदू सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, पुरानी भलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश इरसाल करते हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और राशि रक्षित, रजाक मोहम्मद, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। फरमाइश इरसाल करने वाले और भी हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। तंबराम चेन्नई से शाहिद अली, इफ़त फारूकी और हिफ्जा अली इनके साथ हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंद शहर से, अहमदपुर खेगांव खंडवा से, कैलाश पुल

दीपक पुनाली और वैदिका फूलमाली, अनुपम कुमार या पुरुष सिंह राकेश कुमार जमशेदपुर से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और इनके साथ इनके एक और साथी फरमाइश साल करते हैं। फैज अहमद अफसाना और फातिमा गायत्री कॉलोनी खंडवा से और ये फरमाइश हमें साल हुई है। मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नाबिया शेख, बेबी अमीरा शेख, आशियान अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से। आइए अब आपको कन्हैया फिल्म का नगमा मुकेश का गया, नगमा निगार शैलेंद्र और मौसिकार शंकर जयकिशन। इंदर चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम और निशा अजीम, तेजस्वनी चौहान, अंकिता निकेत चौहान, विजय चौहान इंदुरकर, वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, रमन शेंडे, साथ में और भी साथी हैं। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। गांधी रोड गंजडवारा से मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद, मुन्ने सलमानी और ये फरमाइश हमें इरसाल की है। मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम भाई कामरान खान ने ये फरमाइश। मुनवर लल्ला, पीरजादा, नसीर मिर्जा, अरबाज शहबाज, कहाँ से फरमाइश इरसाल करते हैं? पश्चिम थोक गंज डुडवारा से, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, डॉक्टर चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। तो लीजिए जमीन आप सबके पसंद प्रिय नगमा आप सबकी खिदमत में है।

कल रात की तौबा। सामीन, प्यार किए जा फिल्म का नगमा, ये अब सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने नगमा निगार, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, और फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई है। फरमाइश इस तरह से है, विजय पाटिल, पद्माबाई पाटिल, चिरंजीव गणेश्वर पाटिल महाराष्ट्र जालना से हमें ये फरमाइश इरसाल करते हैं। और इसके अलावा फरमाइश इरसाल करने वाले के नाम है नाज़ मंजिल महसूस सीतामढ़ी बिहार से, अक्रम हुसैन प्रिंस बेगम शतरक्रम और रुबीना वसीम। ये फरमाइश गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से मौसूल हुई। सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, प्रीतिशा संधू इनके साथ हैं। और रामगढ़ कैंट से फरमाइश हमें इरसाल करते हैं महेंद्र मोदी। फरमाइश इरसाल करने वालों के और भी नाम हैं जो इस तरह से हैं, और वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव ने फरमाइश इरसाल की हमें। इसके अलावा जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी फरमाइश इरसाल करते हैं। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, आशीष गौड़, गांधीबाग अकोला से रमेश कतनकर, वैशाली कतनकर और धनंजय कतनकर की फरमाइश इरसाल की हमने। ये फरमाइश हमें नेहरू चौक पैठन से मौसूली डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, विलेस डिकेस्ट्रो हैं, आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर, शेरवानी स्कूल गंजुडवारा से। तो लीजिए सामीन, आप सबकी पसंद मेरा आप सबकी खिदमत में है।

0: وسامعين زينق میں کے ساتھ فرمائش فلمی نقم پر مبنی پروگرام تامر ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. لی سامعین پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: سرخیوں میں नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे. रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में.
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी.
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से. सो इसके बारे में बहुत उत्साह है. आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में.
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है. यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ. क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है. सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है. दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है. तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा. अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है. कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी. अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा. आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो. विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है. कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो. से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते.

0: क्षेत्र है, दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गांव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है। इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स
1: जी
0: जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे समअप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जीराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है, और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम, और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही हैं, चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स, और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का, जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप, मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए। इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है, और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे, और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो, हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है, जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं, तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से, जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं, ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है, उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, कि सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट

0: है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली
1: जी,
0: मिलता रहे।
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सोनू जी,
1: जी
0: तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम यह रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है। कई सारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने भी जो अध्ययन किए थे उसमें यह पता चला था कि कई बार ऐसी योजनाओं की वजह से कई बार किसान भाइयों को पीक एग्रीकल्चर सीजन जो बुआई कटाई का सीजन होता है उसमें कई बार एग्रीकल्चर के लिए जो है श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यह बैलेंस करना बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर को भी एडिक्वेट लेबर मिलता रहे और एट द सेम टाइम 125 दिन की गारंटी भी लोगों को दी जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यह 60 डेज का एक कैलिब्रेटेड पॉज जो है वह विकसित भारत जीराम जी में लाया गया है। यह 60 दिन जो है वह कंटिन्यूअस 60 दिन नहीं है, और ये राज्यों ने तय करना है कि उनके राज्य में कौन से समय पर बुआई कटाई एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है। इसमें भारत सरकार का बिल्कुल ये नहीं है, राज्य ही खुद तय करेंगे कौन से 60 दिन होंगे जबकि उनके किसानों को श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ड्यूरिंग दो 60 डेज नॉट कंटिन्यूअस यह कार्य कुछ देर तक जो है पॉज किए जाएंगे और उसके बाद जो है लोग फिर से उस पर एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक बैलेंसिंग है बिटवीन हमारे किसानों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण।
1: सो रोहिणी जी, आप कहेंगी कि इस योजना के अंतर्गत जो अभी बदले हुए समय की मांग है उसके अनुसार बहुत कोऑर्डिनेशन है सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो विलेज लेवल बॉडीज है, ग्राम सभा जैसे आप कह रही थी, उनके सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट मिले जो भी खर्च हो रहा है इस योजना पर उससे?
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा सोनू जी, जब विकसित ग्राम पंचायत पूछेंगे तो यह एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है कि हमारे पंचायतें जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है पंचायत, तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत ने प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा, और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से अगर हम और सभी स्टेट और सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन अगर हम ओपन करके हमारा डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें अगर पता चलेगा कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, रादर देन डूइंग सम एडहॉक वर्क्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत आ जाएगा, प्लान तरीके से हम कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जैसे एसेट डुप्लीकेशन होता है कई बार एक ही काम को अलग अलग योजनाओं में दिखाकर उसमें प्लैरिटीज आ सकती हैं, तो हमने यह व्यवस्था की है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योर करें कि कार्य बिल्कुल प्लान पद्धति से हो और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है मिसयूज ना हो।
1: रोहिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के मजबूत संस्थागत प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय ढांचे के बारे में हमें बताने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सहायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सोनू जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज का सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजा विन पेशे कव्वालियां। आज के फनकार हैं इरशाद रहमत कव्वाल।

0: यह आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतालिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, योगेंडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप्स में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में वसी मौजूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तजारत, तवानाई, नकलो हमल, नीज इलाकाई सलामती समेत ताउन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती मुआहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया, तवानाई की तजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाज़े के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक में भारत के मौक़िफ़ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नीज दीगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतें कम चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमद और रफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतीज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनाकिद होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफाई सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को बगैर किसी रखना अंदाजी के दोबारा जांच के अमल को यकीनी बनाने में मदद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी माहरीन की एक टीम मुतयन करने की हदायत जारी की हैं। ये फैसला तलबा और वालदेन की तरफ से CBSE के नतज से मुतक सर्विस पोर्टल के हवाले से पैदा होने वाली पेशरफ और खदशात के पेश नज़र किया गया है। वजारत तालीम ने एक बयान में कहा है कि IIT की माहरीन की टीम सिस्टम की तकनीकी बेहतरी को यकीनी बनाने और ख़ास तौर पर पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी का जायजा लेगी। टीम मजमुई तौर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का भी जायजा लेगी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए असलाहती इकदाम करने में मदद करेगी ताकि लॉगिन की तौसीक, सारिफिन तक रसाई के निज़ाम, अदायगी के गेटवे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवबांशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में अब बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी, गैर मुल्कियों, नीज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिले और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिये के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को इन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्ज़ाम था जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, योगेंडा और जुनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मकामी हुक्काम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया है कि भारत में एबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। इससे पहले सेहत की आलमी तंजीम WHO ने आवामी जमहूरिया कांगो और योगेंडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने के बाद इसे बैनुल अक्वामी तशवीश की एक सेहत आमा की इमरजेंसी करार दिया था। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर दानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लाथेरा और काजल ढूचक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सांगवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहलिया शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रीक रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता जबकि नीरज पटेल और रोहित बोरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद रफ्त को ताउन के अहम शोबे के तौर पर गर्दाना है। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतालिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नजर कांगो, योगेंडा और जुनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है क्लासिकी मौसीकी।

उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद पर बजाया राग चार जोकी मल्हार आप सुन रहे थे। इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। लीजा मीना पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब।

देवदास फिल्म का नगमा तलत महमूद का गाया हुआ अभी आपने सुना। आइए अब मनाडे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सपेरा फिल्म का ये दो गाना सुनते हैं।

दाग फिल्म में आपने तलत महमूद को सुना, अय्यब गहरा दाग फिल्म का दो गाना आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

सामीन लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में बिन बादल बरसात फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में दिल लगी फिल्म का नगमा सुरैया और श्याम का गाया हुआ।

0: रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से ही किसी बीमार से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion

आप हमें जो सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। चलिए पहली आवाज आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की। आइए सुनते हैं ये गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चेतना से, स्वर है सुमन कल्याणपुर का।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। और अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म आशा से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम पुराने फिल्मी नकमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और आप हमारे साथ जुड़े रहिए एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से

0: एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jayashankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and

आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 2:10 और अब समय है कार्यक्रम गीत बहार का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और गीतों की लिस्ट फहरिस्त आपके लिए तैयार है। हमेशा की तरह हम इस वक्त इन गीतों के सफर पर निकलते हैं ठीक 3 बजे तक, और ये गीत नॉन स्टॉप आपके दिलों तक पहुंचेंगे। आप हमें सुनते रहिए। मैं हूं आपके साथ कीर्ति।

0: हाँ, आपका भी मन नहीं करेगा कि अब इन गानों को यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि समय हो चुका है और अब जाना होगा और इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। गीत बाहर कार्यक्रम से अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर

0: हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. The National Testing Agency, that is NTA, has postponed the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, CBSE, extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Home Minister Amit Shah has said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Palta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. Prime Minister Narendra Modi congratulated Debangshu Panda for winning the Palta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata last night. Put into bat first, Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। ये समय है गजलों का। लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है मेहंदी हसन की आवाज में गजल जिंदगी में तो सभी।

ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है यह आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है, ये किसकी सदा है।

0: इसी के साथ आज का गजलों का कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार है TK जयराम अय्यर, संगीत दिया है त्यागराजा ने, आपके साथ मृदंगम पर संगीत दिया है रामानंद ऐश्वरन ने और राग श्री रंजनी आदिताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए TK जयराम अय्यर का वायलिन पर राग श्री रंजनी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। आपने प्रस्तुत किया राग श्री रंजनी जो आदिताल में निबद्ध था। संगीत दिया था त्यागराजा ने, मृदंगम पर संगीत दिया था रामानंद ऐश्वरन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। पाँच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीत का और 5:30 आप सुन सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहनाई वादन, कलाकार होंगे अशोक कुमार। 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन होगा और आज आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ सुनिएगा। आज होगा बालकांड का भाग 66। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। आज आप सुनेंगे आशुतोष कुमार के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 8:00 आप सुनेंगे समाचार। 8:45 पर स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायन शुभम कुमार से। 9:15 का समय रहेगा अवर गेस्ट का। 9:30 का समय रहेगा सुबह 9:30। 10:10

0: पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, और उसी के साथ आपके लिए प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सबरस। साढ़े 11 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का गायन। बारह बजकर 10 मिनट पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम घर आंगन। एक बजकर 10 मिनट पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी मुकद्दर का सिकंदर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार होंगे करण जौहर। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तना पे आर्यां सचे आर्यां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सर

पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बगसो

0: रूप कन्नी सुत कन पहलायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जंपर जाहि महला पहला
1: सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जा खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभा
0: नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाए फोड़।